ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 जुलाई सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 और 35 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है। सुप्रभात आगरा।

0: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सवेरे के 6 बजे हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सांणंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत

0: मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान किया जाएगा। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। अमेरिका के मौसम विभाग ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तापमान का भी पूर्वानुमान होगा। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। वहीं जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। तीसरा मैच मंगलवार को नॉटिंगहम में खेला जाएगा। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पर्दापण करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। वैभव ने 15 वर्ष और 99 दिन की उम्र में पदार्पण किया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकैना को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। एक अन्य मुकाबले में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला ने तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की ईगा स्वियाटेक को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने तीसरे दौर में अमेरिका के मार्कोस गिरोन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं। आराध्य के श्री चरणों में निवेदित है भक्ति पुष्पांजलि का कार्यक्रम वंदना। भारत माता सबकी माता, चाहे जो हो धर्म विशेष, माँ की रक्षा माँ की पूजा, हम सबका है कर्म विशेष।

आकाशवाणी आगरा से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति पुष्पांजलि का कार्यक्रम वंदना। हरि नाम का सुमिरन कर ले, दुर्गत होगी सारी दूर, जीवन नैया पार लगेगी, बाधाएं सब होंगी दूर।

0: जन्म मरण का टूटे बंधन, शरण मिले प्रभु तेरी, दया निधि हे कृपालु भगवन, कृपा रहे बस तेरी। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न हुआ। इसमें आज आपने हरिओम शरण, लता मंगेशकर, सुधा मल्होत्रा और साथियों के स्वर में भक्ति रचनाएं सुनी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया गया। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:25 हुए हैं। आकाशवाणी आगरा से प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकाश किरण। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता से पाठ।
1: इस संसार में ईश्वर का सबसे बड़ा भक्त और सबसे बड़ा ज्ञानी भी वही व्यक्ति है जिसने अहंकार से, अपनेपन से मुक्ति पा ली है, जो सब में समा गया है और जिसमें सब समा गए हैं। ईश्वर का भक्त संसार को ईश्वर की रचना जानकर उसके प्रति असीम श्रद्धा और प्यार से भरा हुआ होता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने भक्त का लक्षण बतलाते हुए कहा है, जिसे किसी से भी द्वेष न हो, जो सभी प्राणियों का मित्र है, सबके लिए जिसके मन में करुणा का अथाह सागर लहराता है, वही ईश्वर के सबसे निकट होता है। जिसकी कहीं भी आसक्ति नहीं है, जिसके लिए न कोई अपना है न कोई पराया, जो अहंता और ममता के ओछे बंधनों से छूट गया है, अहंकार की क्षुद्र सीमाएं जिसकी अनंत रूपता को खंडित नहीं करती, वही भक्ति का अधिकारी होता है। कृष्ण कहते हैं, सुख जिसे पुलकित नहीं करता, दुख उदास नहीं करता और क्षमा जिसका सहज स्वभाव है, वही मेरा प्रिय भक्त है। अनासक्त होने के कारण जो संसार से कभी खिन्न नहीं होता और संसार जिसकी उपस्थिति से सदा आनंदित रहता है,

0: हर्ष, ईर्ष्या, भय और तनाव, इनसे जो सर्वदा मुक्त होता है वही मेरा प्रिय, मेरा भक्त होता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा भक्त किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता, उसके लिए जय और पराजय सब बराबर है। वह तो स्वयं में स्वयं से ही संतुष्ट रहता है और जीवन के लाभ हानि के संघर्ष में सर्वथा तटस्थ रहता है। जिसने प्रत्येक कर्म में कर्तृत्व बुद्धि का परित्याग कर दिया है और वेदना को जीत लिया है वही मेरा भक्त है। मेरे भक्त का अंतर गंगा की भांति निर्मल होता है और वह समत्व पूर्वक प्रत्येक कार्य का बड़ी कुशलता से संपादन करता है। कृष्ण कहते हैं जो कर्म योगी है वही सहज रूप से मेरा भक्त है, मेरा प्रिय है।
1: प्रकाश किरण कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्रीमद् भगवद गीता से पाठ। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया जा रहा था।

हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज रात 9:30 बजे आप सुनेंगे रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। रात 10 बजे हम प्रसारित करेंगे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। आज शाम 7:30 बजे से आप सुनेंगे ICC महिला T20 विश्व कप प्रतियोगिता के अंतर्गत लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम लंदन में खेले जाने वाले T20 क्रिकेट फाइनल मैच का आंखों देखा हाल। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। आपको याद दिला दें, मैच का आंखों देखा हाल आप मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर सुन सकेंगे। मैच का आंखों देखा हाल न्यूज ऑन AIR ऐप पर नहीं किया जाएगा। सुबह 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सामयिक चर्चा। इसे हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। कार्यक्रम विवरण के तुरंत बाद 6:35 पर हम प्रसारित करेंगे श्री रामचरितमानस गान। 6:45 पर खेती की बातें कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे श्री ओम प्रकाश की वार्ता। विषय रहेगा मिट्टी की जांच प्रक्रिया और उसके लाभ। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में 7:10 पर लघु वार्ता प्रसारित की जाएगी। कमर दर्द कारण लक्षण और उपचार, वार्ताकार होंगे डॉक्टर SC साहू। आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास आप सुनेंगे 7:31 पर। आज रविवार है। दिन में 1:15 पर हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे

अपना कार्यक्रम सुनेंगे बाल मंडल। इसमें चर्चा की जाएगी नई कक्षा नए सपने, रोचक जानकारी दी जाएगी, विषय रहेगा क्यों आते हैं भूकंप। बाल मेहमान के अंतर्गत चर्चा करेंगे अंतरिक्ष की दुनिया और कहानी सुनवाई जाएगी बोनी की छुट्टी। इसके अलावा बाल गीत प्रसारित किया जाएगा और क्रम रहेगा चलते चलते। इसमें हम चर्चा करेंगे हमारी सच्ची मित्र पुस्तकें। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:30 बजे चर्चा का विषय रहेगा बायोचार, क्रम रहेगा आज का सवाल। इसी कार्यक्रम में सुश्री दिव्यानी दुबे की वार्ता प्रसारित की जाएगी प्लास्टिक और बढ़ता कचरा। इसके अलावा आप सुन सकेंगे आपकी पसंद और क्रम रहेगा चलते चलते। ग्राम्यालोक कार्यक्रम में 6:00 बजे हमारे किसान भाई सुन सकेंगे डॉक्टर हरिश्चंद्र की वार्ता, विषय रहेगा पशुओं में गलघोंटू रोग, कारण लक्षण और उपचार। इसी कार्यक्रम में मंडी भाव बताए जाएंगे, मौसम की जानकारी दी जाएगी और कुछ लोकगीत भी सुनवाए जाएंगे। मजदूर मंडल कार्यक्रम में 6:30 बजे आप सुनेंगे चर्चा मजदूरों का जीवन संघर्ष और सच्चाई। श्रीमती माला गुप्ता की वार्ता प्रसारित की जाएगी घरेलू हिंसा का परिवार पर प्रभाव। क्रम रहेंगे आज का प्रश्न ज्ञान सागर, कुछ सेहत टिप्स दिए जाएंगे और फिल्मी गाने भी सुनवाए जाएंगे। विविधा कार्यक्रम में 7:10 पर आप सुनेंगे डॉक्टर प्रभात कुमार की वार्ता, विषय रहेगा ई प्रदूषण। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 10:30 बजे हम प्रसारित करेंगे विदुषी गिरिजा देवी का ख्याल गायन। लोक संगीत के कार्यक्रम में 10:45 बजे हम आपको सुनवाएंगे समवेश्वर में ब्रज लोकगीत और दिन में 12:00 बजे कार्यक्रम होगा लोक मंजरी, इसमें आप सुनेंगे शिव कुमार पाराशर के गाए ब्रज लोकगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में दिन में 1:45 बजे आप सुनेंगे भजन, कलाकार होंगे अनुराधा पौडवाल। सदाबहार फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे गीतांजलि कार्यक्रम में 8:45 पर और सुर सरिता कार्यक्रम में 10:00 बजे। पुराने फिल्मी गीतों का आनंद आप ले सकेंगे गीत मंजूषा कार्यक्रम में 9:25 पर। कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। 6:35 और 35 सेकंड हुए हैं, आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस का आज का ये प्रसंग।

राक्षसों तथा पापाचारियों से आतंकित पृथ्वी तथा ब्रह्मा सहित देवताओं ने परम पिता की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। तब गंभीर आकाशवाणी हुई, हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामी, भयभीत न हो। तुम्हारे कल्याण के लिए मनुष्य रूप धारण करके मैं सूर्यवंश में अवतरित होऊंगा। अदिति तथा कश्यप ने कठोर तपस्या करके मेरा वरदान प्राप्त किया और वे ही कौशल्या तथा दशरथ के रूप में अयोध्या में प्रकट हुए हैं।

उन्हीं के घर श्रेष्ठ चार भाइयों के रूप में मैं अपनी परम शक्ति समेत पैदा होऊंगा। आकाश में गूंजती ब्रह्मवाणी अपने कानों सुनकर सभी देवता आश्वस्त हुए।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार थे महेंद्र सिंह, संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया गया। दिन भर की भाग दौड़ में कहीं भी रहिए, आकाशवाणी आगरा के संग रहिए और सुनते रहिए मनपसंद मनोरंजक खूबसूरत कार्यक्रम। आकाशवाणी आगरा से अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। खेती की बातें कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्री ओम प्रकाश की वार्ता। विषय है मिट्टी की जांच प्रक्रिया और उसके लाभ।
1: भूमि एवं जल देश के प्रमुख मूल संसाधन हैं, जिनका संरक्षण मानव जाति के लिए अत्यावश्यक है। निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण देश में खाद्य पदार्थों की मांग इतनी शीघ्रता से बढ़ रही है।

कि वर्तमान उत्पादन वृद्धि से उसकी पूर्ति कर पाना असंभव है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि योग्य भूमि का उपयोग गृह निर्माण आदि के लिए दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण खेती योग्य जमीन दिनों दिन कम होती जा रही है। मिट्टी प्रकृति का एक ऐसा अमूल्य उपहार है जिस पर मनुष्य ही नहीं बल्कि विश्व के सारे जीव जंतु आश्रित हैं। मिट्टी के उपकारों का लेखा जोखा बहुत कठिन है। है कोई विश्व का ऐसा कारखाना जो अनाज का एक दाना भी बना दे? मिट्टी के बनने में जहाँ हजारों साल लगती हैं, वहीं मिट्टी

मिट्टी प्रकृति का एक ऐसा अमूल्य उपहार है जिस पर मनुष्य ही नहीं बल्कि विश्व के सारे जीव जंतु आश्रित हैं। मिट्टी के उपकारों का लेखा जोखा बहुत कठिन है। है कोई विश्व का ऐसा कारखाना जो अनाज का एक दाना भी बना दे? मिट्टी के बनने में जहाँ हजारों साल लगती हैं, वहीं मिट्टी के कटकर बह जाने में कुछ समय नहीं लगता। मिट्टी के कटाव के कारण ऊपरी तह की उपजाऊ मिट्टी पानी के साथ बहकर चली जाती है और अपने साथ फसल के पोषक तत्व भी बहा कर ले जाती है, जिससे प्रति इकाई पैदावार भी कम हो जाती है। अच्छी पैदावार लेने के लिए उर्वरकों का प्रयोग संतुलित मात्रा में प्रयोग करना अति आवश्यक है। खाद एवं उर्वरकों का पूरा फायदा तभी उठाया जा सकता है जब उनको मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही प्रयोग किया जाए। मिट्टी जांच के आधार पर फसलों में खादों का प्रयोग वैज्ञानिक तरीका तो है ही, इसके साथ साथ संतुलित मात्रा में उर्वरक प्रयोग हेतु एकमात्र उपाय भी है। मिट्टी जांच के लिए नमूने लेते समय ध्यान रखें कि एक एकड़ के खेत से लगभग 8 से 10 जगहों से ऊपर की 6 इंच की मिट्टी इकट्ठी करके मिट्टी को अच्छी तरह मिलाकर करीब आधा किलोग्राम मिट्टी एक साफ थैली में भर दें। मिट्टी के नमूने लेने के लिए खुरपी का प्रयोग किया जा सकता है। मिट्टी को मिलाने के लिए जिस तसले का प्रयोग करें उसमें किसी प्रकार का खाद या उर्वरक नहीं लगा होना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि खेत में जहां गोबर की खाद की ढेरी हो या पशु आदि बैठते हों तो वहां से नमूना नहीं लेना चाहिए। खेत में जहां से मिट्टी उठाई गई हो या जहां पर डाली गई हो वहां से भी नमूना न लें। पेड़ के नीचे से भी नमूना नहीं भरना चाहिए। मिट्टी के नमूने भेजते समय यदि मिट्टी गीली है तो उसे भेजने से पहले छाया में सुखा लेना चाहिए। इसके बाद प्रत्येक मिट्टी के नमूने को क्रम संख्याबद्ध करें और सावधानी पूर्वक 2 सूचना पत्र बनाकर उनमें किसान का नाम, गांव का नाम, नमूने वाले खेत का नंबर, नमूने की गहराई, जमीन का ढाल तथा पिछली फसल में डाले गए खाद की मात्रा के साथ साथ ब्लॉक व जिला का नाम भी लिखें। आगे किस फसल के लिए उर्वरक की सिफारिश चाहिए उस फसल का नाम भी अवश्य लिखें। इसके बिना मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला से उर्वरकों की सिफारिश संभव हो पाएगी। आमतौर पर यह पाया गया है कि किसान भाई मिट्टी के गुणों का ध्यान रखे बगैर ही रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग जरूरत से ज़्यादा किया करते हैं, खास तौर पर यूरिया का, जबकि फॉस्फेटिक एवं पोटैशिक उर्वरकों का प्रयोग जरूरत से कहीं कम मात्रा में किया जाता है। नतीजन पैदावार पर बुरा असर पड़ता है, इसका उपजाऊ क्षमता पर कुप्रभाव पड़ता है। एक ही मात्रा में दिया हुआ रासायनिक खाद का प्रभाव अलग अलग मिट्टियों में अलग अलग हो जा सकता है। अतः मिट्टी जांच के आधार पर रासायनिक खादों की संतुलित मात्रा का प्रयोग निश्चित ही लाभकारी होगा। मृदा में किसी तत्व विशेष की कमी होने से उस तत्व की पूर्ति किए बिना अन्य पोषक तत्वों को सिफारिश के मुताबिक प्रयोग करने से भी पूरा लाभ नहीं मिलता है, वह नहीं मिलेगा। उदाहरण के तौर पर यदि मिट्टी में फॉस्फोरस तत्व की कमी है तो ज़्यादा से ज़्यादा नत्रजन एवं पोटैशिक खादों के प्रयोग से भी उतना लाभ नहीं मिलेगा जो संतुलित खाद के प्रयोग से मिलना चाहिए था। अतः ऐसी परिस्थिति में मृदा परीक्षण का विशेष महत्व हो जाता है। मृदा परीक्षण के आधार पर केवल उन्हीं पोषक तत्वों की सिफारिश की जाती है जिनकी मिट्टी में कमी होती है, अर्थात जिनकी आपूर्ति मिट्टी से यथोचित मात्रा में नहीं हो पाती। अतः मृदा जांच के आधार पर प्रयोग किया गया उर्वरक संतुलित

0: एवं अधिक लाभदायक होता है। मृदा जांच के आधार पर जिस पोषक तत्व की जितनी कमी होती है उसको उतनी ही मात्रा में प्रयोग करके अधिक पैदावार के साथ साथ अधिक मुनाफा भी कमाया जा सकता है। किसान भाई इन सभी बातों पर ध्यान देकर अपनी फसलों में रासायनिक खादों का प्रयोग मिट्टी के जांच के आधार पर ही करें तो निश्चित ही उर्वरकों की कम लागत से अधिक लाभ होगा।
1: खेती की बातें इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्री ओम प्रकाश की वार्ता। विषय था मिट्टी की जांच प्रक्रिया और उसके लाभ। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया जा रहा था।

हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आपको याद दिला दें, आज सुबह 11 बजे आप सुनेंगे प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

ग्राम्य लोक कार्यक्रम में शाम 6 बजे हमारे किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर हरिश्चंद्र की वार्ता। विषय रहेगा पशुओं में गलघोंटू रोग, कारण, लक्षण और उपचार।

0: विविधा कार्यक्रम में शाम 7:10 पर आप सुन सकेंगे डॉक्टर प्रभात कुमार की वार्ता। विषय रहेगा ई प्रदूषण। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:55 होने को ही अब आप समाचार सुनेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना ह्यः गुजरातस्य सानन्दक्षेत्रे सीजी सेमी संस्थायाः अत्याधुनिकस्य ओसेट सेमीकण्डक्टर संयन्त्रस्य उद्घाटनं कृतम्। अत्रावसरे जनसभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् अयं विकासः भारतस्य प्रगाढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांतेः आगामी चरणमस्ति, येन देशः पूर्वमेव विश्वस्य द्वितीयः बृहत्तमः दूरभाष निर्मातृत्वेन समेधितः। सः दृढ़विश्वासं प्रकटितवान् यत् सानन्दक्षेत्रं वैश्विक सेमीकंडक्टर केन्द्रत्वेन समेधिष्यते।
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: तेन गदितं यत् सानन्दं प्रतिवर्षं 20 कोटि चिप्स निर्माणार्थं सज्जमस्ति। तेन 500 कोटि परिमितस्य लक्ष्य निर्धारणार्थं शुभाशयाः अपि प्रकटिताः। अत्रावसरे केन्द्रीय मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन घोषितं यत् 26,000+ यावत् भारते 5 सेमीकण्डक्टर संयन्त्राणि पूर्णतः क्रियाशीलानि भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा जोधपुर विमानपत्तने नूतनस्य टर्मिनल भवनस्यापि उद्घाटनं कृतम्। तदनन्तरं सः बालोत्तरामण्डलस्य पचपदरा क्षेत्रे देशस्य अत्याधुनिकं ग्रीनफील्ड रिफाइनरी

0: सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इत्येतत् राष्ट्राय समर्पितवान्। अत्रान्तरे तेन जयपुर मेट्रो द्वितीयचरणस्य शिलान्यासोऽपि कृतः। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य संघर्षेण एकविंशतितमायाः शताब्द्याः महत्तमः ऊर्जासङ्कटः समुत्पन्नः, किन्तु भारतेन समयोचितनिर्णयैः कूटनीत्या च एषः कालः सम्मुखीकृतः।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी राजस्थान सर्वकारस्य विभिन्न विभागेषु नवनियुक्तेभ्यः चतुःपञ्चाशत्सहस्र युवभ्यः नियुक्तिपत्राणि अपि प्रायच्छत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः सानन्दक्षेत्रे नूतन सीजी सेमी ओसेट इत्यस्य उद्घाटनं प्राविधिक आत्मनिर्भरतायां भारतस्य अभिनव पदक्षेपः इत्युदीरितवान्। अस्य अत्याधुनिक संयंत्रस्य उद्घाटनं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कृतम्। गृहमन्त्रिणा सामाजिक संजालीय तन्त्रे स्वलेखे प्रकटितं यत् भारतस्य प्रौद्योगिकी महाशक्तित्वेन विकास यात्रायामेषः कश्चन नूतनः कीर्तिस्तम्भः अस्ति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अद्य प्रभृति अस्य मासस्य दशदिनांकं यावत् कतार, बहरीन, कुवैत, ओमान देशानां आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। स्वप्रवासकाले विदेशमन्त्री तत्तद्देशीयानां समकक्षनेतृभिः सह शीर्षनेतृत्वेन च सह मेलिष्यति। विदेशमन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् अयं प्रवासः एतैः देशैः सह भारतस्य द्विपक्षीयसम्बन्धानां दृढीकरणे विशेषेण केन्द्रितः भविष्यति। संसदः वर्षाकालीनसत्रमस्य मासस्य विंशतिदिनाङ्कात् अगस्तमासस्य त्रयोदशदिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। संसदीयकार्यमन्त्री किरण रिजिजु सूचितवान् यत् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः जुलै मासस्य विंशतिदिनाङ्कात् संसदः वर्षाकालीनसत्रस्य आह्वानाय सर्वकारस्य प्रस्तावं स्वीकृतवती। आईसीसी महिला विंशति प्रतिविंशतिः विश्वचषके लंडन नगरस्य लॉर्ड्स क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम् अद्य अन्त्यद्वन्द्वे ऑस्ट्रेलिया दलम् सम्मुखीकरिष्यति। इयं प्रतिस्पर्धा तावत् भारतीय समयानुसारं रात्रौ अष्टवादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान के पचपदरा में 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी किया। श्री मोदी ने कहा कि जोधपुर हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन मारवाड़ क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि जोधपुर से संशोधित उड़ान योजना शुरू होने से छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों तक हवाई संपर्क बेहतर होगा। श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान सरकार राष्ट्र प्रथम के दृष्टिकोण से काम कर रही है और हर क्षेत्र तथा हर नागरिक के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इससे पहले श्री मोदी ने पचपदरा में देश की सबसे आधुनिक ग्रीन फील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल संयंत्र का लोकार्पण किया। उन्होंने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। बाद में गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र की में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी

0: इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। कांग्रेस सरकार के दौरान 10 राज्यों में 5% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन केवल 1.4% मिश्रण ही हासिल किया जा सका। सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी की गई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा पर 3-0 से शानदार जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की टी20 क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: Good morning. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi inaugurated CG Semi state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test or OSAT plant in Sanand, Gujarat yesterday. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnav and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Addressing a large gathering, Prime Minister Modi said that the CG Semi OSAT facility in Sanand will not only strengthen the domestic chip manufacturing ecosystem, but also boost technological self-reliance and elevate India's position in the global semiconductor value chain.
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमी कंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: The Prime Minister also said the Sanand plant is geared to produce 20 crore chips annually. He congratulated CG Semi on setting an ambitious future target of scaling production to 500 crore chips per year. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1 lakh 5,000 crore rupees in Rajasthan, marking a major push to infrastructure, energy, transport and employment generation in the state. During his day-long visit, the Prime Minister inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport. Thereafter, he dedicated the country's most modern greenfield refinery cum petrochemical complex to the nation.

0: in Pachpadra in Balotra district, which is an industrial processing plant built from scratch on undeveloped clean land. He also inspected the refinery's state-of-the-art control room, interacted with engineers and technical experts, flagged off fuel tankers, and virtually laid the foundation stone for Jaipur Metro Phase 2. The monsoon session of Parliament will commence on the 20th of this month. It will continue till the 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal of the government to convene the monsoon session of Parliament from 20th of July. Mr. Rijiju said the session will focus on meaningful debate, discussion and decisions on issues of national importance. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will be on an official visit to Qatar, Bahrain, Kuwait and Oman from today till the 10th of this month. During the visit to these countries, Dr. Jaishankar will be meeting with his counterparts and the leadership. After his visit to Oman, Dr. Jaishankar will visit New York on the 13th of July to launch India's official campaign for the UN Security Council tenure 2028-29. He will then attend the third India-EU Trade and Technology Council meeting and interact with his European Union and Belgian counterparts in Brussels on 14th and 15th July. The pilgrims from Jammu and Kashmir who participated in the Somnath Swabhiman Yatra 2026 under the theme Ek Bharat Shresth Bharat returned to Jammu Tawi Railway Station, marking the successful conclusion of the six-day pilgrimage to Gujarat. The Yatra, organized by the Department of Culture, Government of J&K, in collaboration with J&K Academy of Art, Culture and Languages, enabled the pilgrims to visit the Sri Somnath Mahadev Temple and several other religious, historical and cultural sites across Gujarat. In FIFA World Cup, Morocco stormed into the quarterfinals with a commanding 3-0 victory over Canada in Houston, Texas today. Defending champions Argentina also progressed to the round of 16 after defeating Cabo Verde 3-2 following extra time in a thrilling round of 32 encounter. Argentina will next face Egypt, who advanced after beating Australia 4-2 in a penalty shootout following a 1-1 draw after regulation time and extra time. In the final round of 32 match played yesterday at Kansas City Stadium, Colombia edged past Ghana 1-0 to secure a place in the round of 16. Colombia will now face Switzerland for a spot in the quarterfinals. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं. मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर 7:10 हुए हैं. अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा. स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर एस सी साहू की वार्ता. विषय है कमर दर्द, कारण, लक्षण और उपचार.
2: स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत आज हमारी बातचीत का विषय है कमर दर्द, कारण, लक्षण और बचाव. और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर एस सी साहू, जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं और SN मेडिकल कॉलेज आगरा में पूर्व प्राचार्य रह चुके हैं. तो डॉक्टर साहू, सबसे पहले तो हम आपका अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं. नमस्कार.
3: बहुत बहुत धन्यवाद.
2: तो डॉक्टर साहू, अक्सर 40 के बाद की उम्र में लोगों को ये शिकायत रहने लगती है कि ज्यादा देर तक किसी एक विशेष पोजीशन में बैठे बैठे या खड़े हुए या ज्यादा देर लेटने से उनकी कमर में दर्द होने लगता है. वो ये शिकायत अक्सर महसूस करते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं?
3: इसके पीछे कारण एक तो उनके बॉडी का पॉस्चर का मेंटेनेंस, दूसरा कारण है उनके मसल पावर का धीरे धीरे कम होना
2: जी,
3: और तीसरा कारण होता है कि अगर किसी भी वजह से अगर शरीर में कोई भी आर्थराइटिस है तो वो फैल करके रीढ़ की हड्डियों में भी आती है और रीढ़ की हड्डियों में भी उसी तरह के जोड़ होते हैं जैसे शरीर के अन्य पार्ट में होते हैं
2: जी.
3: पोस्चर से हमारा मतलब है कि जैसे आपके काम करने का ढंग है, अगर आप ज्यादा झुक करके बैठते हैं, ज्यादा देर तक बैठते हैं और एक पर्टिकुलर पोस्चर में आप भूल करके उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं तो आपके कमर में दर्द शुरू हो जाता है, जिसमें कि सबसे बड़ी चीज ये होती है कि बैड पोस्चर कहलाता है
2: जी.
3: अगर पोस्चर आपका सही नहीं है और 40 साल के बाद आपके मसल्स की पावर धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है तो वो मसल्स आपको एक पर्टिकुलर पॉस्चर में

0: मेंटेन करने के लिए अपने आप को अक्षम या वीक महसूस करती हैं,
1: जी,
0: जिसका सिर्फ पोस्चर करेक्शन और एक्सरसाइज से मसल की ताकत को बढ़ाना ही कमर दर्द को ठीक कर सकता है। दूसरा कारण होता है कि हैवी बॉडी वेट।
1: जी,
0: अगर आप किसी वजह से बॉडी वेट को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज आती है आज का फास्ट फूड, जो कि एक तरह से एक्स्ट्रा भी फूड होता है और ज्यादा फैटी फूड होता है, जिसकी वजह से और बीमारियों के अलावा आपका बॉडी वेट बढ़ता है, आपकी मसल्स वीक रहती हैं, आपकी नसों में तनाव रहता है और आपको कमर दर्द शुरू हो जाता है। तीसरी चीज होती है आजकल की कार्य प्रणाली और रोजमर्रा का आपका जीवनचर्या, जिसमें बेसिकली आप बहुत ज्यादा सुस्त बैठे खड़े या लेटे रहे और किसी तरह की आपका शारीरिक व्यायाम नहीं होता है, जिसकी वजह से 40 के बाद आपकी मसल वीक हो जाती हैं, नसें वीक हो जाती हैं, हड्डी के जो जोड़ और जगह हैं, रीढ़ की हड्डी के जोड़ भी घिसने लगते हैं, उनसे नसों पे दबाव पड़ता है और पोस्चर मेंटेन न कर पाने की वजह से स्लिप डिस्क हो जाता है। स्लिप डिस्क की वजह से उनको सियाटिका होता है। ये भी एक सबसे बड़ा कारण है जिसको कि एक्सरसाइज से मेंटेन किया जाता है। अगर आप कमर दर्द से बचना चाहते हैं तो आप अपने बॉडी वेट को कंट्रोल करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, आप अपने खान पान को दुरुस्त रखिए, आपको कमर दर्द नहीं होगा।
1: निश्चित रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप अपना कमर दर्द सही रखना चाहते हैं तो अपना खान पान सही रखें, अपने बैठने उठने का ढंग सही रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और विशेष रूप से अपने आहार में ऐसी चीजों का सेवन करें जो ज्यादा ऑयली या ज्यादा फैटी ना हो।
0: फैटी ना हो और आपको कुछ न कुछ फल और दूध अपने डाइट में बढ़ाना चाहिए, जिससे कि आपको रेगुलर कैल्शियम, विटामिन और वो एसेंशियल एलिमेंट मिल सके जो कि किसी और चीज में नहीं होता है।
1: तो डॉक्टर साहू, आपने कमर दर्द के बारे में हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लघु भेंट वार्ता। वार्ता का विषय था कमर दर्द, कारण, लक्षण और उपचार। इस विषय पर डॉक्टर एस सी साहू से भेंट कर रहे थे नीरज जैन। प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया गया। आकाशवाणी आगरा से आइए अब सुनते हैं समवेत स्वर में ये देशभक्ति परक गीत।

आकाशवाणी आगरा से इस समय आप सुन रहे हैं समवेत स्वर में देशभक्ति परक गीत। 7:18 हुए हैं। इस गीत के तुरंत बाद आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दो दिवसीय दौरे पर कल पहुंचे लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ की बैठक। प्रदेश सरकार ने राजस्व से जुड़े सार्वजनिक भूमि के मामलों के लिए लागू की नई व्यवस्था। लखनऊ और प्रयागराज में गठित 3 सदस्यीय विशेष पीठ करेगी वादों की सुनवाई। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 कल हुई संपन्न। 3 दिवसीय परीक्षा में शामिल हुए 88% अभ्यर्थी। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में लखनऊ के जन भवन में आयोजित हुई मैंगो बायर सेलर मीट। आम निर्यातकों और उत्पादकों के बीच हुए अनुबंध। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन दो दिवसीय दौरे पर कल पहली बार लखनऊ पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी मुख्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, भाजपा सांसदों और विधायकों के साथ भी बैठक की। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने लखनऊ एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान भी उपस्थित रहे। इसके बाद श्री नवीन ने एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश कार्यालय तक रोड शो किया। इस दौरान जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने स्वागत के लिए प्रदेशवासियों और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया।
1: उत्तर प्रदेश की धरती लखनऊ की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं। लखनऊ की धरती पे लोगों ने मुझे अभिमान दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी

0: मैं लखनऊ के लोगों का अभिनंदन कर धन्यवाद कर रहा
1: हूँ। श्री नवीन कल अपने लखनऊ प्रवास के दौरान हनुमान सेतु मंदिर गए। वहां उन्होंने हनुमान जी के दरबार में शीश नवाकर देश और प्रदेशवासियों के सुख शांति और समृद्धि की कामना की। राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने दो दिवसीय लखनऊ दौरे में आज विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने सार्वजनिक महत्व की भूमि से जुड़े मामलों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत अब आरक्षित श्रेणी की भूमि, शासकीय भूमि, ग्राम सभा, नजूल, निष्क्रांत संपत्ति तथा शत्रु संपत्ति से संबंधित सभी वादों की सुनवाई 3 सदस्यीय विशेष पीठ द्वारा की जाएगी। ये व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। एक रिपोर्ट।
2: राजस्व परिषद के अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है। नई व्यवस्था के अनुसार इन मामलों पर विशेष रूप से गठित 3 सदस्यीय पीठ सामूहिक रूप से विचार करेगी। परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि राजस्व परिषद ने लखनऊ और प्रयागराज दोनों न्यायालयों के लिए अलग अलग 3 सदस्यीय विशेष पीठों का गठन किया है। इन विशेष पीठों द्वारा प्रत्येक बुधवार को नियमित रूप से इन मामलों की सुनवाई की जाएगी। वहीं एक अन्य पहल के तहत राजस्व परिषद के न्यायालयों द्वारा किसी वाद में अभिलेख तलब किए जाने पर सामान्यतः मूल अभिलेखों के स्थान पर संबंधित अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रमाणित पूर्ण स्कैन प्रति के आधार पर ही न्यायिक कार्यवाही की जाएगी। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान में भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भाजपा भारत अपने दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयासों से 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट से सफलतापूर्वक उबरने में कायम रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने हर स्तर पर समय रहते निर्णय के लिए उभरते संकट का सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति तैयार की और देश के संसाधनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कूटनीति और रणनीतिक उपायों से देश ने इस संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
3: पश्चिमी एशिया में युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा, हर देश त्रस्त है। इस युद्ध ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया। बड़े बड़े देश आज ईंधन की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन साथियों 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट पर 21वीं सदी के नए भारत की इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास इस संकटों पर भारी पड़े हैं।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा कल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। लिखित परीक्षा 2 व 3 जुलाई को 2-2 पाली और कल 1 पाली में आयोजित हुई। आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 88.77% अभ्यर्थियों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा के दौरान आयोग में स्थापित AI इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से सभी परीक्षा केंद्रों की सघन निगरानी की गई। यह परीक्षा प्रदेश के 60 जनपदों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा के दौरान 44 फर्जी अभ्यर्थी भी पकड़े गए। परीक्षा के सफल संचालन के लिए आयोग ने जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश पुलिस और STF के प्रति आभार व्यक्त किया है। 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 के दूसरे दिन कल लखनऊ के जनभवन में मैंगो बायर सेलर मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह सम्मिलित हुए। इस अवसर पर आम निर्यातकों और आम उत्पादकों के बीच अनुबंध भी हुए। महोत्सव में उद्यान मंत्री ने कहा कि योगी आदित्यनाथ में प्रदेश सरकार के नेतृत्व में किसानों की समृद्धि के लिए हर स्तर पर काम हो रहा है।
4: उद्यान विभाग के माध्यम से हम राज्य के किसानों की समृद्धि का जो सपना देखे हैं वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम साकार कर रहे हैं। दुनिया के बाजारों में हमारी औद्योगिक फसलें आज पहुंच गई है और

0: हमारे यहां जेवर एयरपोर्ट बन के तैयार होंगे, हमारे राज्य के आम के किसानों का मनोबल बढ़ेगा, उनकी समृद्धि बढ़ेगी, ऐसा प्रयास हमारी सरकार का होगा।
1: महोत्सव के दूसरे दिन आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विज्ञान विभाग के अधिकारियों, कृषि वैज्ञानिकों और प्रदेश भर से आए प्रगतिशील आम उत्पादक किसानों के बीच एक तकनीकी सत्र का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक आयोजित करने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए केंद्र सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, ओटीटी प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कल अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। 28 जून 2026 को जारी एक आधिकारिक सूचना के अनुसार यह बैठक ट्रस्ट के अध्यक्ष की स्वीकृति से कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी द्वारा बुलाई गई है। बैठक की कार्यसूची में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा द्वारा दिए गए त्याग पत्रों पर विचार किया जाना शामिल है। बैठक में भविष्य में राम मंदिर के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्था पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। प्रदेश के कई जिलों में उमस भरी गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते जनजीवन प्रभावित है। इस बीच लखनऊ सहित राज्य के कुछ जिलों में हुई बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत भी मिली है। कल कानपुर और टुंडला में हुई भारी बारिश से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान जताया है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय दौरे पर कल पहुंचे लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ की बैठक। प्रदेश सरकार ने राजस्व से जुड़े सार्वजनिक भूमि के मामलों के लिए लागू की नई व्यवस्था। लखनऊ और प्रयागराज में गठित 3 सदस्यीय विशेष पीठ करेगी वादों की सुनवाई। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTAT 2026 कल हुई संपन्न। 3 दिवसीय परीक्षा में शामिल हुए 88% अभ्यर्थी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में लखनऊ के जनभवन में आयोजित हुई मैंगो बायर सेलर मीट। आम निर्यातकों और उत्पादकों के बीच हुए अनुबंध। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
4: आपने ट्यून किया है अपना पसंदीदा लोकप्रिय रेडियो चैनल आकाशवाणी आगरा। इसे आप मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर सुनते हैं। 7:32 और 10 सेकंड हुए हैं।

इस समय आप सुनते हैं आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास। आसपास सुनने वाले सभी हमारे प्रिय श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ विशेष कुमार शर्मा। स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि हम अक्सर चर्चा कर रहे हैं कि अब मॉनसून सक्रिय हो चुका है, और आगरा की हम बात करें तो कल शहर में दिन भर मौसम में बदलाव तो देखने को मिला, लेकिन बारिश भी हुई। रात को वर्षा के बाद सुबह बादल छाए रहे, हवा चलने से गर्मी का एहसास थोड़ा सा कम हुआ। हालांकि दोपहर में बादल छाए रहने से उमस थोड़ी सी बढ़ गई, और फिर दोपहर में 3 बजे के आसपास शहर के कुछ क्षेत्रों में खूब झमाझम बारिश हुई। शहरवासियों ने वर्षा में भीग कर खूब आनंद उठाया। मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि रविवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। ताजनगरी में शनिवार को बादल खूब बरसे, सीजन की सबसे अच्छी बारिश हुई। गर्मी और उमस से भी थोड़ी राहत मिली। लोगों को जल भराव से भी जूझना पड़ा, और कहा जा रहा है या अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 दिन फिर गर्मी और उमस बढ़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को और सोमवार को सूखा रह सकता है, अन्यथा की स्थिति में बूंदाबांदी या फिर रिमझिम थोड़ी बहुत बारिश देखी जा सकती है। इसके बाद 7 जुलाई से बारिश का दौर फिर शुरू होने के आसार हैं। 9 और 10 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। खुले में होने वाले आयोजनों को सुरक्षित करने की सलाह भी दी गई है, और अधिकतम तापमान 37.0 डिग्री सेल्सियस कल रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.8 डिग्री कम होकर 25.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो कहने का आशय यह है कि अब ये बारिश का मौसम है, तो कभी धूप निकलेगी, कभी बादल छाएंगे, कभी तेज बारिश होगी, कभी बूंदाबांदी होगी। और ऐसे में जब हम कहीं बाहर होंगे, अचानक बारिश आ जाएगी, तो हम भीग भी जाएंगे। मानसून में या बारिश के मौसम में हवा में भी नमी बढ़ जाती है, और यही नमी हमें उमस देती है, जो कभी कभी परेशान भी करती है और बीमारियों को भी जन्म दे देती है। इस मौसम के दौरान खासतौर से त्वचा संबंधी संक्रमण, फंगल इन्फेक्शन और डिहाइड्रेशन या डाइजेशन जैसी कुछ समस्याएं बढ़ जाती हैं, और इन्हें नज़रअंदाज करने से ये कभी कभी बहुत ही गंभीर रूप ले लेती हैं। ऐसे में हमको इस बरसात के मौसम में थोड़ा सा विशेष रूप से सावधानी रखने की जरूरत होती है। नमी बढ़ जाने से त्वचा संबंधी बहुत ज़्यादा रोग होते हैं, जिनमें फंगस है, बैक्टीरिया और अन्य ऐसे संक्रमण हैं जिनके पनपने से हमें परेशानी होती है। शरीर के कुछ हिस्सों में, त्वचा की सिलवटों में फंगस और बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं। बस यही वजह है कि इस मौसम में त्वचा संबंधी संक्रमण, खुजली, एलर्जी और बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्वच्छता और साफ सफाई, तभी हम संक्रमण के खतरे से बच सकते हैं। इस मौसम में कुछ आसान सी सावधानियां अपनाकर हम बहुत सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जब गर्मी और उमस हो तो हमें स्नान तो करना ही चाहिए, करते ही हैं, लेकिन दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, और जहां तक संभव हो सूती कपड़े पहने, और पसीने वाले जो कपड़े होते हैं उनको बदल लीजिए। यदि बारिश में भीग जाएं तो उन कपड़ों को भी जितना जल्दी हो सके बदल लीजिए, शरीर को अच्छी तरह से सुखा लीजिए, उसके बाद दूसरे कपड़े पहन लीजिए। हरी सब्जियां खाएं, और इसके अलावा पानी भरपूर मात्रा में पिएं, छाछ है ताजे फलों का सेवन करें, और आजकल बाजार में जो कटे फल वगैरह अगर बिक रहे हैं तो वो बिल्कुल मत खाइएगा, क्योंकि बारिश का मौसम है, पुरवाई हवा चलती है, तो संक्रमण का ज़्यादा खतरा रहता है, उनके सड़ने की भी बहुत ज़्यादा संभावना बनी रहती है। ये तो हो गई अपने व्यक्तिगत एक स्वास्थ्य की बात, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा हम जिस जगह रहते हैं वहाँ भी बरसात के मौसम में बहुत कुछ देखने को मिलता है और नुकसानदायक

भी होता है, तो उससे बचने के लिए भी हमें थोड़ी सी सावधानियों की जरूरत होती है। अगर हमारे घर में कहीं सीलन आती है, पानी का रिसाव है, बिजली से जुड़े खतरे, कीड़ों की समस्याएं, ये भी बरसात के मौसम में हो जाती हैं, तो अब क्योंकि बरसात शुरू हो चुकी है तो हमें थोड़ा सा अपने घर आसपास ये देख लेना चाहिए और जहां ज़रूरी हो तो वहां बदलाव करना लाजमी है और कर लेना चाहिए ताकि आप और आपका घर सुरक्षित रहे, ठीक से रहे। मानसून आने से पहले अपनी छत की अच्छी तरह से जांच कर लीजिए, जहां ज़रूरत हो वहां समय रहते मरम्मत करवा लीजिए। बारिश के दौरान सबसे बड़ी समस्या छत पर पानी का एक जगह इकट्ठा हो जाना है, जिससे कई तरह की परेशानियां हो जाती हैं। छत की ढलान अगर सही है या नहीं है तो ये भी देख लीजिए, और अगर ठीक नहीं है तो उसे ठीक करवा लीजिए। घर के आंगन है, बालकनी है, छत की नालियाँ हैं, या जहाँ कहीं भी मोरी है, अपने गांव में मोरी भी कहते हैं नालियों को, उन्हें साफ करवा लीजिए ताकि उनमें पानी ना रुके और पानी आसानी से बाहर निकल जाए। जैसा कि हमने अभी कहा कि बरसात के मौसम में हवा में नमी बढ़ने से जगह जगह दीवारों पर या जहां बिजली के संयंत्र लगे हैं, तार लगे हैं, वहां पर भी नमी आ जाती है, तो ऐसे में बिजली के तारों में करंट आने की संभावना बढ़ जाती है, शॉर्ट सर्किट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और नमी होने से बहुत जगहों पर या उपकरणों में जंग भी लग जाती है। तो इन चीज़ों को भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। समय रहते अपने सॉकेट या वायर की अपनी जांच करवा लीजिए, कोई तार पुराना है या ख़राब है तो उसे इलेक्ट्रिशियन से बदलवाने की बजाय आप खुद भी ठीक कर सकते हैं, और तेज़ बारिश हो, आंधी या बिजली चमकने पर अपने घर में जो टेलीविज़न है, टीवी सेट है या सेट टॉप बॉक्स है, वाईफाई है या लैपटॉप के प्लग वगैरह हैं, उनको निकाल कर ही रख दीजिए। बरसात के मौसम में घर में जो पुराना फर्नीचर है या लकड़ी के बेड हैं तो इनकी भी थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि नमी सोखने से दरवाजे और ये फर्नीचर जो होता है ये फूल जाता है, इससे सीलन बढ़ती है और दीमक भी आसानी से लग जाती है जो अंदर से खोखला कर देती है सारे हमारे फर्नीचर को। तो नमी के कारण जो सतह पर काले या सफ़ेद फफूंद के धब्बे, पानी के निशान भी बन जाते हैं, बचाव के लिए फर्नीचर और पॉलिश आप करवा सकते हैं, और अलमीरा में नमी रोधी कुछ ऐसे रसायन आते हैं जिन्हें हम रख सकें तो उनसे क्या है कि नमी कम होती है और शुष्कता बनी रहती है। बरसात के मौसम में मच्छर और मक्खियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। घर के आसपास पानी इकट्ठा मत होने दीजिए, क्योंकि रुका हुआ पानी इन सब के लिए बड़ा ही फायदेमंद होता है। बर्तन हैं, गमले हैं, कहीं टायर है या पुराना कोई और बर्तन रखा हुआ है, उसमें भी थोड़ा देखिए कि पानी इकट्ठा ना हो, या उन्हें उल्टा करके रख दीजिए। कूलर का पानी भी नियमित रूप से बदलते रहिए। घर की साफ सफाई रखिए, और क्योंकि मच्छर हो जाते हैं दिनों में तो पूरी आस्तीन के आप कपड़े पहनिए। बात वहीं फिर आ जाती है अपने लिए, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना तो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। हम स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, खाएंगे पिएंगे तभी हम जीवन का आनंद उठा पाएंगे, और बरसात का मौसम बहुत सुहाना होता है। कुछ परेशानियाँ होती हैं लेकिन उनको सावधानी अगर हम बरत लें तो कोई परेशानी नहीं है, भरपूर बरसात का आनंद ले सकते हैं।

0: आकाशवाणी आगरा से इस समय आप सुन रहे हैं आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास, अपने रेडियो साथी विशेष कुमार शर्मा के साथ।
1: सूरज की खिलती पहली किरण के साथ आकाशवाणी अपने एक और नए अंदाज में दे रही है आवाज। डीटीएच यानी डायरेक्ट टू होम सेवा कर आप सबका स्वागत है।
2: गाता एक राम
3: भक्ति संगीत, प्रादेशिक संगीत, विविध भारती FM के कार्यक्रम, प्रादेशिक समाचार और देश विदेश के समाचारों का भरपूर आनंद DTH सेवा के संग।
1: देश के किसी भी कोने में रहते हो आप, अपने ही राज्य से उस कोने में भी DTH के माध्यम से जुड़ सकते हैं आप।
3: बस DTH सेवा का उठाए लाभ,
1: आपकी हर सांस के साथ साथ DTH सेवा 24 घंटे रहे आपके पास।
3: डिजिटल क्वालिटी का ऐसा सुंदर प्रसारण और कहां, DTH सेवा है जहां।

आसपास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए अब सुनते हैं आसपास की कुछ खास सूचनाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना 2 के अंतर्गत शहर के हजारों गरीब और जरूरतमंद परिवारों का अपने घर का सपना साकार होने की ओर कदम बढ़ रहा है। डूडा के माध्यम से करीब 5,000 से ज्यादा पात्र परिवारों को पक्के आवास का लाभ दिलाने की दिशा में बहुत तेजी से काम चल रहा है। फिलहाल 2,500 से ज्यादा लाभार्थियों के आवास स्वीकृत हो चुके हैं, जिनके खातों में प्रथम किस्त की 1,00,000 की धनराशि भी प्रेषित की जा चुकी है, जबकि 21,000 से ज्यादा आवेदनों का भौतिक सत्यापन तेजी से

हजार से ज्यादा आवेदनों का भौतिक सत्यापन तेजी से कराया जा रहा है। इस बीच योजना के नाम पर ठगी करने वाले दलालों के सक्रिय होने की शिकायतों के बाद नगर निगम प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 और राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा एनसीएफ 2023 के अनुरूप प्रदेश के 29,000 से अधिक विद्यालयों में पठन पाठन के पैटर्न में बदलाव के लिए राज्य पाठ्य चर्चा रूपरेखा का नया ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। ये कार्यशाला यूपी बोर्ड में 6 से 10 जुलाई के बीच आयोजित की गई है। इस संबंध में जिन पहलुओं पर कार्य किया जाना है उनके लिए एनसीएफ का अध्ययन कर उन क्षेत्रों का चिन्हांकन किया जाना है। इसमें लक्ष्य और दृष्टिकोण, विद्यालयी संस्कृति, वातावरण सृजन, कार्य सृजन के संदर्भ में विशेषज्ञों से विमर्श कर ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। यूपी बोर्ड के अनुसार 5 दिवसीय कार्यशाला में पाठ्य चर्चा, पाठ्यक्रम से जुड़े विशेषज्ञ, यूपी बोर्ड के साहित्यिक सहायक और शोध सहायकों के साथ कुछ विशेषज्ञ शिक्षकों को बुलाया गया है। परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, रसोईया और अन्य कर्मियों को सामूहिक बीमा का लाभ दिया जाएगा। इसमें 1 करोड़ रुपए तक दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एमओयू करेगा। इससे 10 लाख स्थायी और संविदा शिक्षण कर्मियों को लाभ मिलने की संभावना है। एमओयू के अंतर्गत 10,000 से अधिक मासिक वेतन पाने वाले संविदा कर्मियों को 30 लाख और आंशिक विकलांगता होने पर 15 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। यूपी बोर्ड वर्ष 2026 की हाई स्कूल इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट की परीक्षाएं 28 जुलाई को आयोजित की जाएंगी। परीक्षा के लिए 42,000 से अधिक परीक्षार्थियों ने आवेदन किया है। हाई स्कूल इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक चलेगी। इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षाएं दूसरी पाली में 2 बजे से 5:15 बजे तक आयोजित की जाएगी। सभी परीक्षाएं जनपद मुख्यालय पर जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर संपन्न कराई जाएंगी। आगरा कॉलेज के बीएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षा 9 जुलाई को आयोजित की जाएगी। ये जानकारी सभी परीक्षार्थियों को निर्धारित तिथि पर प्रातः 10 बजे बीएड विभाग में उपस्थित होना अनिवार्य है। विद्यार्थियों से समय से पहुंचने तथा आवश्यक अभिलेख और शैक्षणिक सामग्री साथ लाने के निर्देश दिए गए हैं। कॉलेज प्रशासन ने परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली हैं और विद्यार्थियों से निर्धारित समय का पालन करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी 2026 के कारण शनिवार को आयोजित होने वाले संपूर्ण समाधान दिवस की तारीख में बदलाव किया गया है। शासन के आदेश के अनुसार अब तहसीलों में शनिवार को होने वाला कार्यक्रम सोमवार यानी 6 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। 4 जुलाई को टीईटी के कारण प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए संपूर्ण समाधान दिवस को स्थगित करने का निर्णय लिया गया था। शराब के सेवन से उत्पन्न होने वाली पारिवारिक हिंसा एक गंभीर समस्या है। इससे न सिर्फ व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है बल्कि आर्थिक हानि भी पहुंचती है। इससे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। ऐसे में कई बार लोग गलत कदम उठा लेते हैं। इस तरह की घटनाओं को काउंसलिंग से रोका जा सकता है। इसके लिए मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय में उचित व्यवस्था की गई है। नशे की लत से परिवार में दरार आ रही है। पति पत्नी के रिश्ते बिगड़ रहे हैं। कई बार शारीरिक उत्पीड़न भी बढ़ जाता है। जब कोई व्यक्ति हत्या जैसा अपराध करता है तो समझ जाएं कि मानसिक पीड़ा चरम पर आ गई है। इस तरह की घटनाएं एक दूसरे अलग होकर रोकी जा सकती हैं, मगर कई बार समाज के नाते कोई ऐसा नहीं कर पाता। एक ऐसी स्थिति आती है जब जीवन दुश्वार हो जाता है। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की भूमिका इस समस्या के समाधान में अहम हो जाती है।
उनकी विशेषज्ञता, परामर्श और जागरूकता अभियान समाज को सुरक्षित

बनने और ऐसे दुखद हादसों को रोकने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। यह आवश्यक है कि ऐसे मामलों को केवल आपराधिक घटनाओं के रूप में न देखा जाए, बल्कि उन अंतर्निहित मानसिक और सामाजिक कारणों में भी समझा जाए जो उन्हें जन्म देते हैं। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 144-16, इसे एक बार फिर से सुन लीजिए, 144-16 पर कॉल करके दिन रात काउंसलिंग की जाती है। इसमें लोगों को विशेषज्ञ समझाते हैं और उनकी बीमारी को दूर करने का प्रयास किया जाता है। टनकपुर और नांदेड़ के बीच यात्रियों को जल्द नई रेल सुविधा मिलने जा रही है। नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन 6 जुलाई को किया जाएगा। ये ट्रेन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई प्रमुख शहरों को जोड़ेगी। जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार ट्रेन संख्या 05012 टनकपुर नांदेड़ एक्सप्रेस 6 जुलाई सोमवार को टनकपुर से रवाना होगी। ये ट्रेन पीलीभीत, बरेली, इज्जतनगर, बदायूं, कासगंज, मथुरा और आगरा कैंट पहुंचेगी। एसएन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की सेंट्रल लैब को नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज में सर्टिफिकेशन मिल गया है। अब यहां की लैब की जांच रिपोर्ट देशभर में मान्य होगी। इसके साथ ही एसएन मेडिकल कॉलेज का चौथा राजकीय मेडिकल कॉलेज बन गया है, जिसकी लैब को एनएलबीएल की मान्यता है। लैब में 24 घंटे जांच की सुविधा है। यहां हर दिन 7000 से अधिक जांचें होती हैं। कमेंट और लाइक के चक्कर में सड़क पर वाहन दौड़कर स्टंट करने पर आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। चौराहों पर ड्यूटी के साथ ही ट्रैफिक पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से स्टंटबाजों पर नजर रख रही है। रविवार को ट्रैफिक पुलिस ने बाइक और स्कूटी का 37,500 का चालान काटा था। 2 साल में ट्रैफिक पुलिस ने स्टंट करने वालों पर 3,200 वाहनों के चालान काटे हैं। 1,000 वाहनों को सीज करने की कार्यवाही की गई है। रोड पर वीडियो बनाने के दौरान यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। इसके अंतर्गत 3 से 5 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। वाहन की छत, बोनट, गेट पर बैठकर स्टंट करते हुए वीडियो बनाना भी अपराध की श्रेणी में आता है। रेलवे ट्रैक, स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर वीडियो बनाना भी अपराध की श्रेणी में है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर अरसेना गांव पर अंडरपास निर्माण को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी प्रशासन को भेजी है। परियोजना निदेशक के अनुसार ग्राम अरसेना में स्थानीय लोगों की आवाजाही के लिए पहले से ही फुट ओवर ब्रिज और सर्विस रोड की सुविधा उपलब्ध है और 6 लेन के चौड़ीकरण का कार्य भी नियमानुसार पूर्ण किया जा चुका है। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनों का विस्तार किया है। आगरा कैंट उधना एक्सप्रेस 14, 21 और 25 जुलाई, उधना कैंट एक्सप्रेस का 15, 22 और 26 जुलाई, कानपुर सेंट्रल असरवा एक्सप्रेस का 13, 20 और 31 जुलाई, सुबेदारगंज वलसाड एक्सप्रेस का 11, 18 और 29 जुलाई को संचालन किया जाएगा। और आसपास में आइए अब सुनते हैं खोई हुई व्यक्तियों के बारे में सूचनाएं। प्राप्त सूचना के अनुसार महक निवासी नैना नाजाट, ग्वालियर रोड, थाना सदर बाजार, जनपद आगरा। महक दिनांक 15 मई 2026 से अपने घर से लापता है। महक की उम्र 23 वर्ष है। कद लगभग 113 सेंटीमीटर। चेहरा गोल है, शरीर सामान्य है। महक के बारे में यदि कोई जानकारी या सूचना आपको मिले तो आप थाना प्रभारी, थाना सदर बाजार, जनपद आगरा को सूचित कर सकते हैं। एक अन्य सूचना के अनुसार पूनम निवासी नैना नाजाट, थाना सदर बाजार, जनपद आगरा।

पूनम दिनांक 26 मई 2026 से अपने घर से लापता है। पूनम की उम्र 27 वर्ष है, कद लगभग 160 सेंटीमीटर, रंग गेहुआ है, शरीर की बनावट सामान्य है। पूनम के बारे में यदि कोई जानकारी या सूचना आपको मिले तो आप थाना प्रभारी, थाना सदर बाजार, जनपद आगरा को सूचित कर सकते हैं। शारदा निवासी सरस्वती विहार, सेवला सराय, थाना सदर बाजार, जनपद आगरा। शारदा दिनांक 22 मई 2026 से अपने घर से लापता है। शारदा की उम्र 31 वर्ष है, कद लगभग 158 सेंटीमीटर, रंग गेहुआ है, शरीर सामान्य है, चेहरा गोल है। शारदा के बारे में यदि कोई जानकारी या सूचना आपको मिले तो आप थाना प्रभारी, थाना सदर बाजार, जनपद आगरा को सूचित कर सकते हैं। खोए हुए व्यक्तियों की इन सूचनाओं के साथ ही आज का आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास समाप्त करने की विशेष कुमार शर्मा को अनुमति दीजिए। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर समय मिला लीजिए। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सवेरे के ठीक 8 बजे हैं। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूरदराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
2: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है।

0: जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
1: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
2: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए, वो दूसरी बात है, 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
0: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
3: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा

0: कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
1: मातृशक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहे।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आकाशवाणी FM गोल्ड और 100.1 MHz पर आज सवेरे 10:30 से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला, संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटी की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ब्रहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिक्स ने कहा है कि लगातार 2 भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने होर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमरीका से जंग तो जीता लेकिन

0: घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने घेरा। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे नेस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ कंपेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे, ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान, और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस नेक्स्ट फेज ऑफ रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम विकसित उड़ान टू गिव फिलिप टू एयर ट्रैवल इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज। Government hikes onion procurement price for price stabilization buffer by 13% to 2,125 rupees per quintal to boost farmer income. IMD says monsoon rains will continue to lash large parts of the country over the next few days. Australian Prime Minister Anthony Albanese hails India as key economic partner ahead of Prime Minister Modi's visit. And in football, France and Morocco enter quarterfinals of FIFA World Cup. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi launched the next phase of regional air connectivity scheme Viksit Udaan in Jodhpur, Rajasthan yesterday to give fillip to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities and remote regions. Addressing a massive gathering, the Prime Minister said that under the new phase of Udaan scheme, smaller cities and remote regions will be connected through air connectivity.
3: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
2: Prime Minister Modi also inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport, marking a major push to India's civil aviation infrastructure and regional connectivity. Mr. Modi highlighted that the architecture and interior of the new terminal are trending on social media.
3: जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है, और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर, इंटीरियर ये सोशल मीडिया में छाया हुआ है। चारों तरफ राजस्थान ही राजस्थान दिख रहा है। साथियों, ये मारवाड़ में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई गति देगा।
2: Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu also said that the launch of the Viksit Udaan scheme will mark the next chapter of India's regional connectivity journey. Mr. Naidu said the scheme, launched by Prime Minister with an outlay of over 28,840 crore rupees, will facilitate the development of over 100 new aerodromes and 200 helipads, bringing the dream of affordable air travel closer to millions and connecting the aspirations of a rising India.
4: आदरणीय

0: series at Old Trafford in Manchester yesterday. And now for a look at today's newspapers, it's over to VC Pramod.
1: Thank you, Saira. Papers have widely noted Prime Minister Modi's visit to Gujarat and Rajasthan, where he inaugurated path-breaking developmental projects, while the new EV policy in the state capital has also gained traction. Hindustan Times writes, India overcame crisis on refining prowess. We'll keep building, says Prime Minister. The Hindu notes, Modi inaugurates semiconductor facility in Gujarat. The Sunday Express headlines, new EV policy empowers middle class. Delhi transforming has chosen a new direction for cleaner, more modern future. Sunday Times informs, City Court cites Supreme Court order, denies bail to Sharjeel Umar. Telegram told to act against piracy or face action, writes the Economic Times. And finally, indeed, love knows no bounds. The Sunday Express writes about one Zeeshan Ahmed who crossed the LOC to meet his love, Ira Majid. The two had fallen in love over Snapchat. A month after he crossed LOC for love, 22-year-old POK man sent back. And with that, it's back to you, Saira.
0: Thanks, Pramod. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi launches next phase of regional air connectivity scheme Viksit Udaan to give fillip to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities. Government hikes onion procurement price for price stabilization buffer by 13% to boost farmer income. IMD says monsoon rains will continue to lash large parts of the country over the next few days. Australian Prime Minister Anthony Albanese hails India as key economic partner ahead of Prime Minister Modi's visit. And in football, France and Morocco enter quarterfinals of FIFA World Cup. And with that, we end the morning news. Have a great day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला, पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में फिजाई सफर को फरोग देने के लिए इलाकाई फिजाई राबता स्कीम विकसित उड़ान के अगले मरहले का आगाज किया। हुकूमत ने प्याज का वाफर जखीरा रखने और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए प्याज की खरीदारी कीमत में 13% का इजाफा करते हुए इसे 2,125 रुपए फी कुंटल कर दिया है ताकि किसानों की आमदनी में इजाफा हो सके। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने अगले कुछ दिनों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून की बारिश जारी रहने की पेशगोई की है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बानीज ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से कबल भारत को अहम इकतसादी शराकत दार करार दिया है। और फुटबॉल में फ्रांस और मराकश ने फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों और दूर दराज के इलाकों को हवाई सफर से जोड़ने के मकसद से कल राजस्थान के जोधपुर में इलाकाई फिजाई कनेक्टिविटी स्कीम विकसित उड़ान के अगले मरहले का आगाज किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उड़ान स्कीम के नए मरहले के तहत छोटे शहरों और दूर दराज के खितों को फिजाई कनेक्टिविटी के जरिए जोड़ा जाएगा।
3: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
2: वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का भी इफ्तिताह किया, जिससे भारत के शहरी हवाबाजी के बुनियादी ढांचे और इलाकाई कनेक्टिविटी को बड़े पैमाने पर फरोग हासिल होगा। जनाब मोदी ने इस बात को नुमाया किया कि नई टर्मिनल इमारत का आर्किटेक्चर और इंटीरियर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है।
3: जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर इंटीरियर ये सोशल मीडिया में छाया हुआ है। चारों तरफ राजस्थान ही राजस्थान दिख रहा है। साथियों, ये मारवाड़ में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई गति देगा।
2: इस मौके पर शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने कहा कि

0: विकसित उड़ान स्कीम का आगाज इलाकाई कनेक्टिविटी के भारत के सफर में नए बाब की शुरुआत होगी। जनाब नायडू ने कहा कि वजीर आजम के जरिए 28,840 करोड़ रुपए की तखमीना लागत वाली स्कीम के आगाज से 100 से ज्यादा नए और 200 हेलीपैड्स की तरक्की में आसानी होगी, जिससे किफायती हवाई सफर का लाखों लोगों का ख्वाब पूरा होगा और उभरते भारत की उमंगों की तकमील होगी।
1: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
0: बाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सनात में सीजी सेमी के बाहर से मंगाए गए सेमी कंडक्टर की तरतीब और तजुर्बे के जदीद तरीन प्लांट OSAT का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव, गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल और टेक्नोलॉजी शोबे के कई आलमी कायदीन भी मौजूद थे। 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी से कायम इस जदीद फैक्ट्री की सालाना पैदावारी सलाहियत 5 अरब सेमी कंडक्टर चिप्स तक होगी। एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि सनान में कायम सीजी सेमी OSAT मरकज न सिर्फ मुल्क में चिप तैयार करने के इको निजाम को मजबूत करेगा बल्कि टेक्नोलॉजी के शोबे में खुद किफालत को फरोग देगा और आलमी सेमी कंडक्टर वैल्यू चेन में भारत के मकाम को मजीद मुस्तहकम करेगा।
2: भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमी कंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: उन्होंने मजीद कहा कि सनानंद का ये प्लांट इब्तदाई मरहले में सालाना 20 करोड़ चिप्स तैयार करने की सलाहियत रखता है। उन्होंने सीजी सेमी को मुस्तकबिल में पैदावार बढ़ाकर सालाना 500 करोड़ चिप्स तक पहुंचाने का हदफ मुकर्रर करने पर मुबारकबाद भी दी।
2: यहाँ से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी। आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
0: इससे कबल सनानंद पहुंचने पर वजीर आजम ने आला टेक्नोलॉजी के हामिल प्लांट का दौरा किया, पैदावारी अमल का मुआयना किया और वहां काम करने वाले इंजीनियरों और ऑपरेटरों से मुलाकात करके उनसे तबादले ख्याल किया। हुकूमत ने प्याज का वाफर जखीरा रखने और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए प्याज की खरीदारी की कीमत में 13% इजाफा कर दिया है। प्याज की खरीदारी कीमत 1,875 रुपए फी क्विंटल से बढ़ाकर 2,125 रुपए फी क्विंटल कर दी गई है। सारिफीन के उमूर खुराक और सरकारी निजाम तकसीम की वजारत के मुताबिक नजरसानी शुदा खरीदारी कीमत से प्याज के काश्तकारों को बेहतर मुनाफा मिलेगा, जबकि कीमतों के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के खरीदारी अमल को भी तकवीत मिलेगी। पेश है एक रिपोर्ट।
3: भारत सरकार की जानिब से प्याज का वाफिर जखीरा रखने और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए प्याज की खरीदारी नैफेड और कौमी कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया NCCF के जरिए जारी है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के महकमे 2025-26 के दूसरे पेशगी तखमीने के मुताबिक मुल्क में प्याज की पैदावार 307 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा होने का इम्कान है। वजारत ने बताया कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में प्याज की मौजूदा जखीरा काफी है और इस वक्त जखीरा शुदा प्याज की किल्लत के कोई आसार नहीं है। इस वक्त मुल्कगीर सतह पर प्याज की औसत खुर्दा कीमत 31 रुपए फी किलोग्राम है। जून 2026 के दौरान तकरीबन 1.5 लाख मैट्रिक टन प्याज बरामद की गई और प्याज की बरामदात मामूल के मुताबिक जारी है। दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस महीने की 20 तारीख से शुरू हो रहा है और 13 अगस्त तक जारी रहेगा। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने मुतला किया कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हुकूमत की जानिब से 20 जुलाई से पार्लियामेंट का मानसून इजलास तलब करने की तजवीज को मंजूरी दे दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब किरण रिजिजू ने कहा कि इस इजलास में कौमी अहमियत के हामिल उमूर पर बामाने बहस, तफसीली तबादले ख्याल और अहम फैसलों पर तवज्जो दी जाएगी। پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری

ये खूबसूरत कर्णप्रिय आवाज है लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है हीरो। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और इसे संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कहते हैं कि जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में हीरो फिल्म का सदाबहार गीत। इसे लिखा था आनंद बख्शी ने, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है तोहफा फिल्म से। गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर ने, संगीतकार हैं बप्पी लहरी, आवाजें हैं किशोर कुमार, लता मंगेशकर और बेबी कविता की। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे।

तोहफा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार, लता मंगेशकर और बेबी कविता की आवाजों में। गीतकार थे इंदिवर, संगीतकार बप्पी लहरी। आकाशवाणी आगरा से इस समय आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत। कार्यक्रम है गीतांजलि और मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो साथी विशेष कुमार शर्मा। यह है कार्यक्रम।

फिल्म का अगला गीत। फिल्म का नाम है थोड़ी सी बेवफाई। गीतकार गुलजार, संगीतकार खय्याम, आवाजें हैं अनवर और सुलक्षणा पंडित की। दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया न था, इस तरह बरसात का मौसम पहले कभी आया न था।

0: आप सुन रहे थे अनवर और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में गुलजार का लिखा गीत। धुन बनाई थी खय्याम ने, फिल्म का नाम था थोड़ी सी बेवफाई। आकाशवाणी आगरा से गीतांजलि कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गाने।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: गीतांजलि कार्यक्रम का अगला सदाबहार गीत रविंद्र रावल ने लिखा है, धुन बनाई है राम लक्ष्मण ने, फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन, आवाजें हैं लता मंगेशकर और SP वाला सुब्रमण्यम की।
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun।
0: मौसम इस वास्ते अच्छा है कि तू देखा करे, बरसात इसलिए होती है कि तू भीगा करे।

ये आवाजें थी लता मंगेशकर, एसपी वाला सुब्रमण्यम और साथियों की। फिल्म का नाम था हम आपके हैं कौन। गीतकार थे रविंद्र रावल, संगीतकार राम लक्ष्मण। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं उजाला फिल्म का एक सदाबहार गीत। हसरत जयपुरी का लिखा गीत है, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, आवाजें हैं मन्ना डे और लता मंगेशकर की। गर्मियों की शाम में ठंडी सी फुहार हो तुम, मेरे सूखे दिल की पहली बहार हो तुम।

वो लोग मेरे बहुत प्यार करने वाले थे, गुजर गए हैं जो मौसम गुजरने वाले थे। आप सुन रहे थे मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाजों में हसरत जयपुरी की गीत रचना, धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने, फिल्म का नाम था उजाला। इसके साथ ही गीतांजलि कार्यक्रम समाप्त करने की विशेष कुमार शर्मा को अनुमति दीजिए। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, 9:15 होने को है, हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: लखनऊ केंद्र से चर्चा।
1: सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के लागू होने के बाद ग्रामीण विकास, कृषि और स्थानीय अर्थव्यवस्था में होने वाले बदलाव पर अर्थशास्त्री एपी तिवारी से खास बातचीत। वार्ताकार हैं शैलेंद्र शर्मा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले 12 सालों में ग्रामीण विकास, कृषि और कृषि उत्पादन के साथ ही रोजगार के मोर्चे पर कई कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में अब मनरेगा की जगह विकसित भारत जीराम जी अधिनियम लागू किया गया है, जिसमें 125 दिन की रोजगार की गारंटी के साथ ही 300 रुपए की न्यूनतम मजदूरी भी तय की गई है। सरकार का प्रयास है कि गांव में सिर्फ मजदूरी आधारित रोजगार नहीं बल्कि स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण, कृषि उत्पादकता और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी जाए। सरकार के इस विजन को बीवी रामजी अधिनियम कैसे पूरा करेगा, क्या खास बातें हैं इस अधिनियम में, मनरेगा की खामियों को इसमें कैसे दूर किया गया है, आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अर्थशास्त्री एपी तिवारी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी
2: सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम को ग्रामीण विकास और आर्थिक दृष्टि से आप कैसे देखते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मॉडल में ये किस तरह का परिवर्तन ला सकता है, खासतौर पे तब जब इसमें जल सुरक्षा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका और मौसमी घटनाओं से जुड़े कामों पर फोकस किया गया है।
3: विगत 12 वर्षों में लगातार मोदी सरकार ने खेती और खेती से जुड़ी हुई क्रियाओं को आगे बढ़ाया, जैसे वानिकी है, पशुपालन, मछली पालन और गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसके विकास पर जोर दिया गया। मेरा मानना है कि आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो एक जो कोशिश की गई है हाल ही में, भारत देश का विकास तभी होगा जब गांव का तेजी के साथ विकास होगा, लेकिन इसकी एक अहम कड़ी है कि गांव में ही लोगों को काम मिले, खासतौर पर वह जो अकुशल लोग हैं, अकुशल श्रमिक हैं, उन्हें गांव स्तर पर ही काम मिले। इसलिए ये है जो विकसित भारत जी राम जी स्कीम एक नए अवतार में कह सकते हैं लाई गई है। ये एक गारंटी है रोजगार की, जो पात्र श्रमिक होंगे उनको वर्ष में 125 दिनों का काम मिलेगा, इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर है, भौतिक संपत्तियों का सृजन है, इसको बल मिलेगा। जो कौशल विकास, बाजार और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर है, खेती का काम है, जल सुरक्षा है, इन सबको जोड़कर गांव का समग्र विकास हो, इसकी कोशिश इस स्कीम के माध्यम से किए जाने का संकल्प लिया गया है।
2: बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने ग्रामीण विकास की बात की, मनरेगा की बात करें सर, तो मनरेगा को रोजगार की गारंटी के तौर पर लाया गया था, लेकिन जो ये नया अधिनियम है रोजगार के साथ साथ विकास की भी बात करता है, जैसा आपने चर्चा में कहा भी, तो ये

0: अधिनियम सर इन दोनों के बीच, यानी कि रोजगार और विकास, इन दोनों के बीच कैसे संतुलन बना रहा है?
1: देखिए, जब हम गांव के विकास की बात करते हैं तो एक उसका महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि गांव में ही गांव वालों को रोजगार मिले, क्योंकि इसका परिणाम ये होगा कि गांव के जो लोग हैं उनकी आर्थिक तरक्की होगी, उनकी आजीविका सुगम होगी या उनके आजीविका के स्रोतों में गांव स्तर पर ही बढ़ोतरी होगी। तो जब ऐसा होगा तो उनका पलायन भी गाँव से जो नगरों की तरफ होता है वो थमेगा। इससे जो कई तरह की आर्थिक और सामाजिक दुश्वारियां मजदूरों को झेलनी पड़ती हैं उससे भी निजात मिलेगी। मेरा मानना है कि जब गांव विकास की बात की जा रही है तो गांव विकास का मूल मंत्र ये है कि खेती तो बढ़े आगे, लेकिन खेती के साथ जो गांव की गैर खेती की क्रियाएं हैं, वानिकी है, पशुपालन है, मछली पालन है, इन सब को अगर जोड़कर देखा जाए तो विकास की गति और तेज होगी।
0: बिल्कुल सर, आपने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात की और हमने देखा कि कोरोना काल में जब कठिनाई का वक्त था तब ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने बड़ी मदद की सरकार की अर्थव्यवस्था को संभालने में। सरकार की सोच है कि इस नए अधिनियम के जरिए कृषि, सिंचाई, जल संरक्षण और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती दी जाए, तो आपको सर क्या लगता है जो प्रावधान किए गए हैं उससे ये सोच कैसे पूरी हो सकती है?
1: देखिए, जब गांव के विकास की बात की जाती है तो जो गांव में खेती है उसके साथ ही साथ गैर खेती की क्रियाएं हैं, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, जो मझोले उद्योग क्षेत्र की क्रियाएं हैं, जो ODOP सेक्टर की क्रियाएं हैं कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, जो लघु और सीमांत कृषक हैं उनके द्वारा जो क्रियाएं संपादित की जा रही हैं खेती की, उनको अगर बागवानी से जोड़ा जाए या खेती का विविधीकरण अगर किया जाता है तो खेती के विविधीकरण के लिए ये आवश्यक होगा कि नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। नई तकनीक में जब हम बात करते हैं तो रोबोटिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए, साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाए, और जब नई टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल गांव के विकास के लिए किया जाएगा तो तार्किक तौर पर गांव में एक ओर जहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, गांव वालों को गांव में ही रोजगार मिलेगा, भौतिक संपत्तियों का या भौतिक परिसंपत्तियों का सृजन होगा तो गांव की तरक्की एक टिकाऊ आधार पर होगी, क्योंकि ये बेहद जरूरी हो गया था कि गांव का विकास तो तभी टिकाऊ आधार पर होगा जब गांव स्तर पर रोजगार और आजीविका के टिकाऊ और गुणवत्ता परक संसाधनों में वृद्धि की जाती है। कि विकसित भारत जी राम जी स्कीम इस मंतव्य के साथ शुरू की गई है कि गांव का एक तरह से बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो, वहां पर जिंदगी सुगम हो लोगों की, गरीबों की, जो मजदूर हैं उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो। जब उनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा तो मेरा मानना है कि गांव की क्रय शक्ति बढ़ेगी और बढ़ी हुई गांव की क्रय शक्ति औद्योगिक विकास को भी तेज करेगी, क्योंकि ये जरूरी है कि गांव में जब क्रय शक्ति बढ़ेगी तभी जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन कह सकते हैं उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत हो रही है उनकी भी मांग बढ़ेगी। तो इस तरह गांव का जब विकास होगा तो लोगों की जिंदगी में सुधार होगा, लोगों का जीवन सुगम होगा, उनको स्थानीय तौर पर रोजगार मिलेंगे, तो इस प्रकार वो अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक जो संस्थाएं उनके गांव स्तर की हैं उनसे जुड़कर विकास को और आगे बढ़ाने में वो भरपूर सहयोग कर सकने की स्थिति में होंगे।
0: बिल्कुल सर, बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद इस अधिनियम के जरिए की जा रही है, लेकिन सर मनरेगा की वो कौन सी बड़ी खामियां थी जिन्हें दूर करते हुए इसे लागू किया गया है? ग्रामीण युवाओं के लिए ये किस तरह का अवसर पैदा करेगा? और सर क्या आपको लगता है इससे गांव से जो शहरों की ओर पलायन हो रहा था वो कम होने की संभावना है? बड़ी खामियों की बात करें तो जिस तरह से मनरेगा में हम देख रहे थे, चाहे दिनों की संख्या की बात कर लें या फिर वेतन भुगतान की बात कर लें या फिर कृषि फसलों के अवकाश की बात कर लें, ये सारी चीजें दूर की गई हैं इस नए अधिनियम में?
1: देखिए, जहां तक मनरेगा की बात है, जो पहले स्कीम चली तो उसमें कुछ खामियां पाई गई, जैसे बड़े पैमाने पर उसमें पारदर्शिता का अभाव था, यही नहीं जवाबदेही का अभाव भी पाया गया, कई प्रकार की अनियमितताएं हुई, कई तरह से कह सकते हैं उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ, मशीनों का प्रयोग किया गया, काम जो मजदूरों से होना था उनको मशीनों के जरिए कराया गया, और जो लेखा जोखा होता था उसमें भी जवाबदेही की कई तरह की कमियां पाई गई। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो मनरेगा स्कीम थी वो तो डिमांड ड्रिवन थी कह सकते हैं, लोग मांग करेंगे।

0: रोजगार मिलेगा। लेकिन जो ये विकसित भारत जी राम जी स्कीम नई शुरू की गई है, इसमें सप्लाई की जाएगी या सप्लाई ड्रिवन रोजगार सृजित किए जाएंगे, अर्थात सरकार के स्तर पर ये जो स्कीम लागू की गई है, अब पंचायतों को स्थानीय स्तर पर इस बात का अवसर प्राप्त होगा कि वो गांव की तरक्की के लिए योजनाएं बनाएं और उन योजनाओं के लिए वित्तीय जो प्रबंधन है, वित्तीय जो संसाधन है, वो केंद्र सरकार 60% देगी, 40% राज्य सरकारें लगाएंगी। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां पर केवल केंद्र शासित प्रदेशों को 10% लगाना होगा, बाकी केंद्र सरकार देगी। तो कुल मिलाकर ये भी कह सकते हैं कि यह स्कीम इस तरह तैयार की गई है जिसमें प्लानिंग, प्रोग्रामिंग और बजटिंग तीनों को एक साथ लेकर जब आगे बढ़ा जाएगा तो गांव की आर्थिक विकास की गति तेज होगी और जो पहले से कह सकते हैं मनरेगा में व्याप्त तो एक जवाबदेही का अभाव था, पारदर्शिता का अभाव था, एक नई प्रणाली ऐसी उभरेगी जिसमें जवाबदेही होगी, बेहतर कार्यान्वयन होगा और यही नहीं जो स्कीमें लागू की जाएंगी उनका अनुश्रवण भी होगा, क्योंकि मॉनिटरिंग बहुत महत्वपूर्ण है। डैशबोर्ड के जरिए दृष्टांकित किया जाएगा कि कौन सा काम कहाँ कब होना है, किस प्रकार की स्कीमों को तैयार किया जाना है। तो ये कह सकते हैं कि जो आवश्यक स्कीमें हैं गांव के समग्र विकास के लिए, उन स्कीमों को तरजीह दी जाएगी। एक बड़ी बात है कि इसमें जो प्राकृतिक विपत्तियां आती हैं, यानी जो जलवायु से चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं, जलवायु परिवर्तन की जो चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं, उनको भी संबोधित करने के लिए इस विकसित भारत जी राम जी स्कीम में एक क्षेत्र दिया गया है, कार्य का क्षेत्र दिया गया है। तो मेरा मानना है कि जल सुरक्षा हो, चाहे ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर हो, खेती हो, मछली पालन हो, भंडारण हो, बाजार हो, कौशल विकास हो, इन सभी को एकीकृत करते हुए गांव की समग्र उन्नति की चेष्टा के लिए ये स्कीम लागू की गई है और इससे गांव स्तर पर तो तरक्की होगी ही, साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि गांव अब राष्ट्रीय विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे।
1: बिल्कुल सर, आपने कहा कि गांव भी अब राष्ट्रीय विकास में योगदान दे सकेंगे, तो सर आपसे जानना चाहेंगे इस नए अधिनियम में रोजगार, परिसंपत्ति निर्माण, कृषि और ग्रामीण विकास को एक साथ जोड़ने की बात की गई है, ऐसे में कौन कौन से वो विशेष प्रावधान है जो आपको इस नए अधिनियम में विशेष तौर पर प्रभावी लगते हैं?
0: देखिए, जाहिर सी बात है कि इस नई स्कीम में सड़क है, सार्वजनिक भवन है, जैसे स्कूल के निर्माण की बात अगर है, स्वच्छता की विभिन्न सिस्टम्स जो काम कर रहे हैं, सोलर प्रणाली और कह सकते हैं जो नवीकरण ऊर्जा है उसको आगे बढ़ाने का काम, और जो आवासीय योजनाएं पहले से संचालित हो रही हैं और नई स्कीमें आवास की शुरू की जाएंगी, उनमें कह सकते हैं मजदूरों को रोजगार देकर एक ओर जहां उन्हें आजीविका के गुणवत्ता पर अवसर प्राप्त होंगे, इसके साथ ही साथ जो ये बात केंद्र में महत्वपूर्ण होगी, या ये कह सकते हैं कि सबसे अहम बात यह है कि स्थानीय स्तर पर टिकाऊ संपत्तियों के सृजन द्वारा गांव का विकास होगा और गांव स्तर पर ही कह सकते हैं स्थानीय रोजगार के अवसर लोगों को मिलेंगे। तो इससे जब पलायन थमेगा तो ये कह सकते हैं कि नगरीय विकास पर भी जो एक दबाव बनता है, गांव से जब मजदूर पलायित होकर नगरों की तरफ आते हैं तो कई प्रकार की नगरीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उनको भी संबोधित करने में ये विकसित भारत जी राम जी स्कीम सहायक सिद्ध हो सकती है।
1: सर, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, केंद्र सरकार साल 2047 तक एक ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना चाहती है, यानी कि विकसित भारत की सोच को साकार करना चाहती है, उस दिशा में ये पहल आपको कितनी महत्वपूर्ण लगती है, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां पर ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण विकास और रोजगार की बात बहुत बड़े पैमाने पे की जाती है?
0: देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश का संबंध है, उत्तर प्रदेश में खेती का क्षेत्र अभी भी एक प्रधान स्थान रखता है, साथ ही साथ जैसा मैंने अभी उल्लेख किया कि ODOP का क्षेत्र है, जो छोटी औद्योगिक इकाइयां हैं, फूड प्रोसेसिंग है, एग्रो प्रोसेसिंग है, इनको आगे बढ़ा

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर 9:30 और 25 सेकंड हुए हैं। आइए सुनते हैं गीत पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम है गीत मंजूषा। फिल्म का नाम है आजाद, आवाजें हैं लता मंगेशकर और चितलकर की। गीत राजेंद्र कृष्ण का, संगीत सी रामचंद्रन का।

लता मंगेशकर और चितलकर की आवाजों में आप सुन रहे थे आजाद फिल्म का गीत। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार सी रामचंद्रन। बाजी फिल्म का एक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं गीता दत्त की आवाज में। साहिर के बोल हैं, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन।

साहिर की गीत रचना आप सुन रहे थे सचिन देव बर्मन की धुन पर गीता दत्त और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम था बाजी। मोहम्मद रफी की आवाज में आइए सुनते हैं एक बार फिर साहिर के बोल। तर्ज बनाई है रोशन ने। फिल्म का नाम है बहू बेगम।

ये आवाज थी मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम था बहू बेगम। गीतकार थे साहिल उद्यानवी, संगीतकार रोशन। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में पाकीजा फिल्म का ये गीत, गीत मजरू सुल्तानपुरी का, संगीत गुलाम मोहम्मद का।

पाकीज़ा फिल्म का नगमा आप समाप्त कर रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। नगमा निगार थे मजरूह सुल्तानपुरी, मौसिकार गुलाम मोहम्मद। इसके साथ ही पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीत मंजूषा अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, लोक संगीत। लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं समवेश स्वर में ब्रज लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में इस समय आप सुन रहे हैं समवेश्वर में ब्रज लोकगीत। आइए सुनते हैं अगला लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे समवेश्वर में देशभक्ति परक लोकगीत। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन AIR ऐप पर 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरसरिता। सुरसरिता के सभी श्रोताओं को विशेष कुमार शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। यह है सुरसरिता कार्यक्रम का पहला सदाबहार गीत। फिल्म का नाम है दो रास्ते। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

दो रास्ते फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज पर आइए सुनते हैं एक और गीत। गीतकार हैं साहिर, फिल्म का नाम है दाग, आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज पर आप सुन रहे थे साहिर की गीत रचना। फिल्म का नाम था दाग। कार्यक्रम का अगला गीत एक छोटे से विज्ञापन संदेश के बाद।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: आकाशवाणी आगरा से इस समय आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गाने कार्यक्रम सुरसरिता में अपने रेडियो साथी विशेष कुमार शर्मा के साथ। फिल्म का नाम है धर्मकांटा। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, गीत मजरूह का, संगीत नौशाद का।

नौशाद की तर्ज पर आप सुन रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। फिल्म का नाम था धर्मकांटा।

ये है कार्यक्रम का अगला सदाबहार गीत। इसे गाया है लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने, गीत वर्मा मलिक का, संगीत उत्तम जगदीश का, फिल्म का नाम है वारिस।

0: ये युगल आवाजें थी सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम था वारिस। गीत के बोल लिखे थे वर्मा मलिक ने, धुन बनाई थी उत्तम जगदीश ने। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं बप्पी लहरी की तर्ज पर अनजान की गीत रचना, फिल्म का नाम है नमक हलाल, आवाजें हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की।
1: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना।

ये दो आवाजें थीं आशा भोसले और किशोर कुमार की। फिल्म का नाम था नमक हलाल। इसके साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरचरिता समाप्त करने की विशेष कुमार शर्मा को अनुमति दीजिए। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं विदुषी गिरिजा देवी का ख्याल गायन। प्रस्तुत है आपका गाया राग देवगंधार।

शायर में ख्याल गायन। इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 11 बजे हैं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर आधारित कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: 25 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले
1: आया होगा। पेड़ के काटने वालों को ये मालूम तो था।
2: शहर न्यूयॉर्क पुरजामियत तरीन शहर आलात
3: रंग रंग वाले माशाल्लाह तासुता हर शय पया पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है।
0: वे लंबे समय से बीमार थी। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतिकर्ताओं में से एक बना दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत
4: कोसम लांटी स्मृति रचनलु
5: विश्वविदना कोल
0: गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
6: ये पता होना चाहिए कि एक डिपेंडेंसी होती है, जैसे कोविड के टाइम में आप देखिए
7: जी सर,
6: कि जो भी घर में कोई भी

0: फार्मर था या कोई भी इंसान जिसने घर में सब्जियां उगा रखी थी, सब कुछ उगा रखा था, तो उसको क्या है कि कोविड के दौरान कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी किसी दुकान पे, एक ही दुकान पे निर्भर है
1: जी,
0: और वो दुकान भी बंद हो जाती या वो दुकानदार बोलता है मैं नहीं दे सकता हूं, मेरे पास स्टोर खत्म हो गया, तो आप सोचिए वो क्या हाल हो जाता है। तो ये छोटा सा मैं घरेलू एग्जांपल दे रहा हूं। सेना में आत्मनिर्भरता इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम लड़ाई के लिए जाते हैं तो हमारे जवान और ऑफिसर्स वो इक्विपमेंट के साथ लड़ते हैं, और वो इक्विपमेंट में एक कॉन्फिडेंस, भरोसा जब आता है, जब हमें पता ये हमारे द्वारा ही बनाया गया है और हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना है, जिस टेरेन में हम लोग रहते हैं, जिन पहाड़ों में रहते हैं या जिन कोल्ड कंडीशंस में रहते हैं। तो कहने का मतलब है आत्मनिर्भर भारत बहुत जरूरी है, और आज जो हमारी डिपेंडेंसी है बाहर देशों में ऑलमोस्ट खत्म होती जा रही है, और आज भारत सेल्फ रिलायंट देश है जो खुद, चाहे एआई हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे रॉकेट्स हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो। तो कहने का मतलब है ये सारी चीजें एक दिखाता है कि एक कंट्री के अंदर सेल्फ रिलायंस है और एक पावर है। जब हमारे पास सब कुछ है तो हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, और देश में हमारी सेना को पूरा एक भरोसा होता है कि जो हमें लड़ाई के लिए चाहिए, लॉजिस्टिक्स से लेकर सब कुछ, वो हमें स्पेयर पार्ट से लेकर सब मिलता रहेगा। तो ये है आत्मनिर्भर भारत, और ये पिछले, मैं बोलूंगा, एक डिकेड के अंदर या 10 साल में इसमें बहुत तीव्रता हमने देखी है। तो छोटे से सारांश में ये है आत्मनिर्भर भारत,
1: यानी हमारे पास अपनी बनाई हुई अगर चीजें रहेंगी तो एक तो हमें भरोसा रहेगा कि हमारी जरूरत के हिसाब से है, दूसरा अगर हमें उसके कुछ पार्ट्स चाहिए तो वो हमें समय पर मिलेंगे, हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो डॉक्टर अश्विंदर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम मॉडर्न एज में वॉरफेयर जो है उसमें काफी बदलाव देख रहे हैं, तो आप अपने अनुभव से बताएं कि इन दिनों क्या नई तकनीक आ रही है और क्या भारत में वो उपलब्ध है या अभी भी हम उसे इंपोर्ट कर रहे हैं।
2: बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने, और जो जनरल साहब ने बताया और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं उसको आगे लेके जाना चाहता हूँ। 1991 में एक पिक्चर आई थी सौदागर, उसमें एक बड़ा इंटेंस डायलॉग था राजकुमार जी का और उनके साथ दिलीप कुमार जी। तो उस डायलॉग को ऐसे शुरू करते हैं, मैं तुम्हें मारूंगा और जरूर मारूंगा, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, वो गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा।
1: जी,
2: ये वो वक्त आ गया है जिसको मैं कहता हूं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इस वक्त के अंदर हम जिस तेजी से इंडिजिनाइजेशन कर रहे हैं उसका आने वाले 10 साल में बहुत फायदा होगा। आपने बताया जो युद्ध में टेक्निक्स चेंजेस आए हैं, सबसे पहला चेंज आया है कि अब जो युद्ध है वो बियॉन्ड विजुअल रेंज हो गए हैं, यानी कि आमने सामने भी फौजें नहीं आती हैं, लेकिन इतना डिस्ट्रक्शन हो जाता है कि जिससे पूरी इकोनॉमी देश की हिल जाती है। आपने रशिया यूक्रेन का युद्ध देखा, आपने ईरान का देखा, आपने देखा कि पहले तो फाइटर जहाज, टैंक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, लेकिन अब ड्रोन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, ना केवल लंबी दूरी से अटैक लेकिन बहुत सस्ते सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हुए भी उतनी भारी इकोनॉमिक डैमेज, रिफाइनरीज पे आग, गैस के एरियाज, प्रोडक्शन साइट जैसे रास लाफान था उसके ऊपर हमला कतार के अंदर, तो उसका देखिए 3 से 8 साल लगेंगे उसको वापस 100% प्रोडक्शन कैपेसिटी में आने के लिए, कितना बड़ा पूरे विश्व के लिए वो नुकसान है। तो ये जो छोटे छोटे सिस्टम भी है ये भी आउट ऑफ प्रोपोर्शन रिजल्ट कर सकते हैं। और एक और बड़ी अहम चीज आ जाती है आज के जमाने के अंदर, हम जब इंपोर्ट करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट बड़ी महंगी होती है। अब देखिए, हम रफाल जहाज लेना चाहते हैं 114, 3.25 लाख करोड़ के हैं ये, 3.25 लाख करोड़ के, कितना हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो $40 बिलियन के करीब चला जाएगा दूसरे देश में, फ्रांस के अंदर। तो अगर हम इंडिजिनाइजेशन बढ़ाते हैं, आपको बड़ी अच्छी चीज, मैं जनरल साहब ने जो इनकी आर्मी ने की है, 91% एम्यूनिशन जो है आज इंडिजिनाइज हो गया है, यानी कि भारत के अंदर ही प्रोड्यूस होता है 175 में से 159 डिफरेंट टाइप की एम्यूनिशन, वो आज भारत के अंदर ही बनती है। और पिछले अगर हम दशक में देखें उससे पहले, तो उस दशक के अंदर हम देखते थे कि हमारी जो इंपोर्ट थी वो 70% थी बाहर से, आज 62% हम भारत के अंदर ही प्रोक्योरमेंट जो है भारत के अंदर ही बनाते हैं। 1.54 लाख करोड़ पिछले साल का था डिफेंस प्रोडक्शन, इस साल का है 1.78 लाख करोड़ डिफेंस प्रोडक्शन। हमारा जो डिफेंस

0: एक्सपोर्ट था 23,622 करोड़ से बढ़कर 38,424 करोड़ यानी कि 63% बढ़ गया है और आने वाले समय में 50,000 करोड़ हो जाएगा
1: जी।
0: तो कहीं ना कहीं हम ना केवल फॉरेन एक्सचेंज को बचा रहे हैं, हम फॉरेन एक्सचेंज बना भी रहे हैं डिफेंस एक्सपोर्ट से
1: जी।
0: और लास्ट चीज जो इस पे मैं कहना चाहता हूं कि एम्प्लॉयमेंट। सोचिए सैकड़ों आज इंडस्ट्रीज बन गई हैं, एमएसएमईज बन गई हैं जो गवर्नमेंट की अदिति पॉलिसीज हैं, आईडेक्स पॉलिसीज हैं या दूसरे जो प्रोत्साहन के मटेरियल हैं या जो हम को डेवलपमेंट कर रहे हैं। आपने बताया ना प्रधानमंत्री जी कह रहे थे C295 एयरक्राफ्ट, उससे 15,000 जॉब्स बढ़े हैं, उसी तरीके से ब्रह्मस से 25,000 बढ़े हैं, दूसरे बड़े बड़े LCH प्रोजेक्ट है उससे भी 20,000-25,000 जॉब्स बढ़ रहे हैं
1: जी।
0: तो कहीं ना कहीं जो 1,10,000 जॉब्स हमको सिर्फ दो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं जो यूपी और तमिलनाडु है 2027 तक वहां पे बढ़ेंगे
1: जी।
0: तो पूरे देश के अंदर एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन ला सकते हैं जब हम इंडिजनाइज करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट को
1: जी। यानी हम स्वदेशी को बढ़ावा तो दे रहे हैं हर फ्रंट में, लेकिन जब हम रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की बात करते हैं तब भी बहुत सारे फायदे उसके हैं और डिपेंडिंग इंडस्ट्रीज जो हैं उनको भी लाभ मिलता है और पूरा एक इकोसिस्टम है जो मजबूत होता है जी। आपने फिल्म के डायलॉग से शुरुआत की थी तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि आपकी पसंद का कौन सा गाना हम यहाँ श्रोताओं को सुनवाएं।
0: देखिए बहुत अच्छा है, एक शब्द है मैं चाहता हूँ कि हमारे श्रोताओं को सुनाइए
1: जी।
0: देव सेवा पर मोहे अहे शुभ कर्म ते कभो न टरो न डरो असो जब चाहे लरो निश्चय कर
1: अपनी जीत करो जी। हमारे स्कूल्स में ये प्रार्थना भी होती थी और हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं यही शब्द।

0: इस शब्द के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने की बात की और साथ ही इसके महत्व को समझने के लिए भी हमें प्रेरित किया। हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में है। अब मैं कमांडर विक्रमजीत सिंह से जानना चाहूंगी, सर आप नौसेना में स्वदेशीकरण को किस तरह से देखते हैं और क्या इसका महत्व है?
1: पहली बात तो जय हिंद आपके सारे श्रोताओं को। नौसेना मैं ये बड़े गर्व से कहना चाहूंगा, सबको बताना चाहूंगा कि नौसेना

0: वॉज द फर्स्ट मूवर, यानी कि प्राथमिक जो कदम लिए गए वो नौसेना में लिए गए एज फार एज इंडिजनाइजेशन इज कंसर्न। देखिए हम लोग जब स्वतंत्र हुए थे, जब हमें आजादी मिली थी 47 में, तो हम लोग ऑब्वियसली एक ब्रिटिश कॉलोनी थे, तो उनके कुछ एसेट्स हमारे पास 30-35 जहाज उस टाइम भारतीय नौसेना को मिले, मोस्टली वो ब्रिटिश ओरिजिन ही जहाज थे। उधर से जो नेवी शुरू होकर आज अगर आप देखते हैं तो हमारे पास 150 से ज्यादा जहाज है, जिसमें से आप मान के चलिए ऑलमोस्ट 60-70% से ज्यादा हमारे जहाज इंडिजिनियसली डेवलप्ड है।
1: जी,
0: तो अगर आप नेवी का रोल देखते हैं, आप हिस्ट्री देखेंगे, तो कैसे हमारे एसेट्स बढ़े। मतलब 1960 में हमारे पास विक्रांत आया, पहले वो भी एक इंग्लिश ओरिजिन जहाज था।
1: जी,
0: उसके बाद हमें रशियन से सपोर्ट मिलनी शुरू हुई 60 के दशक में, उन्होंने हमें सबमरीन दिए, उन्होंने हमें कोई और वेसल्स दिए, लेकिन 70 और लेट पार्ट ऑफ 70s में हमने अपना स्वदेशीकरण कार्यक्रम शुरू कर दिया था।
1: जी,
0: हमने गिरी क्लास शिप्स बनाए, उदयगिरी क्लास जो थे, नीलगिरी क्लास शिप्स, लियांडर्स थे वो ब्रिटिश डिजाइन के, लेकिन वो बनाने शुरू किए। उसके बाद हमने गोदावरी क्लास शिप बनाने शुरू किए, और धीरे धीरे धीरे हमारी जो डिजाइन कैपेबिलिटी है और हमारी जो इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे धीरे मच्योर होती रही कि, और आज ये हाल है कि आप हर एक 40 दिन में, आप मान के चलिए 6-7 हफ्ते में हम एक शिप लॉन्च कर रहे हैं इस स्पीड पे। और अभी आपने रिसेंटली देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 शिप एक दिन पे जो कमीशन किए हैं वो अपने आप में हिस्ट्री में आई थिंक पहली बार हुआ है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि 3 बड़े जहाज, छोटे जहाजों की बात नहीं हो रही है, दूनागिरी जो एक फ्रिगेट है खुद ही 7,000 टन के करीब उसकी डिस्प्लेसमेंट, संशोधक सर्वे वेसल लार्ज वो भी 2,500-3,000 की उसकी डिस्प्लेसमेंट, अग्रे मिसाइल जो हमारा शैलो वाटर क्राफ्ट, तो इस लेवल पे हम पहुंच गए हैं। ये मैं आपको कहना चाहूंगा नीलम जी, जब हमने 1990 में जब हमने फौज ज्वाइन की थी तो सारे हमारे एसेट्स मोस्टली तो रशियन ओरिजिन थे या कुछ ब्रिटिश थे जो कि अपने लास्ट लेग ऑफ द सर्विस में थे, क्योंकि ये जो हमारे शिप्स होते हैं इसमें इसकी लाइफ करीब 25-30 साल आप मान के चलिए। लेकिन नेवी में एक और बड़ी खास चीज है कि वो सारी सर्विसेज की जो है उसका एक तरह से मिलन है या एक तरह से मिलोंजे है जिसको बोलते हैं। जैसे हमारे पास देखिए लैंड यूनिट्स भी हैं, हमारे पास एयर यूनिट्स भी हैं, हमारे पास सरफेस यूनिट्स हैं
1: जी,
0: और हमारे पास सब सरफेस यूनिट्स हैं, यानी कि हम चारों डायमेंशन में नेवी जो है वो अब देश की सेवा में और देश की हिफाजत में जुट है। तो इसमें मैक्सिमम जो इंडिजनाइजेशन आप देख रहे हैं अभी वो हमारे सरफेस यूनिट्स में बहुत इंडिजनाइजेशन एडवांस हो गई है
1: जी।
0: जबकि यू नो आजकल तो ऐसा है कि आप 60-70% के बिना तो आप एक शिप बना ही नहीं सकते, वो आपका मैंडेटरी है, आपको उतना तो इंडिजनाइजेशन कंटेंट रखना ही रखना है। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा इसी सवाल के उसमें नीलम जी, के एक शिप में बनाने के 3 मुख्य पार्ट होते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं उसको। एक हम कहते हैं फ्लोट, यानी शिप को तैरना होता है जरूरी, जो उसकी बॉडी होती है, हल होता है। दूसरा होता है उसका मूवमेंट, यानी शिप को आपने एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना
1: जी,
0: उसके लिए आपको इंजन चाहिए, प्रोपेलर चाहिए, इत्यादि जो भी इक्विपमेंट चाहिए। और तीसरा होता है लड़ना, कि आपने मिसाइल डालने हैं, गाइडेड मिसाइल सिस्टम है, एंटी एयर कैपेबिलिटी क्या है, एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी क्या है। तो वो सबसे मुख्य पार्ट है
1: जी,
0: क्योंकि फाइनली ये सारे वॉरशिप हैं और इनका मेन काम है लड़ना। लेकिन इन सब में आज की डेट में जो हमारा फ्लोट में हमने करीब 90% इंडिजनाइजेशन हो गया है, और फाइट में हमारी थोड़ी कैपेबिलिटी अभी इस पे काम करना अभी बाकी है।
1: चोल साम्राज्य के समय से हम अपनी नौसेना पर गर्व करते आ रहे हैं, हमारे जल सीमाओं के प्रहरी, और अब अलग अलग हिस्से हम उसके बारे में सुनते रहते हैं। INS विक्रांत पर तो पूरे देश को गर्व है ही। आपने बताया कि किस प्रकार से स्वदेशीकरण की शुरुआत हुई और लगातार बेहतर होता जा रहा है, तो इसी मोड पर मैं आपकी पसंद का एक गाना श्रोताओं को सुनवाना चाहूंगी।
0: जी, मैं चाहूंगा कि आप, ये एक गीत है फिल्म लक्ष्य का, क्योंकि हमें अपनी एकेडमी डेज के बारे में और बहुत मोटिवेट करता है। गीत है हाँ यही रास्ता है, बहुत ही मोटिवेटिंग गाना, आई एम श्योर सब लोगों को, सर को और वापस एकेडमी लेके जाएगा ये
1: जी। तो हम श्रोताओं को सुनवा रहे हैं लक्ष्य फिल्म का यही गीत।

0: आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस प्यारे से गाने के बाद पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज हम बात कर रहे हैं इस कार्यक्रम में रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के बारे में। हमारे विशेषज्ञ हैं इस समय स्टूडियो में हमारे साथ, मेजर जनरल संजय मेस्टन हैं भारतीय थल सेना से, हमारे साथ हैं एयर कमोडोर डॉक्टर अश्मिंदर सिंह बहल वायुसेना से, और कमांडर विक्रमजीत सिंह हमारे साथ हैं नौसेना से। हमारे विशेषज्ञ हमें बता रहे हैं स्वदेशीकरण का महत्व और पिछले दिनों क्या बदलाव हुए हैं अपने अनुभव के आधार पर। तो संजय मेस्टन सर, एक बार फिर से मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने क्योंकि सर्विस में रहते हुए बहुत सारे देशों की यात्राएं की हैं, वहां के कार्यप्रणाली को बहुत नजदीक से आपने देखा है, समझा है, आप ये बताएं कि जब हम स्वदेशीकरण की बात करते हैं, क्या इसका एक पहलू ये भी है कि जो हमारे ब्लू प्रिंट्स हैं या जिसे हम ट्रेड सीक्रेट कहते हैं वो हम ही तक रहे, हमें साझा ना करने पड़े किसी के साथ, और जब वो सिर्फ हम तक रहेंगे तो हम उसमें तेजी से बदलाव कर सकते हैं और हमारी क्या ताकत है उसे हम छिपा कर भी रख सकते हैं, क्या एक पहलू ये भी है इसका?
1: बिल्कुल नीलम, एक पहलू वो भी है। देखिए, पहली बात ये, एक जो भी स्वदेशीकरण है ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। देखिए, इकोसिस्टम में बहुत कुछ चाहिए होता है, किसी भी, चाहे एक एयरक्राफ्ट को बनाना हो, चाहे जहाज को बनाना पड़े, चाहे मिसाइल को बनाना पड़े, चाहे ड्रोन को बनाना पड़े, उसमें बहुत कुछ चीजें हैं। एक स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है, एक बैटरी चाहिए, पावर, फिर चाहिए आपको, सबसे बड़ी चीज जो आज की तारीख में चाहिए है वो है आपको चाहिए हैं ये सेमीकंडक्टर्स, वो स्टार्ट पॉइंट हो जाता है, ब्रेन हो जाता है, जो चिप्स होते हैं। और ये एक खुद बहुत बड़ा, इसमें मैं बोलूंगा कि ये एक इकोसिस्टम है। आज कोई भी देश विश्व में ये टेक्नोलॉजी पूरी नहीं है कि पूरा एक सेमीकंडक्टर चिप वहां पर बन जाए। उदाहरण के तौर पे जो डिजाइनिंग होती है, ये जो चिप डिजाइन, ये स्टार्ट कहां होते हैं? अमेरिका में। मैन्युफैक्चर कहां होते हैं? ताइवान में। उसके पास जो ट्रांजिस्टर लगते हैं वो कहां होते हैं? वो होते हैं साउथ कोरिया में। जो चिप की काटना पड़ता है, जो लिथोग्राफी मशीन होती है, वो कहां से आता है? नीदरलैंड से। तो ये आप देखिए कितनी इको डिपेंडेंट सिस्टम है। और आपने हाल ही में सुना होगा कि जो एंथ्रोपिक है, ये जो अभी एआई का सिस्टम है यूनाइटेड स्टेट्स का, इन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि उसमें फेबल 5 और माइथो 5 वो किसी भी देश को नहीं दिया जाएगा, सिर्फ उनके 5-6 देश हैं। तो कुछ जो ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं वो हर कंट्री अपने देश में रखता है और वो हर देश को अधिकार है, और लेकिन कुछ चीजें जो ओपन डोमेन में है वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा और उसमें हम एक्सपोर्ट करेंगे। डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो पहले ही बात होती थी ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स, उनको अभी मिक्स करके 7 DPS यूज कर दिया है। लेकिन जो ये आत्मनिर्भर भारत में सबसे बड़ी चीज आई है कि हमने प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी शामिल

0: कर दिया है।
1: जी
0: और इस डिफेंस प्रोडक्शन में ये जो फिगर आई है 1.78 लाख करोड़ की इस साल, उसमें 24% है प्राइवेट इंडस्ट्री का
1: जी ट्रिपल
0: योग्य।
1: पी की हम बात करते हैं,
0: हाँ
1: पब्लिक प्राइवेट
0: यस पार्टनरशिप।
1: पार्टनरशिप
0: तो आप
1: जी।
0: देखिए प्राइवेट इंडस्ट्री, आप याद करिए अमेरिका जैसे है, वहां जी है या जितने भी इनके टॉप टॉप कंपनीज हैं सिलिकॉन वाली, वो सब मतलब प्राइवेट प्लेयर्स थे, गवर्नमेंट
1: जी
0: के तो वहां किसी का नाम ही नहीं पता थे। आज इंडिया में भी यही हो रहा है कि जैसे अभी आपने देखा कि एक हैदराबाद में एक कंपनी है, उन्होंने नाग शस्त्र 150 ड्रोन बनाया है जिसकी रेंज है 1000 किलोमीटर। वो उसकी स्पीड मैक्सिमम है 3 to 3 किलोमीटर पर आवर। मैं ये क्यों
1: जी
0: कोट कर रहा हूं, क्योंकि ये जो नाग शस्त्र हमने जो ड्रोन बनाया 150, ये इंडिया की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है। और हाँ दूसरा जो एक और अच्छा सवाल आपने उठाया था और इन्होंने भी बोला था, देखिए जहां तक डिफेंस एक्सपोर्ट्स का सवाल है
1: जी
0: वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी हम उन्हीं चीजों का कर सकते हैं जो हम दे सकते हैं, लेकिन हर चीज को डिफेंस एक्सपोर्ट नहीं करेंगे।
1: जी
0: और आपको पता होगा कि जो इस साल जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं, जो टोटल फिगर्स हैं, वो है मतलब अगर मैं करोड़ में बोलूं तो 38423 करोड़, और ये एक टाइम पे 2000 करोड़ होता था, दैट
1: जी
0: मीन्स आज से एक डिकेड पहले। तो 19 टाइम्स गुना बढ़ गया है।
1: जी
0: आपको अभी पता है एआई की, अब मैं बात कर रहा हूं क्योंकि एआई तो सबसे बड़ी चीज आज की तारीख में आ जाती है, उसमें क्या है कि एक हमारी खुद की ऑटोनोमी होनी चाहिए, मतलब टोटल कंट्रोल होना चाहिए, जिसमें
1: जी
0: हम सॉवरन एआई होना चाहिए, मतलब जो हमारे सर्वर्स,
1: जी
0: जो हमारे डाटा सेंटर्स,
1: जी
0: जो क्लाउड वो कंप्यूटिंग सब कुछ वो सॉवरन होना चाहिए।
1: जी
0: और उस लिहाज से मैं बोलना चाहूंगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कुछ बड़ी अच्छी चीजें की हैं। देखिए मैंने सेमीकंडक्टर से स्टार्ट किया है, आज हमने माइक्रोन जो सिलिकॉन वैली से है $800 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं गुजरात में, और
1: जी
0: ये सारी जो आपके चिप्स वो है उसमें जो उसकी असेंबली टेस्टिंग मार्किंग पैकेजिंग यहां पर होगी, और वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैं बोलूंगा क्लीन फैक्ट्री होगी, और सबसे ज्यादा आई थिंक वो 5000 स्क्वायर फीट का वो इलाका है, इतना वो
1: जी
0: बड़ा है।
1: यानी जब हम रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की बात कर रहे हैं तो इसमें प्राइवेट सेक्टर भी है, एमएसएमई भी है,
0: बिल्कुल
1: साथ ही एफडीआई भी है, फॉरेन डायरेक्ट
0: बिल्कुल
1: इन्वेस्टमेंट की बात है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, जो पॉलिसी प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है, उसके थ्रू भी हम कहीं ना कहीं से बढ़ावा दे सकते हैं। आपसे पूछना चाहूंगी डॉक्टर अश्मिंदर, हमने ये देखा कि बहुत सारी आपदाओं के समय भारत ने अपने पड़ोसी देश जो हैं उन्हें राहत सामग्री भेजी, मदद भेजी, और कोविड के समय भी हमने देखा कि हमारी एयरफोर्स ने जो हमारे स्टूडेंट्स फंसे हुए थे अलग अलग देशों में, हमारे नर्सेज थी या और भी इस तरह के हमारे सिटीजन्स थे, उनकी भी मदद की, और हमारे बहुत सारे जो मित्र देश हैं उनके नागरिकों को भी अलग अलग देशों से निकाला। आपसे जानना चाहूंगी जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, अगर हम वायुसेना की बात करें तो एक आत्मनिर्भर देश एक मजबूत देश भी होता है, आप क्या समझते हैं इस नजरिए से, अगर हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करें तो?
2: बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है नीलम जी आपने, इसमें बड़ी सारी चीजें आती हैं।
1: जी
2: सब एक बात आपने मेंशन की ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस,
1: जी
2: यानी कि जैसे नेपाल में 2015 में जो अर्थक्वेक हुआ था तो भारत ने उस समय बहुत जल्दी से उनकी मदद के लिए जहाजों में रिसोर्सेज और रसायन भेजे थे।
1: जी
2: आपको याद होगा तुर्की में हुआ था तब भी हमने भेजे, आपको याद होगा भी वेनेजुएला में जो हुआ इतना
1: जी।
2: बड़ा उसमें भी हमारे C-17 ग्लोब मास्टर जहाज 70 टन का करीब जो है रसायन को लेके गए थे इमीजिएट एड देने के लिए। अभी वहां भूकंप के झटके चल रहे हैं और भारतीय वायुसेना के जहाज लैंड कर रहे हैं, हमारे देश के रसायनों को वहां ले जाके उनकी मदद करे दे रहे हैं जहां हजारों लोग फंसे हुए हैं इस समय। तो कहीं ना कहीं देश का अपना स्टेटस जो होता है वो तभी उभरता है अगर आत्मनिर्भरता हो, तभी उभरता है अगर स्ट्रांग आर्मी नेवी और एयरफोर्स हो, तभी उभरता है जब हमने 74% एफडीआई बना दिया आज डिफेंस के अंदर, जो आप बात मेंशन कर रहे थे उससे ये हो गया है कि जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसको जैसे अब हम कर रहे हैं, हमने क्या किया है कि साफरान के साथ जो इंजन का हम बना रहे हैं 120 से 140 किलोटन न्यूटन। देखिए सबसे मुश्किल चीज जो है दुनिया के अंदर एरो इंजन बनाना है, वो बहुत कम देश है दुनिया के जो बना सकते हैं, और हमारा भी कावेरी इंजन अब बना है जिसको हम अनमैंड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स जैसे घाटक है उसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं।
1: जी
2: लेकिन जो एक एरो इंजन फाइटर जहाज में खासकर 5th जनरेशन या 6th जनरेशन जहाज में इस्तेमाल होना है, जो टेक्नोलॉजी अभी दुनिया में डेवलप हो रही है, जापान में हो रही है।

0: है और फ्रांस में हो रही है, वो मिलके भारत बनाएंगे, तो इसमें ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, सोर्स कोड नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि बना हम मिल करके रहे हैं, को डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, जैसे हमने ब्राह्मस को डेवलप किया, को डेवलप किया। और एक और चीज आ जाती है, जब हम एक साउथ एशिया में या इंडो पैसिफिक में या इंडियन ओशन के रीजन्स की हम जब बात करते हैं, तो भारत को एक बहुत बड़ा देश का तरफ देखा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पोलिटिको इकोनॉमिक वेट, जो भारत का है वो सभी को मालूम है। हम बात कर रहे थे इससे पहले भी, हम कहते थे कि अफगानिस्तान में कुछ लोग हैं वो, या फिर जो बलूचिस्तान में है वो भारत आना चाहते हैं, उनके लिए पेरिस भारत है और कुछ नहीं है, वो फॉरन नहीं जाना चाहते। तो कहीं ना कहीं जो ये हमारा इमेज है एज अ स्टेबिलाईजर, वासुदेव कुटुंबकम, वैसे मेरे स्कूल का मोटो था ये, तो कहीं ना कहीं ये जो मोटो है कि पूरा वर्ल्ड एक फैमिली है, भारत ने तो कब से बुद्धिज्म के टाइम से ये फॉलो करता आ रहा है, भारत हिंदुइज्म या वैदिक लिटरेचर है उसके अंदर भी ये चीजें की मेंशन होती है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारी एयरफोर्स, आर्मी और नेवी मजबूत रहती है, और हम सहायता यमन में आपने देखा
1: जी,
0: सबसे पहले भारत पहुंचा था पाकिस्तानी सोल्जर्स को। अरे मेरे को आपको एक अच्छी कहानी सुनानी है इसके अंदर, क्योंकि इतनी सारी टेक्निकल बातें हो गई, एक कहानी रह गई
1: जी।
0: ये है 2005 की, कॉन्गो के अंदर यूएन पीस कीपिंग स्टेबिलाईजेशन मिशन चल रहा था, वहां पे पाकिस्तानी भी थे, बांग्लादेशी भी थे और भारतीय भी थे। वैसे मैं एक चीज आपको बताऊं, सबसे ज्यादा जो यूएन पीस कीपर्स होते हैं वो इन्हीं तीन देशों से आते हैं इस समय, सबसे ज्यादा 5600 जो है बांग्लादेश से हैं, 5200 से 500 भारत के हैं और 2600 के करीब हैं पाकिस्तान के। उस समय 5 बांग्लादेशी को मार दिया गया, उधर के जो मिलिशिया थी उन्होंने मार दिया था कॉन्गो के अंदर। तो इस इतिहास करके एक जगह थी जहां मारा उनको
1: जी।
0: उस समय पाकिस्तान के सोल्जर्स को भेजा गया था कॉर्डन एंड सर्च करने के लिए गांव के अंदर, वो बेचारे फंस गए, चारों तरफ से गोलियां चल रही थी, तब उन्होंने भारत से मदद मांगी थी और भारत के जो Mi-25 अटैक हेलीकॉप्टर है वो गए, उन्होंने सप्रेशन किया, 50 के करीब मिलिशिया के लोगों को मारा, फिर हमारे Mi-17 गए और उन्हीं पाकिस्तानी सोल्जर्स की कैजुअल इवैक्यूटीज या जिनको वहां से इवैक्यूएट करना था उनको लेके आए ताकि उनको बचा सके। ये है भारत, हम ये नहीं देखते कि हमारा दुश्मन कौन है। मदद में जब भी कोई पुकार करता है सबसे पहले भारतीय और भारतीय वायुसेना के जहाज वहां लैंड कर रहे होते हैं, भारतीय सेना वहां पे कर रही होती है ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस और भारतीय नेवी के जो जहाज हैं वो लार्ज स्केल इवैक्यूएशन कर रहे हो।
1: जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई और यही वजह है शायद कि माननीय प्रधानमंत्री जी हर देशवासी से ये उम्मीद करते हैं कि वो अपनी अपनी भूमिका निभाता रहे। और कहा भी है प्रधानमंत्री जी ने कि हम जो है देश के लिए मरने का मौका सबको नहीं मिलता, लेकिन देश के लिए जीने का जो अवसर मिलता है उसमें हम अपने देश पर गर्व करते हुए जिए। मैं आपसे जानना चाहूंगी कमांडर विक्रमजीत सिंह, भारतीय नौसेना को तो बिल्डर्स नेवी कहा जाता है और बहुत सारी उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं, ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हम जब इसकी कमर्शियल एक्टिविटीज की बात करते हैं या हम बात करते हैं अपनी मर्चेंट नेवी की, क्या उसमें भी स्वदेशीकरण के कुछ लाभ हो सकते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर इसे हम दो बिजनेस से जोड़कर देखते हैं, क्या उसमें भी लाभ होता है स्वदेशीकरण से?
2: बिल्कुल सही नीलम जी, देखिए हम जैसे मैंने आपको पहले हिस्ट्री बताई थी, तो 60s, 70s और थोड़ा अर्ली 80s तक हम एक बायर्स नेवी थे, जो मैं अभी इंडियन नेवी की बात कर रहा हूँ, और फिर हमारा ट्रांजिशन हुआ टू बिल्डर्स नेवी जैसे आपने बताया, और इतना पूरा एक तरह से एक इकोसिस्टम क्रिएट हुआ शिप बिल्डिंग को लेके
1: जी,
2: क्योंकि शिप बिल्डिंग का एक अलग इकोसिस्टम रहता है, एक अलग टाइप के एमएसएमई सपोर्ट रहते हैं, एक अलग टाइप का क्लस्टर रहता है। आपने देखा होगा अभी जो हमारे कुछ मैरिटाइम क्लस्टर्स बन रहे हैं, डेफिनेटली कोस्टल स्टेट्स में, महाराष्ट्र में अगर आप वेस्ट में देखें, महाराष्ट्र में, गुजरात में, नीचे आइए आप तो फिर ईस्ट में तमिलनाडु, विशाखापट्टनम, ओडिशा
1: जी,
2: तो इन स्टेट्स में हमारे क्लस्टर्स बन रहे हैं जहां पे इंडिजनाइजेशन और शिप बिल्डिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन जो हमारे जो मेनली अभी हमारी जो वॉरशिप बिल्डिंग हो रही है वो हो रही है हमारे डीपीएसयूज में
1: जी,
2: यानी कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग शिपयार्ड्स में, और एक ऑफकोर्स हमारा पीएसयू शिपयार्ड जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है केरला में, तो 4 डीपीएसयू है, 1 पीएसयू है, तो ये अपना एक अलग इकोसिस्टम बना के चल रहे हैं। इस इकोसिस्टम को और इसका महत्व समझते हुए हमारी गवर्नमेंट ने और प्रधानमंत्री जी ने जो एक क्लैरियन कॉल दिया था कि कमर्शियल शिपिंग में भी
1: जी
2: अब हमारा आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। आपको डेफिनेटली याद होगा कि उन्होंने दो यू नो एक MIV दिया, एक विजन दिया है 2030 के लिए, यानी कि 2030 तक इंडिया को कमर्शियल शिपिंग में कहां पहुंचना है दुनिया में। आज हम बिल्कुल ही जिसको कहते हैं ऑलमोस्ट

0: निग्लिजिबल हमारी प्रेजेंस है। 2030 तक हम चाह रहे थे कि हम टॉप 10 नेशंस में आ जाएं।
1: जी,
0: तो ये उन्होंने एक लक्ष्य दिया था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज जिसको जो स्टीयर कर रही है, और 2047 जो हमारा अमृतकाल विजन दिया था उन्होंने 100 साल हमारे इंडिपेंडेंस के, कि हम टॉप 5 नेशंस में आ जाएं। तो ये कहना बहुत ही सरल है और करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन सारी एजेंसीज को इस तरह से मोटिवेट किया और इस तरह से चैनलाइज किया, कोऑर्डिनेट किया कि हम उस तरफ अभी हमें वो होता हुआ धीरे धीरे नजर आ रहा है।
1: जी,
0: तो इसके लिए सरकार ने बहुत सारे प्रोत्साहन भी दिए हैं, उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स दी हैं, फाइनेंशियल एड्स दिए हैं, जो कि आपको अगर आप शिप बिल्डिंग इंडिया में करवाते हैं तो आपको कुछ डायरेक्ट एड्स मिलती हैं, डायरेक्ट कॉम्पेंसेशन मिलता है, और जो शिपयार्ड हैं जिनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, चाहे ब्राउन फील्ड हो ग्रीन फील्ड हो, उनके लिए भी अलग जिसको मैरिटाइम डेवलपमेंट फंड है, तो काफी पैसा सरकार ने ईयरमार्क किया और इसके ऊपर भी बहुत सारा थ्रस्ट है।
1: जी,
0: किसी भी शिप बिल्डिंग एक्टिविटी में कई ऐसी चीजें होती हैं जो आप क्रॉस यूटिलाइज कर सकते हैं। एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे इंटरनेट था वो बेसिकली पहले US मिलिट्री के यूज के लिए बनाया गया, और उसके बाद वो इंटरनेट अब देखिए अब किस स्तर पे पहुंच गया जब उसको पब्लिक के लिए ओपन किया गया और कहां वो पहुंच गया। सेम चीज मोबाइल के साथ हुई। तो इसी तरह से जब ये कमर्शियल शिप बिल्डिंग और नेवल शिप बिल्डिंग वॉरशिप्स बिल्डिंग है, इसमें जब समन्वय होगा, थोड़ी कोऑर्डिनेशन होगी, तो कई इक्विपमेंट ऐसे हैं जो कि हमारे क्रॉस यूटिलाइज हो जाएंगे और हमारी कॉस्ट ऑफ शिप बिल्डिंग जो है वो ग्लोबली कम्पेटिटिव हो जाएगी। तो वो एक क्लैरियन कॉल दिया है अभी प्राइम मिनिस्टर ने और भारत सरकार ने, और आपने देखा होगा अभी रिसेंटली जो ईरान कॉन्फ्लिक्ट में जो कि हमारे जो मर्चेंट मरीनर्स थे जो चुपचाप अपना काम करते रहते थे, महीनों महीनों घर से दूर रहते थे, किस कंडीशंस में उन्होंने शिप्स को लेके जाते थे, इतनी हाई सीज रफ सीज, तो उनको कोई मतलब सब भूल गए थे जब तक कि ये हुआ। ये एक बात है, आज की डेट में करीब इंडिया में करीब 0.1% ग्लोबली शिपिंग हमारी इंडिया की है, इंडियन ओन्ड। तो इसको अब हमने बोला था टॉप 5 और टॉप 10 में लेके जाने के लिए, मतलब बहुत ही ये कठिन कार्य है, लेकिन ये तभी संभव है जबकि हम सारी शिप्स ओन करने लग पड़े।
1: जी,
0: और सारी ये जो पॉलिसीज हैं, ये इंसेंटिव हैं, ये इसी की तरफ है कि इंडियन बिल्ट, इंडियन फ्लैग्ड एंड इंडियन ओन्ड वेसल्स को बढ़ाने के लिए इसका भी एक टारगेट दिया हुआ है कि इतने मिलियन टन जो है वो हमारी मतलब शिपिंग हमारी हो जानी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया 2030 तक और 2047 तक। एंड जो हमारे मेन इक्विपमेंट होते हैं नीलम जी, मैं ये लास्ट चीज कहना चाहूंगा, जैसे इंजन, तो इंजन जो हवाई जहाज के भी बहुत ही स्पेशलाइज इक्विपमेंट है, सिमिलरली जो इंजन जहाज के होते हैं वो भी स्पेशलाइज इक्विपमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आप सारी चीजों को इंडिजनाइज कर पाए क्योंकि उसका आपको कॉस्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपके उतने नंबर्स नहीं है। तो दुनिया में कई लोग ही हैं जो बनाते हैं, किंतु अगर हम ये चीजें कमर्शियल शिप में भी लगती हैं और कई ऐसी चीजें वॉरशिप्स में भी लगती हैं, तो ऐसे इक्विपमेंट हमें लेके मान के चलना पड़ेगा कि ये तो कई चीजें हमें बाहर से मंगानी पड़ेंगी। इसमें एक ही एडवांटेज है, जब आप बाहर के जो OEMs हैं आप इंडिया में उनको ला सकें, जो कि अभी हम बोल रहे हैं कि आप यहां आके बनाइए मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, तो उसके जो हम बोलते हैं स्पिन ऑफ इफेक्ट्स, यानी कि जो मल्टीप्लायर इफेक्ट्स इकोनॉमी को लेके एम्प्लॉयमेंट को लेके, उसका फायदा हमें हो सकता है।
1: जी, बहुत अच्छा आपने बताया, और जैसा कि आपने कहा कि मरीनर्स आराम से काम करते रहते थे शांति से, ज्यादा लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं था, इसी तरह से हमारी पनडुब्बियां भी कितने कितने महीने पानी के अंदर ही काम कर रही हैं लगातार, लेकिन इन्हीं प्रयासों से हम सुरक्षित भी हैं। और हिंद महासागर में भारत की जो बढ़ती उपस्थिति है और दमदार होती उपस्थिति जो है वो भी हमारी नौसेना के बलबूते ही है। सर, मैं आपसे अब आपकी पसंद का कोई गाना जानना चाहूंगी जो आप श्रोताओं को सुनवाएंगे।
2: मौजी में इमोशंस बहुत होते हैं
1: जी,
2: तो गाना है संदेशे आते हैं, और इसका कारण यह है, ये बॉर्डर पिक्चर का है, और मेरे दोनों छोटे जो बेटे थे उस समय
1: जी
2: वो स्कूल में थे, लेकिन ये मूवी देख के उनको बहुत मोटिवेशन हुआ और आज वो भारतीय सेना में दोनों ऑफिसर हैं।
1: बहुत अच्छी ये बात आपने हमें बताई, हमारे श्रोता जरूर प्रेरित होंगे इस बात को सुनकर, और ये प्यारा सा गाना हम सुनवा रहे हैं अपनी ऑडियंस को।

0: तो जोश लगाते इस गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। हमारे तीन विशेषज्ञ इस समय स्टूडियो में हमारे साथ हैं। हम बात कर रहे हैं रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की, स्वदेशीकरण की हम बात कर रहे हैं, और अपने विशेषज्ञों के बहाने आज हम अपनी सेनाओं को और नजदीक से जान रहे हैं। जो हमारे मन में आदर भाव है, सम्मान है, वो और बढ़ता जा रहा है ये जानकर कि किस तरह से हमारी सेनाएं लगातार देश की सेवा में लगी रहती हैं और किस तरह से हम जिसे अपना विकास कहते हैं उसमें मील का पत्थर होते हैं हमारे फौजी, हमारी सेनाएं। सर, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी संजय मेस्टन जी, जब हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं तो मेक इन इंडिया को अगर बढ़ावा मिलेगा, जिसमें कि हम अपने त्योहारों में इस्तेमाल होने वाले दिए और मोमबत्ती से लेकर अब हम अपने फाइटर जेट्स तक की बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया की, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये कहीं हमारे शिक्षा जो है उसे भी प्रभावित करेगा, हमारे शिक्षा के क्षेत्र में भी थोड़ा विस्तार होगा इस बहाने?
1: बिल्कुल, शिक्षा में तो बहुत विस्तार होगा। देखिए, पहली बात, ये जो भी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट चल रहा है हर चीज में, ओवरऑल नेशन बिल्डिंग में
0: जी,
1: हर भारतीय को फख्र होगा कि मैं भारत देश को बिलोंग करता हूं। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा, हम चार लोग यहां बैठे हैं और हम चारों बाहर जा रहे हैं, कई देशों में जाते हैं, हमें बहुत फख्र होता है कि सब बोलते हैं आप इंडिया के हैं। तो इंडिया का जो आज एक ग्लोबल रीच पड़ गई है
0: जी,
1: जो उसके भी कई कारण है। देखिए, सबसे बड़ा कारण है, तीन फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लीडरशिप, इकोनॉमिक ताकत और मिलिट्री ताकत। ये तीन चीजें कॉम्बिनेशन है, ये देश की एक नेशनल पावर को डिफाइन करता है
0: जी।
1: जब ये सब पावर मिलती है एक देश को, अपने आप दिखती है। और आपने देखा है G20 समिट में जिस प्रकार भारत ने लीडरशिप लेके अफ्रीकन यूनियन को शामिल करवाया, वो एक मास्टर स्ट्रोक था। उसी G20 समिट में IMEC कॉरिडोर जो हमने अनाउंस करवाया, जिसमें प्रेसिडेंट बाइडेन थे और जिसमें आप देखिए मल्टीलेटरल कंट्रीज हैं, यूरोप, इजराइल, पूरा गल्फ कंट्रीज और भारत। तो आप ये देखिए कि ये मास्टर स्ट्रोक से, अब जब ये सब होता है तो भारत का जब एक आइडेंटिटी पूरे विश्व में बढ़ती है और आज सारा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, एक राइजिंग पावर है। मैं तो बोलूंगा जो ग्लोबल साउथ के हम कैपिटल हैं इंडिया, अगर ये हो रहा है तो जाहिर है कि एजुकेशन का विस्तार बहुत होगा, उस पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। यू नो, एक कर्तव्य, एक प्राइड कि मैं भारत

0: हूँ। कुछ साल पहले हमारे कई बच्चे बाहर जाना चाहते थे, अब वो चेंज हो रहा है, क्योंकि जब एक सेल्फ रिलायंट इंडिया है, आज हमारी रोड्स देखी हैं, फर्क पड़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में फर्क पड़ रहा है, और आज की तारीख में टेक्नोक्रेट्स को ज्यादा वजूद दिया जा रहा है हमारे
1: जी
0: सिस्टम में। अगर वो दिया जा रहा है तो ऑब्वियसली जो यंगस्टर्स हैं, और जो प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दी है हमने,
1: जी
0: तो यंगस्टर्स आज उनको समझ में आ रहा है। आपका स्टार्टिंग पॉइंट था ये प्रोग्राम में कि लोगों को पता होना चाहिए भारतीय सेना क्या है,
1: जी
0: और अब कैसे पता चल रहा है, भारतीय सेना जब ये सारी प्राइवेटाइज हो गई है ये आत्मनिर्भर भारत में, तो कितनी सारी एमएसएमईज आ चुकी हैं, उसमें काम करने वाले कौन है, यूथ, हाईली टैलेंटेड यूथ,
1: जी
0: एआई एक्सपर्ट्स, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स, उनको एक्सपोजर मिल रहा है, तो वो जब देखेंगे तो फिर वे बाहर क्यों जाएंगे। और जब इंडिया में हम इतना प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, चाहे एआई हो, चाहे मिसाइल्स हो, चाहे ड्रोन्स हो, चाहे सब कुछ हो, चाहे एयरक्राफ्ट इंजन्स हो, सब कुछ अगर हम जब इंडिया में कर रहे हैं, तो जहां पर जॉब्स हैं और जहां पर अपॉर्चुनिटीज हैं और
1: जी
0: जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और जहां सैलरीज अच्छी हैं, तो ऑब्वियसली लोग को फिर और बढ़ावा मिलेगा एडुकेशन की तरफ ध्यान देने को। जो हमारा पहले ब्रेन ड्रेन होता था ना,
1: जी
0: बाहर जाते थे,
1: जी
0: अब मेरे को लग रहा है अगले 10 साल के अंदर या 2047 तक मैं बोलूंगा, इंडियंस विल रिमेन इन इंडिया, और आप देखिएगा हमारा विस्तार बहुत होगा, तो एडुकेशन से इस पे प्रभाव पड़ेगा।
1: यानी जब हम स्वदेशीकरण की बात करते हैं तो ऐसा दिखता है कि सेनाएं मजबूत हो रही हैं, लेकिन इससे अपने आप रोजगार भी मिल रहा है लोगों को और शिक्षा के क्षेत्र का भी विस्तार हो रहा है। और जैसा कि हमें बताया डॉक्टर अश्विंदर ने कि जब सुरक्षित देश है तो मजबूत देश भी है, जरूरत पड़ने पर हम अपने जो पड़ोसी देश है उनकी मदद भी कर सकते हैं। ऐसे में अब मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगी, आप अपने अनुभव से बताएं, आपने इतने सारे देशों में देखा है, उनको काम करते हुए देखा है, कई यात्राएं आपने इस दौरान की हैं, जो भारतीय सेना है बेहद सम्मान के साथ देखा जाता है भारतीय सेना को, और हमारे बहुत सारे इस तरह की एक्सरसाइज होती हैं जिसमें अन्य देशों की सेनाएं सब मिलकर काम करते हैं, वो एक्सरसाइज में भाग लेते हैं। ऐसे में भारतीय सेना जो है उसकी स्थिति दुनिया में क्या मानी जाती है, और जो अगर मजबूती है तो क्यों मानी जाती है वो?
0: मैं बहुत घमंड के साथ बोल सकता हूँ नीलम, भारतीय सेना की जो छवि है वो विश्व में नंबर वन है।
1: जी
0: मैं कई कंट्रीज में गया हूँ, 23 कंट्रीज ऑफिशियली गया था ऑन ड्यूटी।
1: जी
0: टॉप कंट्रीज हैं, अमेरिका है, इसराइल है, टर्की है, जापान है, फ्रांस है, मलेशिया है, मतलब चाइना है। चाइना में मैं खुद एज अ इंडियन डेलीगेशन लीडर गया था, जो चाइना में फर्स्ट एससीओ पीस कीपिंग एक्सरसाइज हुई थी 2005 में, मैं उसको विटनेस करने गया था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह सारा तजुर्बा देखते हुए और हर कंट्रीज में, आज विश्व की सारी सेनाएं चाहती हैं कि भारत के साथ बाइलेटरल, मल्टीलेटरल, ट्राइलेटरल एक्सरसाइजेस करना चाहती हैं, क्योंकि जो हमारी एक एक्सपीरियंस है काउंटर इंसर्जेंसी में डील करने की,
1: जी
0: काउंटर इन्फिल्ट्रेशन में डील करने के लिए, टेररिज्म को डील करने के लिए, ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह देने में, रिस्पांस सिस्टम में, हमारी जो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन है, जो एक एक्सपर्टीज है, और भारतीय सेना एक वो सेना है जो ऐसी जगह डिप्लॉयड है, सियाचिन ग्लेशियर से लेके नागालैंड तक, से लेके डेजर्ट तक, और नेवी के साथ भी हमने इतनी फंक्शनिंग करते हैं, एयरफोर्स के साथ भी। तो कहने का मतलब है जो हमारी काबिलियत है, हमारी कैपेबिलिटीज है, वो कैपेबिलिटीज को देख के पूरा विश्व, मैं बोल सकता हूँ वी आर नंबर वन। पूरा विश्व आज चाहता है कि भारत सेना के साथ ट्रेनिंग करें, और मैं क्योंकि अफगानिस्तान में था तकरीबन 3 साल, वहां 53 कंट्रीज मैंने देखी थी अमेरिका द्वारा लेड किए हुए। मेरे को वो हर मीटिंग में बुलाते थे, चाहे वो नेटो सेक्रेटरी जनरल आता था, चाहे इनके आर्मी चीफ आते थे हर कंट्री के साथ, तो मेरे को तब इतना फख्र होता था कि इंडियन व्यू पॉइंट वो सुनना चाहते हैं, और इंडिया की जो छवि है इंडियन आर्म फोर्सेस की,
1: जी
0: बहुत ही सॉलिड है। और एक और चीज मैं इसमें बोल दूं, रेजिमेंटेशन, जितने फॉरेन चीफ आते थे इंडिया में, वो बताऊं क्या बोलते थे, आपकी जो एक रेजिमेंटेशन स्पिरिट है,
1: जी
0: आज अगर मैं जाट रेजिमेंट का हूं तो मेरे जो जाट रेजिमेंट वाले वो जवान है, वो बिल्कुल मतलब अपनी रेजिमेंट के नाम पे मर जाएंगे। मैं वैसे महार रेजिमेंट का हूं,
1: जी
0: तो महार रेजिमेंट वाले जो मेरे जवान हैं उनका एक अलग जज्बा होगा, डोगरा का अलग होगा, मराठा का अलग होगा,
1: जी
0: तो ये रेजिमेंटेशन है, ये सिर्फ इंडियन आर्मी में है, ये यूनिकनेस है। मैंने अमेरिकन फॉरेन चीफ जो यहाँ पर आए थे आर्मी चीफ, उनसे खुद सुना था कि दिस इज द मोस्ट यूनिक थिंग अबाउट द इंडियन आर्मी। तो ये हमारी जो कामरेडरी है, भाईचारा है, आपसी संबंध है, जवान और ऑफिसर के जो रिश्ते हैं,
1: जी
0: तो ये सारी चीजें ये विश्व वाले देखते हैं, इंक्लूडिंग चीनी, ये भी चाहते हैं हमारे साथ एक्सरसाइज करने के लिए, और हमने किए हैं चीन के साथ भी, एससीओ के साथ एक्सरसाइज। तो मैं घमंड के साथ बोल सकता हूं, मेरे को इस पे कोई वो नहीं है।

0: तो फौजी वी आर नंबर वन एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड आर्म फोर्सेस नॉट आर्मी आर्म फोर्सेस इंक्लूडिंग नेवी इंक्लूडिंग एयरफोर्स. नेवी के साथ जो वाइजैक में शायद आपने भी कवरेज किया था उस एक्सरसाइज को
1: उसमें
0: ईरानियन शिप भी थी और यूनाइटेड स्टेट्स की शिप भी थी.
1: ऐसे में बताएं बहुत रोचक बात आप बता रहे हैं. मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि नो फर्स्ट यूज हमारी पॉलिसी रही है तो जब हम अपने डिफेंस बजट को बढ़ाते हैं तो कुछ लोग क्रिटिसिज्म भी करते हैं और कुछ हमारे पड़ोसी देश हैं जो थोड़े नाराज भी हो जाते हैं और बार बार ये बात लेकर आते हैं कि डिफेंस बजट क्यों बढ़ाया जा रहा है और अब तो हम स्वदेशीकरण की बात कर रहे हैं आत्मनिर्भरता की, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे?
0: मेरे ख्याल डिफेंस बजट तो और बढ़ना चाहिए
1: जी,
0: क्योंकि देखिए सिक्योरिटी जो इकोनॉमिक्स है और देखिए अगर डिफेंस सॉलिड है तो इकोनॉमिक आपकी सॉलिड बढ़ेगी
1: जी.
0: ये बहुत

0: इकोनॉमिक आपकी सॉलिड बढ़ेगी।
1: जी
0: ये बहुत को रिलेटेड है, और चीन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। 2050 का उसका विजन था कि हम कोई लड़ाई वड़ाई में के पंगे नहीं फंसेंगे, हम मिलिट्री कंसोलिडेशन, इकोनॉमिक कंसोलिडेशन। आज भारत भी वही कर रहा है, क्योंकि मेरा तो इसमें विचार है डिफेंस बजट और बढ़ना चाहिए, गवर्नमेंट दे रही है, और कैपिटल एक्विजिशन पे भी हमें थोड़ा ज्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि खासकर एयरफोर्स और नेवी के लिए ये जरूरी है। कैपिटल एक्विजिशन मतलब ये नहीं कि हमें बाहर से खरीदना है, उसको हम इंडिजिनाइज भी कर सकते हैं।
1: तो डॉक्टर अश्विंदर आपसे मैं जानना चाहूंगी, जैसे दूसरे देशों से सीखने की बात करें तो जापान में तो SDF अभी तक रहे, सेल्फ डिफेंस फोर्सेज रही, सिर्फ आत्मरक्षक बल थे। कहते हैं कि हमें कहीं आक्रमण नहीं करना, तो सेनाओं की हम क्या जरूरत है उतना बजट देने की। आपसे जानना चाहूंगी मैं कि ये जो पॉलिसी होती है कि हमें क्योंकि लड़ाई नहीं लड़नी है इसलिए हम सेनाओं को मजबूत नहीं रखेंगे, आप इस बारे में क्या कहेंगे?
2: देखिए, डिटरेंस का मतलब ही ये होता है कि आपकी आर्म फोर्सेस इतनी स्ट्रांग है कि कोई भी देश विश्व का सोच नहीं सकता आपके ऊपर हमला करना। अगर हम एक ऐसी सिक्योरिटी एनवायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें पूरी इकोनॉमी फ्लावर करती है हमारे देश की, तो वो सिक्योरिटी एनवायरमेंट देती है हमारी आर्म फोर्सेस, तीनों आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। हम कह रहे थे ना कि हम दूसरों से क्या सीखते हैं। अभी आपने सेल्फ डिफेंस फोर्सेस की बात करी, आपको पता है कि उनका डिफेंस बजट मल्टीफोल्ड हो गया जापान का। अब उन्होंने रियलाइज कर लिया है कि उनको अमेरिका की अम्ब्रेला नहीं मिलने वाली, और वो अपनी जो उनकी इंजिन की कैपेबिलिटी है, जो उनके जहाजों को बनाने की कैपेबिलिटी है, आपको ये भी मालूम होगा कि 6th जनरेशन ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम में इटली और यूके के साथ मिलकर अहम रोल प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर शिप्स में देखें, वो कमांडर साहब ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन उसमें भी और जो इंजन है उसके अंदर तो उन्होंने बहुत अच्छी माहिरता प्राप्त कर ली है। दूसरी चीज आ जाती है, अगर हम अपना एनवायरमेंट देखें आसपास का, हम लोग प्रेडेटरी नहीं है, हमें दूसरों की टेरिटरी नहीं चाहिए, हमें दूसरों की जमीन नहीं चाहिए, लेकिन अपने आप को और आसपास के एरिया को अगर प्रोटेक्ट करना है, इंडियन ओशन को प्रोटेक्ट करना है, तो बहुत जरूरी है कि हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग हो। अभी भी हमारी आर्मी 50,000 से ऊपर 3,488 किलोमीटर बॉर्डर पे डिप्लॉयड है, लद्दाख में है, दूसरी जगहों पे है, अरुणाचल प्रदेश। कितनी मुश्किल कंडीशंस में वो पूरे पूरे साल रहते हैं, जहां पे टेम्परेचर -20 -30 तक पहुंच जाते हैं, और फिर जब गर्मी आती है तो फिर कहां, आपको पता है रेत में कहां पे इनके टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर। तो उसी तरीके से हमारी तीनों सेनाएं जो डिप्लॉयड है हर जगह, ये इसलिए डिप्लॉयड है ताकि दूसरा आंख उठाकर भी हमारी धरती पे ना देख सके। और अब आप देखिए यूक्रेन का हाल, उनकी सेनाएं उतनी स्ट्रांग नहीं थी, उनकी इतनी बर्बादी हो चुकी है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी आर्म फोर्सेस स्ट्रांग होगी तब आप हर लड़ाई जीत लोगे, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आपने अमेरिका के साथ देखा, उन्होंने उसके भी तोड़ देख लिए, वो सरवाइव कर रहे हैं अटैक्स के अंदर उन सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हुए जिससे कॉस्ट इफेक्टिव रहे, चाहे वो ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, या उनका ज्योग्राफिकल जो उनका पूरा का पूरा टेरिटरी है डिफेंस की ओरिएंटेड की तरफ, ओरिएंटेशन की तरफ। तो कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी होता है कि हमें तो नहीं किसी की टेरिटरी चाहिए, हमने कई बार बहुत क्लियरली किया, हाँ हमें सिर्फ अपना जो जेन्युइन लीगल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो वापस चाहिए, आज नहीं तो वो खुद अपने आप, हमने तो कोई लड़ाई नहीं की अभी, हम तो अपने भेज नहीं रहे लोगों को, इसका मतलब है हमारी ऑफेंसिव इंटेंशन नहीं है, लेकिन डिफेंसिव होने के लिए भी आपकी क्षमता इतनी स्ट्रांग हो कि दूसरा देश 10 बार सोचे कि वो आप पे हमला करे कि नहीं करे। एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूं, अगर आप परमिट करें, एक चीज कहते हैं हम सिविल मिलिट्री फ्यूजन, हम जो सीख सकते हैं दूसरों से, तो हम चीन से ये चीज सीख सकते हैं। उन्होंने क्या किया, आप बात कर रहे थे ना एजुकेशन की, तो उनका एक है 7 Sons of National Defense, जैसे बेजिंग की यूनिवर्सिटी या बेजिंग की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई, या दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज हैं जो बेजिंग के अंदर, कुछ ऐसी हैं जिनको वो फंड भी करते हैं ताकि क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के ऊपर वो फोकस कर सकें। तो ये चीज हमने शुरू कर दी है। अब ये जो बुलेट प्रूफ वेस्ट्स हैं जो आर्मी यूज करती है हाई ऑल्टीट्यूड में, उसमें कहीं ना कहीं रोल रिसर्च का यूनिवर्सिटीज का भी रहा है, और ये इनोवेशन सेल्स जो बन रहे हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर। लेकिन जिस संख्या में अगर हम इसको थोड़ा और तेज गति लेके आए, एक सिविल मिलिट्री फ्यूजन हो, तो हमारा देश और भी स्ट्रांग बनेगा।
1: जी, यही कामना सभी की। और मैं कमांडर विक्रमजीत सिंह, चलते चलते क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका मैं जानना चाहूंगी।
0: बिल्कुल सही, अगर आप एक स्ट्रांग मिलिट्री पावर नहीं है

0: तो ऑब्वियसली आपका अस्तित्व हमेशा खतरे में है। ये अभी बहुत क्लियरली विश्व में वापस लोगों को समझ में आने लगा है, जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद और कोल्ड वॉर के बाद बिल्कुल जिन्होंने बोला था नहीं हमें नहीं लड़ाई लड़नी, हमें नहीं करना, हमें न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं चाहिए।
1: जी
0: अब आपने देखा सब लोग धीरे धीरे यू टर्न मार रहे हैं। जापान सबसे पहले उन्होंने अपनी एक नई फ्रिगेट लॉन्च कर दी है कि भाई ये प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं।
1: जी
0: फ्रांस बोल रहा है मैं न्यूक्लियर वेपन अपना फिर से प्रोग्राम शुरू कर दूंगा। तो जैसे जैसे जियोपॉलिटिक्स चेंज होता जा रहा है, लोगों ने अपने अपने जो उनके डिसीजंस हैं विद रिस्पेक्ट टू सोवरेनिटी एंड डिफेंस ऑफ द नेशन, तो वो उन्होंने बदले हैं बिल्कुल इसमें। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम बात करते आ रहे हैं अभी तक, कि जब तक आपका स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग सेटअप नहीं होगा नीलम जी, आप एक स्ट्रांग मिलिट्री भी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आत्मनिर्भरता का मतलब है आपका खुद का स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होना।
1: जी
0: आज तक इंडिया ने पूरे विश्व में अपना झंडा गाड़ा था सॉफ्ट सर्विसेज में, यानी कि सर्विसेज में।
1: जी
0: सॉफ्टवेयर में हम नंबर वन है, चिप डिजाइन में आप देखें अमेरिका में तो इंडियंस हैं उसमें।
1: जी
0: और एआई में भी ऑब्वियसली फिर इंडियंस हैं, बहुत आगे आगे हैं और बहुत वेल पेड हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में कहीं ना कहीं जो हम थोड़ा पिछड़ गए थे, जिसकी इम्पोर्टेंस देश ने समझी है और इसके ऊपर भी एक प्रधानमंत्री जी ने अलग से क्लैरिन कॉल दिया है कि हम अपने ब्लू कॉलर वर्कफोर्स को कैसे और स्ट्रेंथन करें, हमारे मैन्युफैक्चरिंग कैसे स्ट्रेंथन हो, ये सारे कॉरिडोर्स वगैरह उसी की ओर एक कदम थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये भी हो जाता है तो हम वाकई कह पाएंगे जी हाँ हम सेल्फ रिलायंट हैं, आत्मनिर्भर हैं। क्योंकि पीछे अगर आपको याद हो हमने देखा था कि कई ऐसी कंट्रीज हैं कि पहले बात हो रही थी कोविड के बाद ये बात शुरू हो गई थी कि चाइना को आप सप्लाई चेन से हटा दीजिए, फिर आपने देखा होगा कि वो चाइना प्लस वन पॉलिसी आ गई वर्ल्ड में। चाइना को हटाना इतना आसान नहीं है क्योंकि वो हर एक के मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन में है। तो प्लस वन, तो प्लस वन में आज की डेट में अगर आप विश्व में देखें स्टेबिलिटी वाइज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाइज, इंडिया इज द लीडिंग कंटेंडर। तो उससे क्या फायदा होगा, विश्व का भी फायदा है और भारत का भी फायदा है। आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया फॉर इंडिया एंड मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड।
1: बहुत अच्छी बात आपने बोली। और हम ट्रेड बास्केट की बात जो कर रहे थे कि हमारे आत्मनिर्भर होने से उसमें भी संतुलन बना रहेगा, तो ये है भारत समुद्र से आकाश तक सुरक्षित भी आत्मनिर्भर भी। और जिनकी वजह से सुरक्षित है उनके लिए ये दो पंक्तियाँ, देश की मिट्टी माथे से लगा लेता हूँ मैं हर त्योहार कुछ इस तरह मना लेता हूँ। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज हमने बात की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की, स्वदेशीकरण की। और हमारे विशेषज्ञ इसके लिए थे कार्यक्रम में मेजर जनरल संजय मेस्टन भारतीय थल सेना से। आप हमारे बीच आए, हमारा मार्गदर्शन किया, बहुत रोचक जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। हमारे साथ रहे एयर कमोडोर डॉक्टर अश्विंदर सिंह बहल वायुसेना से, आपने बहुत रोचक बातें हमें बताई। कमांडर विक्रमजीत सिंह नौसेना से आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों विशेषज्ञों का। और मैं यही कहना चाहूंगी अपने श्रोताओं से कि INS विक्रांत हो, तेजस हो, प्रचंड हो, अर्जुन टैंक हो, पिनाका रॉकेट या ब्रह्मोस, ये सिर्फ नाम नहीं, ये भारत का गर्व है। और इस गर्व को और बढ़ाने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात करके। आज पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में हमारे तीनों विशेषज्ञों ने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के संयोजक थे प्रमोद कुमार वत्स और कार्यक्रम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान और तुषार पराशर के साथ मैं नीलम मलकानिया इस कार्यक्रम से अब आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार, जय हिंद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
3: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 12 बजे हैं। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर आधारित कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं लोकमंजरी कार्यक्रम में कुछ लोकगीत। कलाकार हैं शिव कुमार पाराशर।

श्रोता, लोक संगीत के कार्यक्रम लोकमंजरी में अभी आप सुन रहे थे शिव कुमार पाराशर के गाए कुछ लोकगीत। इन्हीं लोकगीतों के साथ हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं नई फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति को फिल्म जुबैदा में। गीत के बोल थे जावेद अख्तर की और संगीत था एआर रहमान का। आइए अब सुनते हैं फिल्म थ्री इडियट से सोनू निगम और श्रेया घोषाल के स्वर में ये गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना सोनू निगम और श्रेया घोषाल को फिल्म थ्री इडियट्स में। गीत के बोल थे स्वानंद किरकिरे के और संगीत था शांतनु मोहित्रा का। आइए अब सुनते हैं फिल्म बंटी और बबली का ये गीत, जिसे गाया है सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर ने। गुलजार के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है शंकर एहसान लॉय ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म कभी अलविदा ना कहने का ये गीत, जिसे गाया था सोनू निगम और अलका याग्निक ने। गीत लिखा था जावेद अख्तर ने और संगीत था शंकर एहसान लॉय का। इस गीत के साथ ही हमारा ये कार्यक्रम अभी ही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 1 बजने को है, अब आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।

नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियों को हटा लिया है। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें यह दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है।

0: मंत्रालय ने कहा है कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में भी महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिक्स महिला ट्रैक ने 4 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह वैश्विक संवाद एआई के अंतर्राष्ट्रीय संचालन को आगे बढ़ाने का अनूठा अवसर है, जो अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और बहुहितधारक प्रयासों का पूरक है। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दी। महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतकर्ताओं में से एक बना दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। The government has issued a stern notice to Meta on child sexual exploitative and abuse material seen in paid ads on social networking site Instagram. Official sources said government has ordered Instagram to disable all ads and content promoting and facilitating access to seen. Ministry of Electronics and IT has demanded a detailed explanation from Meta within 7 days. Earlier, the ministry had taken cognizance of reports that Instagram showcased certain objectionable material that promoted child sexual abuse and issued directions to officials to seek a response from Meta. Government has withdrawn the emergency curbs on natural gas supplies after liquefied natural gas LNG shipments through the Strait of Hormuz resumed following a ceasefire in the West Asia conflict. In a notification, Ministry of Petroleum and Natural Gas said the Natural Gas Supply Regulation Order 2026 has

0: लेकिन साथियों 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट पर 21वीं सदी के नए भारत की इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास इस संकटों पर भारी पड़े हैं।
1: भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर और राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट नितिन नवीन कल पहली बार दो रोजा दौरे पर लखनऊ पहुंचे। कौमी सदर ने पार्टी हेडक्वार्टर में रियासती एग्जीक्यूटिव अहदेदारों और जिला सुदूर के साथ एक अहम मीटिंग की। वजीर आला योगी आदित्यनाथ, नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक और रियासती बीजेपी सदर और मरकजी वजीर मुमलिकत पंकज चौधरी भी मीटिंग में मौजूद थे। इसके अलावा उन्होंने वजीर आला, नायब वजीर आला, बीजेपी के अरकीन पार्लियामेंट और एमएलसी से भी मुलाकातें की। कल लखनऊ के अपने दौरे के दौरान जनाब नवीन ने हनुमान सेतु मंदिर का दौरा किया, जहां उन्होंने भगवान हनुमान के दरबार में अपना सर झुकाकर मुल्क और रियासत के लोगों की खुशी, अमन और खुशहाली के लिए दुआ की। लखनऊ के अपने दो रोजा दौरे के दौरान कौमी सदर जनाब नितिन नवीन ने रियासती सदर पंकज चौधरी के साथ लखनऊ में बीजेपी उत्तर प्रदेश के साबिक सुदूर की मीटिंग में भी शिरकत की और रियासती जनरल सेक्रेटरी तंजीम श्री धर्मपाल कौमी सदर आज मुख्तलिफ अवामी तकरीबात में शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश रेवेन्यू काउंसिल ने अवामी अहमियत की अराजी से मुतल्लिक मुकदमात के जल्द और मेयारी निपटाने को यकीनी बनाने के लिए एक अहम फैसला किया है। इस फैसले के तहत रिजर्व कैटेगरी की जमीन, सरकारी जमीन, ग्राम सभा की जमीन, नजूल अराजी, खाली होने वाली जायदाद और दुश्मन की जायदाद से मुतल्लिक तमाम मुकदमात की समाअत अब 3 रुकनी खसूसी बेंच करेगी। इस इंतजाम को फौरी तौर पर नाफिज कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: राजस्व परिषद के अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है। नई व्यवस्था के अनुसार इन मामलों पर विशेष रूप से गठित 3 सदस्यीय पीठ सामूहिक रूप से विचार करेगी। परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि राजस्व परिषद ने लखनऊ और प्रयागराज दोनों न्यायालयों के लिए अलग अलग 3 सदस्यीय विशेष पीठों का गठन किया है। इन विशेष पीठों द्वारा प्रत्येक बुधवार को नियमित रूप से इन मामलों की सुनवाई की जाएगी। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: उत्तर प्रदेश रेवेन्यू काउंसिल पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। पार्लियामानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून इजलास बुलाने की हुकूमत की तजवीज को मंजूरी दे दी है। मिस्टर रिजिजू ने कहा कि सेशन में कौमी अहमियत के मसाइल पर बामानी बहस और फैसला साजी पर तवज्जो दी जाएगी। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा इस साल भी बड़े जोश के साथ शुरू हुई। यात्रा के पहले 2 दिनों के दौरान 32,313 जायरीन ने मुकद्दस गार की जियारत की। दरियसना सालाना यात्रा के लिए यात्रियों का चौथा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान रवाना हुआ। रियासत के कई इजला में मरतूब गर्मी पड़ रही है, जिससे मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। इधर लखनऊ समेत कुछ इजला में बारिश होने से शदीद गर्मी से राहत मिली है। कानपुर और टूंडला में कल की मूसलाधार बारिश ने आम जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। महकमा मौसमियात ने अगले 3 दिनों तक रियासत के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश की पेशगोई की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नष्ट किया जाएगा।
3: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 1:15 हुए हैं, आइए सुनते हैं बच्चों का अपना कार्यक्रम बाल मंडल।

0: बालमंडल में और मैं हूं आपके साथ आपकी प्यारी राशि दीदी। बच्चों ये तो आप भी जानते हैं कि अब गर्मियों की छुट्टियां समाप्त हो चुकी हैं और वक्त हो चला है पुनः अपनी पुस्तकों के पास लौटने का और अब दिन भर खेलने की बजाय हम स्कूल जाया करेंगे, पढ़ाई किया करेंगे, घर आया करेंगे, पढ़ाई किया करेंगे, खाना खाया करेंगे, पढ़ाई किया करेंगे, खेलने जाया करेंगे, पढ़ाई किया करेंगे, क्योंकि बिना पढ़ाई के कहां हमारे सपनों को उड़ान मिलने वाली है। और जब हम नई कक्षा में आते हैं तो पढ़ाई का थोड़ा सा बर्डन तो बढ़ ही जाता है, क्यों बच्चों, सही कहा ना मैंने? पर साथ साथ नए दोस्त जब आपको मिलते हैं तो मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। और इतना ही नहीं, नई कक्षा में नए शिक्षक शिक्षिका जब नए सब्जेक्ट, नई नॉलेज और साथ ही नया एक्सपीरियंस भी देते हैं तो आपका दिन बन जाता है। जब हमें इतना कुछ एक साथ सीखने को मिलता है तो भविष्य के लिए सपने बनाना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। तो बच्चों आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, हम चर्चा करेंगे नई कक्षा नए सपनों पर। साथ ही मैं आपको हेल्प आउट करूंगी कि आप अपनी नई कक्षा के लिए कैसे तैयार हो और आपके सपनों को पूरा करने में मैं आपका रास्ता आसान करूंगी। बच्चों हर नई कक्षा बच्चों को अपने सपनों के करीब ले जाती है। इस समय बच्चे अपने लिए नए लक्ष्य यानी गोल्स को तय करते हैं, जैसे बेहतर प्रदर्शन करना, पढ़ाई में पिछले साल से ज्यादा मेहनत करना और अच्छे अंक लाना, नई कला सीखना जैसे खेलकूद, संगीत, चित्रकारी मतलब ड्राइंग, डांस या भाषण प्रतियोगिता में भाग लेना। अच्छी आदतें अगर बात करें तो अच्छी आदतों में शामिल होता है समय पर उठना, रोज का काम रोज खत्म करना और बड़ों का आदर करना। ये छोटे छोटे सपने ही तो आगे चलकर हमें जीवन में कुछ बड़ा करने की प्रेरणा देते हैं। बच्चों चुनौतियां और शिक्षकों का मार्गदर्शन शुरुआत में नई कक्षा का नया पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगने लग सकता है, लेकिन अगर हमारे टीचर्स हमको हेल्प कर दें तो हमारे रास्ते आसान हो जाते हैं। नए शिक्षकों के स्वभाव को समझने में आपको थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आप जानते हैं बच्चों जितने रास्ते में हर्डल्स आते हैं उतना ही आप अपनी लाइफ को कैसे जीना है ये सीख पाते हैं। और यही सही समय होता है आपके धैर्य और आपके हौसले को परखने का। बच्चों शिक्षक और माता पिता का सही मार्गदर्शन आपके डर को दूर करता है और आपके सपनों को सच करने में मदद करता है। तो बच्चों मुझे लगता है मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए आप भी मेरे साथ प्रण लीजिए कि पिछली कक्षा में जो हमने गलतियां की हैं उन्हें इस बार नहीं दोहराएंगे और सदैव उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहेंगे। तो चलिए अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: जी हाँ बच्चों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ आपकी प्यारी राशि दीदी और आप सुन रहे हैं आपका मन पसंद कार्यक्रम बाल मंडल। बच्चों ब्रेक पर जाने से पहले हमने चर्चा की थी नई कक्षा और नए सपनों पर और अब वक्त हो चला है हमारे इस कार्यक्रम में खास मेहमान को बुलाने का। तो बच्चों आज के हमारे बाल मेहमान हैं शौर्य शर्मा, जो अंतरिक्ष की दुनिया शीर्षक पर कुछ बातें आपसे करने वाले हैं। तो आइए श्रवण करते हैं।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शौर्य शर्मा। आज हम निकलेंगे एक रोमांचक यात्रा पर पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष की अनंत दुनिया तक। तो चलिए अपनी कल्पना की सीट बेल्ट बांध लीजिए और मेरे साथ उड़ चलिए अंतरिक्ष की ओर। दोस्तों हमारी पृथ्वी एक बहुत ही खास ग्रह है। अभी तक वैज्ञानिकों को पूरे ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी पर ही जीवन मिला है, यही कारण है कि इसे हमारा घर कहा जाता है। पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि दिन और रात क्यों होते हैं? इसका कारण है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर लगातार घूमती रहती है। पृथ्वी को एक पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं और इसी से दिन और रात बनते हैं। अब चलिए सूर्य की

0: ओर चलते हैं। सूर्य एक विशाल तारा है जो हमें रोशनी और गर्मी देता है। यदि सूर्य ना होता तो पृथ्वी पर पेड़, पौधे, जानवर और इंसान कोई भी जीवित नहीं रह सकता था। रात में आसमान में चमकता हुआ चांद हम सभी को बहुत पसंद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चांद अपनी रोशनी खुद नहीं बनाता, वह सूर्य की रोशनी को परावर्तित करता है, इसलिए हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। इसमें बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि बुध सबसे छोटा ग्रह है। शनि अपने खूबसूरत छल्लों के कारण पूरे सौर मंडल में का सबसे आकर्षक ग्रह माना जाता है। अब एक मजेदार सवाल, अगर अंतरिक्ष में दो अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे को जोर से पुकारे तो क्या वह एक दूसरे को सुन पाएंगे? जवाब है नहीं, क्योंकि अंतरिक्ष में हवा नहीं होती है और ध्वनि को यात्रा करने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अंतरिक्ष में अरबों तारे हैं, असंख्यक आकाशगंगाएं हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है। इसमें ही हमारा सौर मंडल स्थित है। भारत भी अंतरिक्ष विज्ञान में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 मिशन को सफल बनाकर दुनिया को अपनी क्षमता दिखाई है। ये हम सभी भारतीयों के लिए गर्व का क्षण था। अंतरिक्ष हमें सिखाता है कि जिज्ञासा और मेहनत से कुछ भी संभव है। आज आप किताबों में अंतरिक्ष के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कल हम में से कोई नया ग्रह खोजे या अंतरिक्ष यात्री बनकर चांद और मंगल की यात्रा करें। तो हमेशा सवाल पूछते रहिए, नई बातें सीखते रहिए और बड़े सपने देखते रहिए। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। सपने वही नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वह होते हैं जो हमें सोने नहीं देते।
1: सुन लिया बच्चों आपने हमारे बाल मेहमान शौर्य शर्मा ने क्या कहा? सपने अगर देखने हैं तो भाई आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। सपने वही होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो अब आप सोइए मत, क्योंकि मैंने सीधा अंतरिक्ष से बुला ली है आपके लिए एक प्यारी सी चिड़िया। अब वक्त हो चला है एक बाल गीत श्रवण करने का, जिसका शीर्षक है एक चिड़िया आती है।
2: एक चिड़िया आती है।

खड़े लंबी मुझे कान बड़े, पांच यहाँ खरगोश खड़े लंबी मुझे कान बड़े।

अरे वाह बच्चों, कितना अद्भुत था ये बाल गीत जिसका शीर्षक था एक चिड़िया आती है। और हमने हंसी खेल में काउंटिंग्स भी सीख ली, 1 से 10 तक की गिनतियाँ। और हमने अंत में क्या कहा, जय जय प्यारे हिंदुस्तान। तो बच्चों चलिए, अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम पुनः लौटेंगे आपके पास।

हाँ जी बच्चों, तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम बाल मंडल में, और मैं हूँ आपके साथ आपकी प्यारी राशि दीदी। तो बच्चों, मुझे कुछ कहना है। एक बात समझ में आई नहीं और मम्मी ने समझाई नहीं, तो आप ही बता दीजिए बच्चों कि ये धरती इतनी गोल गोल क्यों है। बच्चों, जैसे ये सवाल मेरे मन में आया है, ऐसे ही आपके मन में पृथ्वी को लेकर हजारों सवाल आते होंगे, है ना? बच्चों, हमारी धरती बड़ी ही विचित्र है। यहाँ कब क्या हो जाए किसी को भी नहीं पता। ऐसी ही एक घटना अक्सर पाई जाती है जो कब होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, किसी को नहीं पता। बच्चों, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भूकंप के बारे में। बच्चों, हमारी धरती एक बड़ा पजल है। धरती ऊपर से भले ही बिल्कुल सपाट और शांत दिखती है, लेकिन अंदर से ये एक बहुत बड़ा जिग्सॉ पजल है। धरती के ऊपर की सतह यानी जमीन एक पूरा सिंगल टुकड़ा नहीं है, ये कई बड़े बड़े टुकड़ों से मिलकर बनी है। इन टुकड़ों को विज्ञान की भाषा में टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं या ये प्लेट्स आपस में टकराते हुए चलती हैं, ये प्लेट्स वैसे तो बहुत धीरे धीरे चलती हैं, जैसे केंचुआ या घोंगा आपने अगर देखा होगा ये चलते हैं, इतना ही स्लो स्लो ये प्लेट्स भी चलती हैं। और कमाल की बात तो ये है कि ये प्लेट्स धरती के अंदर तैरती रहती हैं, हमें इनके हिलने का पता भी नहीं चलता। चलते चलते कभी कभी ये प्लेट्स आपस में टकरा जाती हैं या एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती हैं। जब ये प्लेट्स आपस में अटक जाती हैं तो वहाँ बहुत सारी एनर्जी जमा होने लगती है और आ जाता है भूकंप। जब वो अटकी हुई प्लेट्स अचानक एक झटके के साथ आगे बढ़ती है तो अंदर जमी हुई सारी एनर्जी बाहर निकल आती है। है ना कितना इंटरेस्टिंग सा? अब आगे सुनिए। इस झटके की वजह से धरती की सतह पर कंपन यानी शेकिंग होने लगती है, इसे ही कहते हैं हम और आप भूकंप। ठीक वैसे ही जैसे पानी में पत्थर फेंकने पर लहरें उठती हैं, वैसे ही धरती के अंदर से उठी लहरें जमीन को हिला देती हैं। बच्चों, तो अब समझे आप कि किस तरह आता है भूकंप। बच्चों, अगर कभी भूकंप आ जाए तो आप जानते हैं कि आपको अपनी जान की सुरक्षा कैसे करनी है। तो चलिए मैं बताती हूं। सुनिए, घर या स्कूल के अंदर अगर आप हों तो ये हमारे कुछ जादुई मंत्र हैं। अगर भूकंप के समय बच्चे कमरे के अंदर हैं तो उसे तुरंत ये तीन स्टेप करने चाहिए। ड्रॉप, कवर एंड होल्ड। ड्रॉप यानी नीचे बैठ जाओ, घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाइए ताकि झटके से आप गिरे नहीं। कवर यानी अपने सर को ढक लीजिए, किसी मजबूत टेबल, डेस्क या बैट के नीचे चले जाइए, हाथ से अपने सर और गर्दन को कसकर ढक लीजिए। होल्ड यानी कस के पकड़ लीजिए, टेबल के पैर को मजबूती से पकड़ लें ताकि हिलने पर भी टेबल आपके ऊपर ना गिरे। बाहर मैदान या रास्ते पर होने पर, किसी खुली जगह पर होने पर, अगर आप घर से बाहर हैं और खेल रहे हैं तो तुरंत किसी खुले मैदान या पार्क में चले जाइए। इन चीज़ों से दूर रहिए। किन चीज़ों से? बिजली के खंभों से, ऊंचे पेड़ से, होर्डिंग बोर्ड से, और इमारतों के पास तो बिल्कुल खड़े मत होइएगा, क्योंकि भूकंप में इमारतें गिरने के बहुत चांसेस होते हैं। तो बच्चों, बस आपको इन्हीं आसान टिप्स को फॉलो करना है और भूकंप से अपनी सुरक्षा करनी है। कितना इंटरेस्टिंग था ना ये सब कुछ। तो बच्चों, भूकंप से कैसे बचना?

0: ना है ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन अब सुनते हैं एक कहानी जिसका शीर्षक है बोनी की छुट्टी।
1: प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बोनी नाम के एक नटखट बच्चे के बारे में बताती हूँ। बोनी घुंघराले बालों वाला, सुंदर, गोरा और बड़ा प्यारा बच्चा था। अपने माता पिता का अकेला होने के कारण वह बहुत लाडला था। माता पिता उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते थे, इस कारण वह थोड़ा जिद्दी भी हो गया था। उसकी नानी गांव में रहती थी। वह अपनी नानी से बहुत प्यार करता था। उसे अपनी नानी किसी परी माँ से कम नहीं लगती थी, क्योंकि वह उसकी हर बात मानती थी। वह अपनी हर छुट्टियां अपनी नानी के घर बिताता था। इस बार भी गर्मियों की छुट्टियों में वह माँ के साथ नानी के यहाँ गया। अपनी नानी से पूरे दिन वह खूब बातें करता। रात में वह उसे सुंदर सुंदर कहानियां सुनाती। उन्हें सुनते सुनते वह कब सो जाता उसे पता ही नहीं चलता था। टीवी देखते मस्ती करते करते छुट्टियां बीतने लगी। वह खूब कार्टून देखता। यह छुट्टियां तो उसने घर में बिता दी, क्योंकि उसका वहाँ कोई दोस्त नहीं था। एक दिन माँ और नानी जब दोपहर में सो रही थी, उसने भी सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आई। फिर धीरे से उठकर वह चक्कर काटने लगा। अचानक वह दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। उसने देखा आसपास के घरों से कुछ बच्चे झांक रहे थे। बोनी उनकी ओर देखकर मुस्कुराया। यह देख वह बच्चे बाहर आ गए। वह उनसे बात करने लगा। धीरे धीरे उनमें दोस्ती हो गई। एक बच्चा बोला, चलो कुछ खेलते हैं। बोनी बोला, मेरे पास बॉल है, मैं बॉल लेकर आता हूँ। सारे बच्चे खुश हो गए। वह बॉल लेकर आया और वह सब बॉल से खेलने लगे। धूप बहुत तेज थी। सारे बच्चे पसीने से लथपथ हो रहे थे। उन्हें गर्मी भी लग रही थी, पर खेल के सामने सब बेकार था। जब वह बॉल खेलते खेलते थक गए तो एक बच्चा बोला, स्पाइडरमैन बनोगे? दूसरा बोला, कैसे? उसने तरीका बताया, पहले एक हाथ की उंगली उठाओ, फिर दूसरा हाथ पीछे ले जाओ और फिर तेजी से घूम जाओ। बोनी ने ऐसा ही करना चाहा, पर खुद को संभाल न पाने की वजह से वह गमलों पर गिर पड़ा। उसके हाथ और ठोड़ी में खून बह रहा था। सब बच्चे डर के मारे भाग गए। किसी ने उसकी मदद नहीं की। बोनी का रोना सुनकर माँ और नानी दौड़ी आईं। चोट लगने के कारण बोनी खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसे माँ से डर भी लग रहा था, लेकिन नानी ने उसे गोद में उठाया और भीतर लाकर बिस्तर पर लिटा दिया। फिर दवा लगाई। तब तक डॉक्टर भी आ चुके थे। स्पाइडरमैन बनने के कारण ही बोनी के साथ ऐसा हुआ। टीवी पर जो कार्यक्रम आते हैं वे ज्यादातर बच्चों के मनोरंजन के लिए होते हैं, फिर सच नहीं होते। उनकी नकल अगर हम करेंगे तो हमारी एक भी हड्डी सही सलामत नहीं बचेगी, नानी ने उसे समझाते हुए कहा। माँ हल्दी वाला दूध लेकर आई, पर बोनी उसे पीने से आनाकानी कर रहा था। नानी ने उससे कहा, दोपहर में तो इतनी गर्मी में बाहर नहीं जाते, फिर क्यों गए बाहर? शाम को जब मौसम ठंडा हो जाता है तभी बाहर खेलने जाना चाहिए। देखो, शैतानी करने से चोट लगती है। बोनी कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। टीवी पर आए प्रोग्राम कार्टून की नकल करना गलत है, नानी बोली। बोनी को काफी दर्द हो रहा था। वह नानी की गोद में मुंह रखकर रोने लगा। शाबाश, अच्छे बच्चे अपनी गलती मान लेते हैं और फिर दोबारा ऐसी गलती नहीं करते। तुम भी आगे से कभी ऐसा न करना, नानी ने प्यार से समझाया। बच्चों, जिस तरह बोनी ने अपनी गलती समझकर माफी मांग ली, उसी तरह सभी बच्चों को अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए और टीवी के प्रोग्राम को केवल मनोरंजन के लिए देखना चाहिए। बड़ों का कहना न मानने से बच्चों का नुकसान ही होता है।
0: जी हाँ बच्चों, सुना आपने हमारी कहानीकार ने क्या कहा? बड़ों का कहना ना मानने से हम बच्चों का नुकसान ही होता है। तो चलिए, मैं आपसे बस इतना ही कहूँगी, जैसे मैं अपने बड़ों की बात मानती हूँ, आप भी अपने बड़ों की बात मानिएगा तो आपका भी नुकसान नहीं होगा। अब बच्चों, मेरी ओर से आप सुन लीजिए एक गीत।

किसकी निगाहों से बच्चों, किसकी निगाहों से, ये जो गीत था ना, दिल में जागी धड़कन, आपको पता है जब सुनिधि चौहान बहुत यंग थी ना तब उसने ये गाना गाया था, और आज के टाइम पे सुनिधि चौहान जी कहाँ पहुँच चुकी हैं और हम बच्चे कहाँ आ चुके हैं। शी इज़ द वर्ल्ड बेस्ट सिंगर। बाय द वे बच्चों, आप एक बात बताइए, आप ये जानते हैं कि अगर आपके फ्रेंड्स की बात करूँ तो आप कितने फ्रेंड्स का नाम टिप्स पे गिन सकते हैं? आई डोंट नो कितने होंगे, मेरे पास भी कितने होंगे, हम में से किसी को नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि एक अच्छा दोस्त हमारे जीवन को सुंदर बना देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी और सच्ची मित्र

कौन होती हैं? वो होती हैं हमारी पुस्तकें। बच्चों, पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती हैं। वे हमसे कभी कुछ नहीं मांगती, बल्कि हमेशा हमें कुछ ना कुछ अच्छा सिखाती हैं। जब हमारे दोस्त खेलने नहीं आते या हम अकेले होते हैं, तब पुस्तकें हमारा साथ निभाती हैं। हम जब चाहें उन्हें पढ़कर अपना मनोरंजन कर सकते हैं। पुस्तकें हमारा ज्ञान बढ़ाती हैं। पुस्तकें हमें दुनिया भर की अनोखी बातें बताती हैं। विज्ञान, इतिहास और अंतरिक्ष के रहस्यों के बारे में बताती हैं। पुस्तकें हमेशा हमें अच्छी बातें सिखाती हैं। कहानियों की अगर हम किताब पढ़ते हैं, तो कहानियों की किताबों से हमें ईमानदारी, दयालुता और बड़ों का आदर करने जैसी अच्छी आदतें सीखने को मिलती हैं। कभी पुस्तकें शिकायत नहीं करती, सच्चे दोस्त की तरह। पुस्तकें कभी हमसे गुस्सा नहीं होती और ना ही कभी भी ये कहती हैं कि हमने उन्हें नहीं पढ़ा। वो कोई शिकायत नहीं करती, वे हमेशा शांत रहकर हमारा मार्गदर्शन करती हैं। बच्चों, जीवन में पुस्तकों का महत्व पुस्तकें पढ़ने से मिलता है। अगर आपको अपने जीवन का महत्व जानना हो ना, तो कभी किसी की बायोग्राफीज पढ़िएगा। सोचने और समझने की शक्ति अगर बढ़ानी है, तो आप महापुरुषों की जीवनियां पढ़िएगा। उनकी जीवनियां पढ़कर हमें जीवन में मेहनत करने और कभी ना हार मानने की प्रेरणा मिलती है। पुस्तकें हमारे अंधकार भरे मन में ज्ञान का दीपक जलाती हैं। जैसे हम अपने दोस्तों का ख्याल रखते हैं, वैसे ही बच्चों हमें अपनी बुक्स और नोटबुक्स का ध्यान रखना चाहिए। हमें उन्हें फाड़ना नहीं चाहिए। उन पे कवर चढ़ा है या नहीं, इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। खाना खाने के बाद हाथ धोकर के अपनी किताबों को छुआ करिए। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे हाथ गंदे होते हैं, हम उन्हीं हाथों से अपनी बुक्स को छू लेते हैं और फिर उसके पन्ने हो जाते हैं मैले। तो हमेशा ध्यान रखें कि अपनी किताब कॉपियों को थोड़ा सा साफ सुथरा रखिए। हमें हर दिन कम से कम एक पन्ना तो अपनी पुस्तक का जरूर पढ़ना चाहिए और इसकी आदत डालनी चाहिए। सचमुच बच्चों, पुस्तकें सबसे वफादार और सच्ची मित्र होती हैं हमारी। बच्चों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमने बहुत सारी बातें की। हमने की चर्चा नई कक्षा, नए सपनों के बारे में। फिर हमने बाल मेहमान से बातें की और उनका सुना एक बहुत बेहतरीन टॉपिक, जिस पे उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष की दुनिया में क्या होता है, कैसे होता है, ये हमें बताया शौर्य शर्मा ने, जो हमारे बाल मेहमान थे। फिर हमने रोचक जानकारी के सेगमेंट में बात की थी क्यों आते हैं भूकंप के बारे में। उसके बाद हमने श्रवण किया बाल गीत, जिसका शीर्षक था एक चिड़िया आती है। फिर हमने सुनी एक कहानी बोनी की छुट्टी और अंत में हमने चर्चा की हमारी सच्ची मित्र पुस्तकों के बारे में। और इसी बीच हमने सुना था एक गाना, दिल में जागी धड़कन। और इसी के साथ वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। हमारा ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करके। अपना ध्यान रखिएगा, पानी पीते रहिएगा, गर्मी बहुत हो रही है, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अभी बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल मंडल। 1:45 हुए हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल के गाए कुछ भजन।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल के गाए कुछ भजन। इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
1: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके

0: अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीबीजी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: श्री चौहान ने कहा कि वीबीजी रामजी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
3: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे, जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रम्बानन मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
1: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
4: The significance is immense.
3: भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
4: And greater economic engagement between these two large countries.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। यह सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
2: दीने दीने वो मारा ढाला पे है, जैसे पानी में घूरा है ढेला।
3: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। जनबाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
4: दोनों जने मिलकर सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
5: अच्छा, जे जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मोला छोड़ दे भैया, सेना ले ले चला। सावन में
3: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन देका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉक्टर तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को

0: अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमेरिका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वॉशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले दो तीन दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाईं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 2:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रूपक। सह वीर करवा वहे प्रतिभागी हैं श्री कृष्ण और दीपाली दुबे। आलेख और प्रस्तुतिकर्ता हैं श्री कृष्ण।

जब मैं छोटा था तो स्कूल में प्रतिदिन सुबह ये प्रार्थना होती थी। इस प्रार्थना के बाद पीटी के कुछ अभ्यास और राष्ट्रगान, और उसके बाद पढ़ाई। इसके बाद नवीं क्लास से लेकर बारहवीं तक स्कूल में हमने ये प्रार्थना की।

या हो सकता है आपने ये प्रार्थना की हो।

0: जो भी प्रार्थना हमने बचपन में की है वो हमारे मन मस्तिष्क में अमिट छाप छोड़ जाती है।
1: उस भाषा और उस भाव का हमारे हृदय में एक खास स्थान बन जाता है जीवन भर के लिए। उसके बाद हम भले ही कितनी ही भाषाओं की कितनी ही प्रार्थनाएं क्यों न सुन लें, सीख लें, लेकिन उनमें वो बात नहीं रहती। कितना अच्छा होता यदि बचपन से ही हमें वैदिक मंत्रों के साथ कुरान की आयतें भी सिखाई जाती।
0: यदि हम गायत्री मंत्र का जाप करते तो साथ ही साथ दुआ भी करते, जैसे ये बच्चे कर रहे हैं।
2: रेडी फॉर गायत्री मंत्र।

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
1: Ready for national pledge. India is my country.
2: India is my country.
1: And all Indians.
2: And all Indians.
1: Are my brothers.
2: Are my brothers.
1: And sisters.
2: And sisters.
1: I love my country.
2: I love my country.
1: And I am proud.
2: And I am proud.
1: Of its rich.
2: Of its rich.
1: And varied.
2: And varied.
1: Heritage.
2: Heritage.
1: I shall always.
2: I shall always.
1: Strive to be.
2: Strive to be.
1: Worthy of it.
2: Worthy of it.
1: I shall pay respect.
2: I shall pay respect.
1: To my parents.
2: To my parents.
1: Teachers.
2: Teachers.
1: And all elders.
2: And all elders.
1: And treat everyone.
2: And treat everyone.
1: With courtesy.
2: With courtesy.
1: To my country.
2: To my country.
1: And my people,
2: and my people,
1: I pledge my devotion,
2: I pledge my devotion,
1: in their well-being,
2: in their well-being,
1: and prosperity,
2: and prosperity,
1: alone lies my happiness,
2: alone lies my
1: Amen.
2: Happiness.
3: इन बच्चों के लिए वैदिक मंत्र भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितनी कुरान की आयतें। साथ ही साथ एक और चीज इनके संस्कारों में शामिल हो रही है, वो है देशभक्ति, देश के प्रति समर्पण की भावना, क्योंकि ये प्रतिदिन इसकी शपथ जो लेते हैं। इसके बाद गाते हैं राष्ट्रगान।
4: लेकिन ये बच्चे हैं कहाँ के?
3: स्वाभाविक सा प्रश्न है कि आखिर ये बच्चे हैं कौन जो गायत्री मंत्र भी पढ़ते हैं और दुआ भी करते हैं।
4: इन्हें ये सब सिखाता कौन है?
3: जी, ये बच्चे हैं एक मदरसे के।
4: क्या, मदरसे के?
3: जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये बच्चे एक मदरसे में पढ़ते हैं और ये मदरसा है अलीगढ़ में।
4: क्या, अलीगढ़ के एक मदरसे में बच्चे गायत्री मंत्र और दुआ साथ साथ पढ़ते हैं?
3: चौंकिए नहीं, ये 100% सच है कि अलीगढ़ के एक मदरसे में

0: बच्चे वेदों की ऋचाएं और कुरान की आयतें साथ साथ, एक साथ और एक ही जगह पढ़ते हैं।
1: अच्छा,
0: इतना ही नहीं, ये हनुमान चालीसा और भजन भी बहुत अच्छे ढंग से गाते हैं।

0: वाह, लेकिन ये मदरसा है कौन सा? ये तो बहुत अच्छा है।
1: इतना ही अच्छा नहीं है, इस मदरसे में और भी बहुत कुछ है जो बहुत अच्छा है।
0: लेकिन इस मदरसे का कुछ नाम भी तो होगा।
1: है, नाम भी है और बहुत बड़ा काम भी है। ये है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का मदरसाए चाचा नेहरू, अपने आप में अनूठा मदरसा।
0: आजकल जहां बहुत से स्कूलों में बच्चों को हिंदी बोलने में सजा दी जाती हो, गायत्री मंत्र पढ़ने से रोका जाता हो।
1: दुआ क्या होती है ये बताने वाला कोई ना हो, अपनी बोली में बात करने से रोका जाता हो। ऐसे में मदरसाए चाचा नेहरू के ये बच्चे अनूठा उदाहरण पेश कर रहे हैं।
0: ये तो वाकई अपने आप में अद्भुत मदरसा है। इसका मतलब इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक बहुत ही पढ़े लिखे और खुले विचारों के हैं।
1: यही तो आश्चर्य की एक और बात है, इन बच्चों के माता पिता थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं या उन्हें कभी स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला।
0: तो करते क्या हैं इनके माता पिता?
1: बस किसी तरह मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करते हैं। कोई मजदूरी करता है तो कोई रिक्शा चलाता है, कोई राजमिस्त्री का काम करता है या कोई ताले की फैक्ट्री में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है।
0: किसी बच्चे की माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके आजीविका कमाती है। कुछ बच्चों का तो कोई भी नहीं है अपना इस दुनिया में।
1: लेकिन इन बच्चों के मन में बड़े बड़े सपने पल रहे हैं।
2: मॉमी ना, मैं लॉयर बनना चाहती हूँ। मम्मा चाहती हैं कि सबके साथ इंसाफ हो, और उनका एम था कि मैं लॉयर बनूं। एक्चुअली वो उन्हीं का एम था कि वो लॉयर बने, लेकिन वो बन नहीं पाई किसी वजह से, लेकिन मैं बन के दिखाऊंगी उन्हें।
3: माय नेम इज सना बरार, सर डॉक्टर, सर दवाइयाँ वगैरह लिख कर देंगे।
4: माय नेम इज मोहम्मद आमिर, सर हम बड़ों का डॉक्टर बनना चाहते हैं और लोगों की मदद करना चाहते हैं जो गरीब होते हैं।
5: माई सेल्फ अफसा खान, और इसके आगे भी हम डिप्लोमा इंजीनियरिंग करेंगे।
6: माई नेम इज यशस्वी गिरी, हम पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं। सर हमें अच्छी लगती है, हमारे पापा का भी यही सपना था। हम चाहते हैं ये समाज बहुत साफ हो, सुंदर हो, पेरिस जैसा हो, इसमें वो सब कुछ हो, अच्छे स्कूल हो, अच्छे हॉस्पिटल हो, सब कुछ अच्छा हो। जो पॉलिटिशियन होते हैं वो देश को संभालते हैं, और अगर वो अच्छे होंगे तो हमारा देश भी अच्छा होगा। वो अच्छा सोचेंगे हमारे देश के लिए तो हमारा देश सुधरेगा, आगे चल के हमारा देश बहुत ही तरक्की करेगा।
7: महवेश साजिद, IPS ऑफिसर।
8: ये IPS ऑफिसर का सपना आपके मन में कब से आया और क्यों आ रहा है?
7: जब मैं 5 years old की थी, जब से आया मेरे मन में IPS, क्योंकि कुछ पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो कि कोई उनके FIR लिखवाने आता है तो वो नहीं सुनते हैं किसी की। इसीलिए मैं बनना चाहती हूँ और सबको दिखाना चाहती हूँ कि पुलिस वाले भी इतना अच्छा कर सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि जो भी लोग लड़कियों को मतलब छोटा समझते हैं, तो आगे चलकर लड़कियों को वो समझें कि हाँ, लड़कियाँ भी कुछ कर सकती हैं।
1: इन सपनों को पूरा करने के लिए ये बच्चे और मदरसे के शिक्षक जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, बता रहे हैं मदरसे के प्रिंसिपल डॉक्टर अकीलुर रहमान।
9: चूंकि हमारा एडमिशन का प्रोसेस ये है कि हम सभी को एडमिशन ले लेते हैं, उसमें कोई

0: बच्चे ज़्यादा एज के भी होते हैं, तो क्लास में एक डिफरेंस मैंने पाया कि बच्चों की नॉलेज के लेवल में एक बच्चा बहुत कुछ जानता है जो आगे है, और एक थोड़ा कम जानता है, वो डिफरेंस होना लाजमी है। तो वहाँ से मेरे दिमाग में आया कि जो बच्चे हमारे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं उनको क्यों ना हम एक मौका दें कि वो उसको और अच्छा करें। तो उसको दिमाग में रख के मैंने काफ़ी होमवर्क किया, और उसके बाद सिलेबस पे होमवर्क किया कि कैसे इनको पढ़ाया जाए। तो हमने ये तय किया कि हम 7th क्लास से और 8th क्लास से कुछ बच्चे जो हमारे ब्रिलियंट हैं उनको लिया जाएगा, और उसको एक टेस्ट के थ्रू हमने सेलेक्ट किया। तो उसमें 50 बच्चों को सेलेक्ट किया है, और वो टेस्ट भी हमने सब्जेक्ट का नहीं लिया था बल्कि एक इंटेलिजेंस लेवल का, रीजनिंग का एक लिया था टेस्ट। अब ये 50 बच्चों को हम विद इन 1.5 ईयर इनको 10th के लेवल तक ले जाएंगे, और ये बच्चे आगे बढ़ सकेंगे। इसमें टारगेट ये है कि हम वैसे तो IIT और सिविल सर्विसेज का टारगेट लेके चल रहे हैं इन बच्चों के लिए, क्योंकि इनको अलग तरीके से हमने एक क्लास बनाई है जिसमें प्रोजेक्टर के थ्रू और टीचिंग एड के थ्रू क्लास दी जाएगी, और इसमें बाहर के कुछ लोग भी वॉलेंटरी हमारे साथ आने को तैयार हैं, जिसमें मेडिकल में एक डॉक्टर हैं जो यहाँ पर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में लेक्चर हैं, वो साइंस की क्लास लेंगे, मैं मैथमेटिक्स और इंग्लिश की क्लास लूँगा, और इसको प्रोजेक्टर और स्मार्ट क्लास के थ्रू पढ़ाया जाएगा। तो इसमें आइडिया ये है कि इसमें 10th क्लास इनको 1.5 साल में क्या करा दी जाएगा, उसके बाद ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग, और AMU में एक टेस्ट होता है 11th एंट्रेंस का, वो बड़ा हाईली प्रेस्टिजियस टेस्ट है, उसमें 40-50 हज़ार बच्चे हर साल अपियर होते हैं। उसमें एक बेनिफिट ये होता है कि बच्चे अगर AMU में एडमिशन पा जाते हैं 11th क्लास में, तो वो इंटरनल ट्रीट होते हैं। इंटरनल से बेनिफिट ये होता है कि आगे उनको इंजीनियरिंग और मेडिकल में एक इंटरनल का कोटा मिलता है। तो हमें दो तो इमीडिएट टारगेट इनके लिए के चलते हैं, लेकिन जो बच्चे और आगे बढ़ना चाहते हैं उनको हम 11th-12th में IIT और सिविल सर्विसेज में भी लेकर जाएंगे। एक आइडिया उसमें ये भी है कि जो बच्चे बहुत वीक हैं और जो आगे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे एकेडमिक उस पर, तो हमारा आइडिया ये है कि उसमें हम एक स्किल डेवलपमेंट का सेंटर भी खोलने जा रहे हैं। तो हमारे दो तरीके से हो जाएगा, और ये एक पूरा सोशल रिवोल्यूशन की तरह होगा। तो इस तरह से हम एक टोटल लाइवलीहुड और एक तो सामाजिक रिवॉल्यूशन की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं।
1: पढ़ाई के साथ साथ खेल के मैदान में भी इन बच्चों की प्रतिभा निकल कर सामने आ रही है।
2: अभी स्टेट में हमारी एक बच्ची है जिसने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, वो अनम खान है। ये
3: कराटे, वुशु, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग और रेसलिंग।
4: आपने कहाँ कहाँ खेला है, उसमें क्या क्या रिजल्ट्स रहे हैं?
3: मैंने कराटे में नेशनल में दिल्ली में खेला, और कानपुर, लखनऊ और मेरठ में खेला था, और बॉक्सिंग मेरठ में खेली, और लखनऊ में स्टेट में गोल्ड मेडल मिला था कराटे में, और कानपुर में स्टेट में सिल्वर मेडल मिला था, और मेरठ में गोल्ड मेडल मिला था बॉक्सिंग में।
5: इल्मा, कराटे, बॉक्सिंग, वुशु।
4: तो अभी तक आपका बेस्ट अचीवमेंट क्या रहा है?
5: कराटे में लखनऊ में खेला था स्टेट और सिल्वर मेडल आया था, और वुशु बॉक्सिंग में मेरठ में जो ब्रॉन्ज मेडल आया था स्टेट में।
6: मेरा नाम मोहम्मद जीशान है। पहले हम कराटे खेलते थे लेकिन अब बॉक्सिंग खेलते हैं। मैंने पहले अलीगढ़ में डिस्ट्रिक्ट खेली थी, उसके बाद लखनऊ में, फिर दिल्ली। अलीगढ़ में गोल्ड लिया था हमने कराटे में, लखनऊ में भी कराटे गए थे स्टेट लेवल, वहाँ पर भी गोल्ड था।
7: हमने मदरसे के खेल प्रशिक्षकों से भी बात की।
8: मेरा नाम सबा अमरीन, मैं बच्चों का हाई जंप, लॉन्ग जंप, रेस, इवन मैं वॉलीबॉल भी देखती हूँ इन लोग का। बस ये है, ये लोग बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी कैचअप करते हैं और अपने करने की कोशिश करते हैं, एकदम जो कहो सिंसियरली सुनते हैं, मानते हैं और बस करते ही हैं, लोग को करना है।
9: मेरा नाम आमिना साबिर है, मैं फिजिकल और परेड देखती हूँ। दे आर वेरी गुड इन कैपेबिलिटीज इन हेल्थ और फिजिकल स्ट्रेंथ, बिकॉज दे न्यू ऑल थिंग्स, दे मैनेज एवरीथिंग फॉर द स्पोर्ट्स। अगर मैं इनसे कहूँ कि जैसा करना है यहाँ पे आपको कैपेबिलिटीज दिखानी है, तो ये वहीं पर ही अपनी कैपेबिलिटीज दिखाते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं ये लोग।
2: जी, मेरा नाम मोहम्मद अजीज़ुर रहमान है। जी, मैं बच्चों को कराटे, किक बॉक्सिंग, बॉक्सिंग, वुशु, रेसलिंग और बाकी अदर स्पोर्ट्स भी देख लेता हूँ। नेशनल के अंदर हमारे बच्चे पहुँचे हैं, और स्टेट में 3 साल से गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं हमारे बच्चे। सब जूनियर वर्ग में रहे हैं और एक बच्चा हमारा जूनियर वर्ग में रहा।
7: ये पूरा मदरसा, इसके बच्चे, यहाँ के शिक्षक और प्रबंधन, ऐसा लगता है जैसे मिशन मोड में हों और नए भारत के निर्माण में जी जान से लगे हैं।
1: यहाँ के टीचर्स को तनख्वाह भले ही कम मिलती हो लेकिन संतुष्टि भरपूर मिलती है।
7: आप हैं मदरसे की शुरुआत से जुड़ी वरिष्ठ शिक्षिका
10: शाइस्ता शमीम। बच्चों को हमें घर से बुलाकर लाना पड़ता था, घर घर जाकर हम लोग उनको इंसिस्ट करते थे कि आप अपने बच्चों को भेजिए, और बच्चों को सही हिंदी भी नहीं वो बोल पाते थे। आज माशाल्लाह हमारे बच्चे इंग्लिश में प्ले करते हैं और स्पीचेस देते हैं, तो मतलब बहुत खुशी हमें होती है देखकर।

इतना उनको शौक था पढ़ने का कि फिर वो 5 बच्चों से वो 10 गए, फिर 20 गए, फिर एक स्कूल हुआ, फिर दूसरा स्कूल खोला चाचा, पहला क्लब था, फिर चाचा नेहरू सुबह फिर मूव खुला। अब इस मदरसा चाचा नेहरू में जिसके तीनों स्कूल साथ आ गए, इसमें 4000 बच्चे और बे इंतहा जहीन बच्चे हैं, बहुत शौक से पढ़ते हैं। हमारा मीडियम इंग्लिश है, हम मुझे कहा जाता था कह रहे ये इस मंगे बच्चे ये तो हिंदी भी नहीं पढ़ पाएंगे, आप हिंदी में उनको पढ़ाएंगे। आज वो बच्चे ने प्रूव कर दिया है कि वो बे इंतहा मेहनत से पढ़ते हैं। हमारे हर साल कोई 5-6 बच्चे BTS में जाते हैं ऑन देयर ओन मेरिट, अपनी मेहनत से। मैसी के सैनिक स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ रहा है जिसकी माँ पसंद होती है घरों में।

0: से हमारा मीडियम इंग्लिश है। हम मुझसे कहा जाता था, कह रहे ये एक मंगे बच्चे ये तो हिंदी भी नहीं पढ़ पाएंगे, आप अंग्रेजी में उनको पढ़ाएंगे। मगर आज वो बच्चे ने प्रूव कर दिया है कि वो 10 मेहनत से पढ़ते हैं। हमारे हर साल कोई 5-6 बच्चे बीटीएस में जाते हैं ऑन देयर ओन मेरिट, अपनी मेहनत से। मैथी के सैनिक स्कूल में एक हमारा बच्चा पढ़ रहा है, जिसकी माँ प्रसन्न होती है घर में।
1: मदरसे में बच्चे गायत्री मंत्र का पाठ, कुरान की आयतें, दुआ सभी का एक साथ वाचन करते हैं। इसके पीछे आपकी क्या सोच रही है?
0: हिंदुस्तान जो है इसमें इतने हजारों रंग हैं। मैं इतने मुल्कों में रह रही हूँ, मुझे कहीं ऐसा मुल्क नहीं मिला जैसा हिंदुस्तान है। हर तरह का रंग है, हर तरह की मौसीकी है, गाने हैं, ये और इतना खूबसूरत एक रेनबो है, उसको हम क्यों खत्म करें। हर रंग खूबसूरत है, हर अपनी एक हर धुन अपनी खूबसूरत है। उसमें चाहे कुरान हो, चाहे गायत्री मंत्र हो, चाहे क्रिश्चियन की लॉर्ड प्रेयर हो, चाहे सरदारों की के शब्द हो, ये सब खूबसूरत चीजें हैं। और ये सब हमको वही चीजें सिखाती है जो हम सबके लिए, इंसानियत के लिए अच्छी है। हमें मोहब्बत सिखाती है, आपस में प्यार से रहना सिखाती है, आपस में मिलजुल के काम करना सिखाती है। तो एक ही लाइट है जिसके कितने रूप है। लाइट तो एक ही है, बल्ब बदल जाते हैं, वो बल्ब के रंग बदल जाते हैं, उसका रूप बदल जाता है। हर मजहब वही चीजें सिखाता है जो इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। आप इसमें प्यार से रहो, लड़ाई मत करो, नफरत मत करो, ये मत कहो कि हम अच्छे तुम बुरे, सब अच्छे हैं, आगे बढ़ेंगे एक साथ मिलके तो मिलता भला होगा। हम अलग अलग हो जाएंगे, मैं अलग तुम अलग, वो हिंदू मैं मुसलमान वो क्रिश्चियन, तो सबसे बड़ा नुकसान तो हिंदुस्तान का होगा ना।
1: इरादे नेक हों, दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
2: मदरसाए चाचा नेहरू को समाज के सभी वर्गों से बढ़ चढ़कर सहयोग प्राप्त हो रहा है।
1: दिनों दिन इसकी ख्याति दूर दूर तक फैलती जा रही है। कुछ संभ्रांत लोगों से हमने बात की।
2: आप हैं अवकाश प्राप्त जनपद न्यायाधीश सुरेश सिंह यादव।
3: अगर हम अपने समाज राष्ट्र के स्तर पर आज बात करें तो ये मानना पड़ेगा कि इस समय हम संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। मेरे कहने की ये मतलब है कि आज परेशान करने वाली जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि भाषा, समाज और धर्म के आधार पर कुछ अलगाव के विचार सबसे ज्यादा मुखर हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें, अगर भाषा और शिक्षा के स्तर पर बात करें तो हमने हिंदी को हिंदुओं तक कर दिया और उर्दू को मुसलमानों तक कर दिया। मेरा निजी ऐसा मानना है कि साहित्य जो है, किसी भी भाषा का हो, वो जीवन को और समस्याओं को समझने में आपको रास्ते सुझाता है। मदरसाए चाचा नेहरू अलीगढ़, श्रीमती सलमा अंसारी के प्रयास को मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि इस मदरसा से जब आप निकलिए तो आपको भ्रम होता है कि आप किसी शुद्ध संस्कृत पाठशाला के पास से गुजर रहे हैं या किसी इंग्लिश मीडियम के स्कूल से गुजर रहे हैं, और कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि आप किसी शुद्ध मुस्लिम संस्था से गुजर रहे हैं। लेकिन जब आप इसके अंदर जाइए तो सही अर्थों में जो हमारे संविधान की मूल भावना है, सामाजिक समरसता, सद्भावना, सहिष्णुता, कि तब आपको वहाँ पर दर्शन होते हैं। इस विद्यालय में आकर के ये बड़ा सुखद अनुभूति होती है कि जब किसी अमर को हम कुरान की आयत पढ़ते हुए सुनते हैं और किसी अकबर को हम जो है ना गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सुनते हैं, और जब किसी इब्राहिम को हम बाइबिल से पहले कुरान और इसमें गीता पर बोलते हुए सुनते हैं। और इससे भी बड़ी बात है ये कि इनका ये संस्कार, ये बुनियाद है हमारी संविधान की उस मूल भावना का कि विविधता में एकता का, समरसता का और समता का। इस मदरसे के बारे में जरूर कहना चाहूँगा कि ये आज की परिस्थितियों में एक आदर्श शिक्षण संस्थान है और यहाँ पर वो पीढ़ी तैयार हो रही है जिसमें ये मानसिकता नहीं है कि हिंदी हिंदुओं की है और उर्दू मुसलमानों की है, और ये भावना ही हमारी अखंडता और एकता को मजबूत कर सकती है कि हम दूसरे को समझें और दूसरा हमारी बात को समझे, यानी एक संवाद की प्रक्रिया निरंतर गतिशील और समय के सापेक्ष चलती रहे।
1: ये हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद कुमार अग्रवाल।
4: मदरसा का नाम आते ही कुछ अजीब सी फीलिंग होती है। लेकिन मदरसा चाचा नेहरू में बचपन से

0: बच्चों को सभी धर्मों की शिक्षा दी जाती है। सबसे खास बात यह है कि इस मदरसे में सभी धर्मों के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। यहाँ के बच्चे प्रार्थना में एक ओर जहाँ गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुरान की आयतें भी पढ़ते हैं। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात बच्चों के संस्कार में डाली जा रही है। देश और समाज को आज ऐसे ही संस्थानों की आवश्यकता है।
1: सच्चे अर्थों में मदरसाए चाचा नेहरू सर्वधर्म संभाव, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना को मजबूत करने में नींव का मजबूत पत्थर साबित हो रहा है।
2: जब नींव मजबूत है तो बुलंद इमारत बनने से कौन रोक सकता है? इसके लिए हम आप सभी को मिलजुल कर काम करना होगा।
1: सह वीर्यम करवा वहे, मदरसे के बच्चे भी तो इस वेद मंत्र में यही कह रहे हैं।

0: लॉर्ड, हम शिष्य और आचार्य दोनों की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों को साथ साथ विद्या का फल का भोग कराएं, हम दोनों एक साथ मिलकर विद्या प्राप्ति का सामर्थ्य प्राप्त करें, हम दोनों का पढ़ा हुआ तेजस्वी हो, हम दोनों परस्पर द्वेष ना करें।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रूपक सह वीर्य करवा वहे। प्रतिभागी थे श्री कृष्ण और दीपाली दुबे। आलेख और प्रस्तुतिकर्ता थे श्री कृष्ण। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 3 बजे हैं, आइए सुनते हैं लोकप्रिय फिल्म संगीत कार्यक्रम गीत गुंजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म दीवाना का ये गीत, जिसे गाया था कुमार सानू ने। समीर के लिखे इस गीत को संगीत निठाला था नदीम श्रवण ने।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल को फिल्म दिल है कि मानता नहीं में। गीत लिखा था फैज अनवर ने और संगीत था नदीम श्रवण का। आइए अब सुनते हैं कुमार सानू के स्वर में फिल्म दिलवाले का ये गीत।
1: कमान अरुण, मेरी पार्टी में रंग कैसे जमेगा जब तक तुम शेर नहीं सुनाओगे।
2: हाँ, कमान अरुण।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और साधना सरगम के स्वर में फिल्म जो जीता वही सिकंदर का ये गीत। मजरू सुल्तानपुरी की शब्द रचना को सुरबद्ध किया था जतिन ललित ने। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में, जिसे हमने फिल्म राजा से लिया है। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा ये कार्यक्रम गीत गुंजन अब यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 3:30 हुए हैं। अब इस सभा के प्रसारण यही समाप्त होते हैं। सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 196.1 मीटर 30,530 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी आज की तीसरी सभा। सभा के आरंभ में आइए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां से आप सुनेंगे
1: पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि इस निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी पूरे देश में सिर्फ एक ही दिन में लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों से बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। श्री धामी ने तीर्थयात्रियों से स्थानीय हस्तशिल्प और उत्पादों की खरीद करके स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित करने की अपील की। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की प्रमुख पहल राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान प्राथमिकता परियोजना ICMR माइंड्स ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पदक जीता है। ये पुरस्कार केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी।

असम के गुवाहाटी में कल से दो दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूह में संस्थागत नियंत्रणता और सशक्त बनाने तथा गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति उनका योगदान अस्मरणीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात 1:30 बजे ब्राजील का मुकाबला नॉर्वे से होगा। वहीं से पहले फ्रांस ने पैराग्वे को 1-0 और मोरक्को ने कनाडा को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

पीटीएम वेव 106.1 मीटर 3530 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की तीसरी सभा। श्रोताओं, सभा के आरंभ में अभी हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे आज की सभा में हम आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आए हैं। अभी से कुछ ही देर बाद यानी कि 5:10 पर सुनिएगा भक्ति परक फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या। पांच बजकर 30 मिनट का वक्त होता है कार्यक्रम युवाणी का, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे दिव्यानी की वार्ता, प्लास्टिक और बढ़ता

श्रोताओं, शाम 6 बजे कार्यक्रम ग्राम्य लोक में सुनेगा वार्ता, पशुओं में गलघोंटू रोग, कारण, लक्षण और उपचार। वार्ताकार होंगे डॉक्टर हरीश चंद्र।

शाम 7:10 पर कार्यक्रम विविधा में आज सुनिएगा डॉक्टर प्रभात कुमार से उनकी वार्ता ई प्रदूषण।

श्रोताओं, ये तो थी हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की एक झलक। अब एक नजर हम डालते हैं कल सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

सुबह 7:10 पर स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत सुनिएगा आंखों की एलर्जी विषय पर डॉक्टर संजय सेन की वार्ता।

तो श्रोताओं, ये था हमारे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम पर एक नजर। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर संध्या।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे हैं जावेद अख्तर और मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत, संगीत ए आर रहमान का, और फिल्म का नाम है पुकार।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

अभी आप सुन रहे थे लगान फिल्म में लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में जावेद अख्तर का लिखा गीत संगीत था ए आर रहमान का। सुसंध्या कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म रॉक स्टार से। आवाजें हैं मोहित चौहान, ए आर रहमान और जावेद अली की। गीतकार हैं प्रसून जोशी और संगीतकार हैं ए आर रहमान।

मोहित चौहान, जावेद अली और एआर रहमान के गाए फिल्म रॉकस्टार के इस गीत के साथ ही सुर संध्या कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और कुछ नया सुनने के लिए तैयार भी होंगे। वैसे आज मैं, यानी कि आपकी रेडियो वाली दोस्त कनिका सिंह, काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज आप हमसे सीधे फ़ोन लाइनों पर जुड़ेंगे और हम आपको सुनवाएंगे आपकी पसंद के गीत। तो जल्दी से नोट कर लीजिए हमारे कॉलिंग नंबर 0562-350-1852, और आप इसके अलावा एक और नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं 0562-297-0337। दोस्तों, हम आपसे बात करेंगे थोड़ी ही देर में, लेकिन उससे पहले आइए करते हैं आज की एक दिलचस्प चर्चा। दोस्तों, इन दिनों हर किसी की ज़ुबान पर एक ही सवाल है, बारिश कब होगी? यानी कि सबको इंतज़ार है झमाझम बारिश का, क्योंकि आसमान में बादल तो दिखते हैं लेकिन बारिश का इंतज़ार तो यूं ही बना रह जाता है। और हम तो सब जानते हैं इस बारिश का सबसे ज़्यादा असर पड़ता है हमारे किसानों पर, क्योंकि अच्छी बारिश का मतलब है खेतों में नमी और अच्छी फसल। लेकिन सिर्फ बारिश ही काफ़ी नहीं है, ज़रूरी है कि हमारी मिट्टी भी मजबूत रहे। आजकल एक बड़ी चुनौती ये भी है कि फसल कटने के बाद बची पराली और डंठलों का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता है, कई बार इन्हें जला दिया जाता है, जिससे बढ़ता है कचरा और खेत की उपयोगी चीज़ें भी नष्ट हो जाती हैं और प्रदूषण भी होता है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर यही पराली खेत की ताकत बन जाए तो? यहीं पर आता है एक आसान और उपयोगी तरीका, जिसे हम कहते हैं बायोचार। चलिए दोस्तों, समझते हैं कि बायोचार क्या है। फसल के बचे हुए अवशेषों जैसे कि पराली और डंठलों को एक खास तरीके से तेज़ गर्मी दी जाती है जहां हवा कम होती है। इससे ये जलकर राख नहीं बनते बल्कि काले हल्के दानेदार रूप में बदल जाते हैं। यही है बायोचार। जब इसे खेत में मिलाया जाता है तो ये मिट्टी में नमी बनाए रखने में मदद करता है, मिट्टी को बेहतर बनाता है और फसल की बढ़वार के लिए अच्छा माहौल तैयार करता है। साथ ही इसमें मौजूद कार्बन लंबे समय तक मिट्टी में सुरक्षित रहता है। यानी एक तरफ फसल अवशेष का सही उपयोग होता है और दूसरी तरफ पर्यावरण को भी फायदा मिलता है। अब सवाल ये है कि अगर ये इतना फायदेमंद है तो हर जगह इसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है? असल में अभी बहुत से किसानों तक इसकी जानकारी पूर्ण तरह नहीं पहुंची है। इसके अलावा इसे बनाने की सुविधाएं और जागरूकता भी सीमित है, इसलिए इसका उपयोग अभी शुरुआती स्तर पर ही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस दिशा में काम हो रहा है। अगर किसानों तक सही जानकारी

0: पहुंचे और इसे सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए तो ये खेती के तरीके को बदल सकता है। इससे मिट्टी की सेहत सुधरेगी, खेती की लागत कम हो सकती है और किसानों के लिए नए अवसर भी बन सकते हैं। यानी कभी कभी समाधान बाहर नहीं ढूंढना पड़ता, वो हमारे आसपास ही होता है, बस उसे समझने की और अपनाने की ज़रूरत होती है। तो आइए बदलाव की शुरुआत छोटे कदमों से करें, ताकि हमारी मिट्टी भी खुश रहे, किसान भी मजबूत हो और पर्यावरण भी साफ रहे। चलिए दोस्तों, अब आपका इंतज़ार ख़त्म किए देते हैं और हम आज के पहले कॉलर से मिलते हैं। आपका स्वागत है आकाशवाणी के आगरा केंद्र पर, जहां फिलहाल प्रसारित हो रहा है कार्यक्रम युववाणी। और फिलहाल हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला है आपकी पसंद जानने का, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगी कौन है इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर।
1: तो मेरा नाम किरण है और मैं सिवनी मध्य प्रदेश से हूँ।
0: जी, मुझे जानकर के बहुत खुशी हो रही है कि फिलहाल मध्य प्रदेश सिवनी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं किरण। तो किरण, आप क्या करती हैं?
1: तो मैं एक आदिवासी फिल्म मेकर हूँ।
0: वेरी नाइस, तो आप जरूर रेवोल्यूशनरी फिल्म्स आप बनाती होंगी और ऐसा काम आप निरंतर करते रहें और आगे बढ़ते रहें। और इसी इंस्पायरिंग नोट पर मैं आपसे जानना चाहूंगी आपकी पसंद का गीत।
1: एक दिन आप बाय यस बॉस।
0: अच्छा, एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फ्रॉम मूवी यस बॉस, राइट?
1: यस।
0: ऑलराइट, लीजिए आपके लिए आ रहा है ये आपकी पसंद का गीत।

0: दोस्तों, अभी हमने सुना एक खूबसूरत गीत मूवी यस बॉस से, जो कि थी मध्य प्रदेश से जुड़ी किरण की पसंद। हम जानेंगे हमारे अगले कॉलर की पसंद, लेकिन कुछ देर के बाद। चलिए आपको बता देते हैं कि इस वीक हम सभी मिलकर के बना रहे हैं वन महोत्सव सप्ताह। दोस्तों, आपने देखा होगा कि एक जो छोटा सा पौधा होता है, एक पेड़ होता है, वो वाकई में हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। क्यों? हमें वो छाया देता है, हमें वो साफ हवा देता है, बारिश को संतुलित करता है और इस धरती को हरा भरा बनाता है। दोस्तों, इसी सोच के साथ मनाया जाता है वन महोत्सव सप्ताह। ये हर साल भारत में 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक मनाया जाता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक आंदोलन है, पेड़ लगाने और पर्यावरण को बचाने का आंदोलन, जिसकी शुरुआत हुई थी साल 1950 में। और इसका उद्देश्य ही यही है कि लोगों में पेड़ों के प्रति प्रेम जगाना और वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना। और हम सभी जानते हैं दोस्तों, फिलहाल की स्थिति को देखते हुए हम सभी के मन में कहीं ना कहीं तो ये ज़रूर आता है कि काश हमारी ये धरती और भी ज़्यादा हरियाली से हरी भरी होती। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों, इस बात को ना आपके मन तक मत रखिए, इसको अपने एक्शंस में भी उतारिए। जी हाँ दोस्तों, कैसे? जैसे कि हम कचरे को अलग अलग रख सकते हैं, यानी कि गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग। और हम तो कितनी बार देखते हैं दोस्तों, प्लास्टिक तो एक ऐसा बढ़ता हुआ कचरा है जिसका कोई अंत ही नहीं, लेकिन हाँ, उसे रीयूज़ तो ज़रूर किया जा सकता है। और क्या क्या हम जो हैं प्लास्टिक के साथ कर सकते हैं, इस बात पर विशेष रोशनी डालेंगी हमारी आज की वार्ताकार दिव्यानी दुबे। आइए उनसे सुनते हैं।
1: प्रकृति एवं मानव ईश्वर की अनमोल व अनुपम कृति है। प्रकृति आदि काल से मानव की सहचरी रही है, लेकिन मानव ने अपने भौतिक सुखों एवं इच्छाओं की पूर्ति के लिए इसके साथ निरंतर खिलवाड़ किया है। स्वार्थी एवं उपभोक्तावादी मानव ने पर्यावरण को पॉलिथिन के अंधाधुंध प्रयोग से जिस तरह प्रदूषित किया है, उससे संपूर्ण वातावरण पूरी तरह आहत हो चुका है। आज के युग में पॉलिथिन के दूरगामी दुष्परिणाम एवं विषैलेपन से बेखबर हमारा समाज इसके उपयोग में इस कदर आगे बढ़ गया है कि मानो इसके बिना जीवन अधूरा है। वर्तमान समय को अगर प्लास्टिक युग के नाम से जाना जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। संपूर्ण विश्व में प्लास्टिक अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना चुका है और दुनिया के सभी देश इससे निर्मित वस्तुओं का किसी न किसी रूप में प्रयोग कर रहे हैं। सोचनीय विषय यह है कि हम सभी इसके दुष्प्रभावों को जानते हुए भी अनभिज्ञ बन रहे हैं। भारत में प्लास्टिक का प्रवेश लगभग 60 के दशक में हुआ। आज स्थिति यह है कि 60 साल में यह पहाड़ की शक्ल में बदल गया है। 2 वर्ष पहले तक भारत में अकेले ऑटोमोबाइल क्षेत्र में इसका उपयोग 5,000 टन वार्षिक था। संभावना यह जताई गई थी कि इसी तरह उपयोग बढ़ता रहा तो जल्द ही यह 22,000 टन तक पहुंच जाएगा। आर्थिक उदारीकरण की वजह से प्लास्टिक को और बढ़ावा मिला है। 2014 में प्रकाशित

0: एक शोध के अनुसार समुद्र में प्लास्टिक कचरे के रूप में 5,000 अरब टुकड़े तैर रहे हैं जो समुद्री जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक समुद्र में मछलियों से अधिक प्लास्टिक होगी। प्लास्टिक कचरे का दोबारा उत्पादन आसानी से संभव नहीं होता है। इनको जलाने से जहरीली गैसें निकलती हैं। यह मिट्टी में पहुंचकर धरती की उर्वरा शक्ति को भी नष्ट करता है। दूसरी तरफ मवेशियों के पेट में जाने पर यह जानलेवा साबित भी हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार प्लास्टिक नष्ट होने में 500 से 1,000 वर्ष तक का समय लग सकता है, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल पदार्थ नहीं है। पॉलिथीन कचरे से नालियां व नहरें भी अवरुद्ध हो जाती हैं। प्लास्टिक और दूसरे प्रकार के कचरों के निस्तारण का अभी तक हमने कोई कुशल प्रबंधन तंत्र नहीं खोजा है। उपभोक्तावाद की संस्कृति ने गांवों को भी अपना निशाना बनाया है। यहाँ भी प्लास्टिक संस्कृति बढ़ रही है। बाजार से वस्तुओं की खरीदारी के बाद प्लास्टिक के थैले पहली पसंद बन गए हैं। खाने पीने की गर्म वस्तुओं के प्लास्टिक के संपर्क में आने से रासायनिक क्रिया होती है जो सेहत के लिए हानिकारक है, किंतु सुविधाजनक संस्कृति हम सभी पर हावी हो चली है। विडंबना यह है कि प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी है, इसके बावजूद इसका इस्तेमाल बदस्तूर जारी है। इस बाबत राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने कड़ा ऐतराज जताया है। सभी सैर सपाटे वाले स्थान इससे ग्रस्त हैं। यहाँ तक कि देश की राजधानी भी इससे अछूती नहीं रही है। दिल्ली विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में 11वें नंबर पर है। उच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में सरकारों को कई बार फटकार भी लगाई है। शोधकर्ता और वैज्ञानिक यह मानते हैं कि समुद्र में होने वाले प्रदूषण के लिए माइक्रोफाइबर और प्लास्टिक की बोतलें मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं, जो एक बार इस्तेमाल कर फेंक दी जाती हैं। जापान और दक्षिण एशियाई देशों की मछलियों के पेट में भी प्लास्टिक पाई गई है। अपने पर्यावरण की रक्षा करना एवं उसको संजोए रखना समाज का कर्तव्य बन जाता है। अतः मानव समाज को प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण से बचाव के लिए बढ़ चढ़कर आगे आना होगा। हम सभी को अपने अपने स्तर पर इससे निपटने के लिए कदम उठाने होंगे। परिवार के सभी सदस्यों को पॉलिथीन थैलों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। जागरूकता प्लास्टिक प्रदूषण की रोकथाम की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। सब्जी खरीदते समय हम पॉलिथीन की बजाय जूट या कपड़े के बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक एवं थर्मोकोल की प्लेट के बजाय हम कागज या सिरेमिक की प्लेटें उपयोग में ला सकते हैं। इसके साथ ही प्लास्टिक की वस्तुओं को रिसाइकल करना इस प्रकार के प्रदूषण से निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका है। प्लास्टिक का मानव कल्याण की दिशा में सही इस्तेमाल हो सके, ये तो सभी चाहते हैं, लेकिन सतर्कता इस बात में बरतनी है कि प्लास्टिक पर्यावरण विनाश का कारण न बने।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हमारी वार्ताकार दिव्यानी दुबे को, जिनसे हमने जाना कि हम कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में प्लास्टिक को रीयूज कर सकते हैं, कैसे हम प्लास्टिक के दूसरे ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं खेल जगत की ओर। तो दोस्तों, इन दिनों हम देख सकते हैं कि ग्रैंड स्लैम विंबलडन 2026 चल रहा है। इसका पहला हफ्ता तो काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा। ब्रिटिश खिलाड़ियों के लिए यह हफ्ता वाकई निराशाजनक रहा, क्योंकि ऐसे कई बड़े नाम रहे जो कि पहले ही राउंड में बाहर हो गए। वहीं सबसे ज़्यादा चर्चा में रही सेरेना विलियम्स और उनकी वापसी, लेकिन ये वापसी ज़्यादा लंबी तो चल नहीं सकी और वे जल्दी ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई। वहीं मैन सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन जैनिक सिनर ने अब तक आगे तो बढ़त बना रखी है, लेकिन उनका प्रदर्शन पूरी तरह भरोसेमंद नहीं दिख रहा है। कई मैचों में उन्हें कड़ी टक्कर भी मिली है। अब टूर्नामेंट अपने दूसरे हफ्ते में पहुँच चुका है, जहाँ बड़े मुकाबले की तैयारी हो रही है और ड्रॉ पूरी तरह खुल चुका है, जिससे फैंस को रोमांचक मैच देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई विंबलडन ग्रैंड स्लैम की। अब बढ़ते हैं खेल इवेंट की तरफ, यानी कि फीफा 2026 की ओर। दोस्तों, 2026 फीफा वर्ल्ड कप इस समय अमेरिका

0: कनाडा और मेक्सिको में खेला जा रहा है और अब यह टूर्नामेंट अपने सबसे रोमांचक चरण नॉकआउट स्टेज में पहुंच चुका है। 48 टीमों वाले नए फॉर्मेट में मुकाबले और भी ज़्यादा कड़े और इंटरेस्टिंग हो चुके हैं। अर्जेंटीना, फ्रांस और इंग्लैंड जैसी दिग्गज टीमें क्वार्टर फाइनल की दौड़ में बनी हुई हैं, वहीं मोरक्को जैसी टीमें शानदार प्रदर्शन कर सबको चौंका रही हैं। गोल्डन बूट की रेस भी दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ किलियन बापे, एर्लिंग हालैंड और लियोनेल मेसी लगातार गोल दाग कर टॉप स्कोरर की रेस में बने हुए हैं। इस साल इस बार टूर्नामेंट में अहम नियम बदलाव भी लागू किए गए हैं, जैसे तेज खेल के लिए टाइम लिमिट, जल्दी सब्स्टिट्यूशन नियम और देरी करने वाली हरकतों पर सख्ती, जिससे मैचों की रफ्तार और भी बढ़ चुकी है। तो दोस्तों, फीफा 2026 अब अपने सबसे इंटरेस्टिंग मोड पर है और ये टूर्नामेंट 19 जुलाई 2026 को अपने फाइनल मैच के साथ कंक्लूड होगा। ये तो बात ही दोस्तों फीफा 2026 की। वैसे इसके फाइनल से मुझे याद आया कि आज हो रहा है ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल, आज यानी कि 5 जुलाई को ही। जी हाँ दोस्तों, और क्रिकेट का तो क्रेज़ हमारे यहाँ कितना है, यानी कि हमारे पूरे देश में, ये तो हम सभी बेहतरीन तरीके से जानते ही हैं। और आज सबकी नज़रें टिकी हुई हैं इस फाइनल वर्ल्ड कप 2026 पर कि कौन लिफ्ट करने वाला है ICC महिला T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो टीमें हैं आज जो भिड़ने वाली हैं वो है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। बहुत ही शानदार फॉर्म में हैं दोस्तों और ये मुकाबला भी बेहद रोमांचक होएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन हाँ, आज हमें ये ज़रूर पता लग जाएगा कि कौन बना है नया विश्व चैम्पियन। वैसे दोस्तों, अभी हम क्रिकेट जगत की बात कर रहे हैं और क्रिकेट जगत में ना सबसे ज़्यादा हमें इंटरेस्टिंग वो देखने में लगता है कि खिलाड़ियों के भीतर क्या चल रहा है, उनके ड्रेसिंग रूम्स में क्या चल रहा है, और यही चीज़ हम कैसे देख पाते हैं, मूवीज़ के ज़रिए। जी हाँ दोस्तों, बड़े पर्दे पर, जैसे कि हमने देखा फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, फिल्म 83 और मिताली राज पर आधारित मूवी शाबाश मिठू। दोस्तों, ये फिल्म है बायोपिक, जिनका मतलब होता है किसी असली इंसान की ज़िंदगी पर आधारित कहानी, चाहे वे खिलाड़ी हों, नेता हों, कोई कलाकार हों या कोई इंस्पिरेशनल व्यक्ति। इसमें उस व्यक्ति की जीवन की पूरी यात्रा दिखाई जाती है, जिनके संघर्ष, मुश्किलें, मेहनत, छोटे मोटे मोड़ और फिर सफलता तक का सफ़र। यानी ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं होती, बल्कि हकीकत से जुड़ी हुई एक प्रेरणादायक कहानी होती है, जिसे हम फिल्म या किताब के रूप में देखते और पढ़ते हैं। आज के समय में दोस्तों, कई मशहूर बायोपिक फिल्में बनी हैं, कितनी खिलाड़ियों के ऊपर, कोई महान व्यक्तियों की ज़िंदगी पर आधारित हैं, जो हमें सिखाती हैं कि मुश्किल हालात में भी अगर मेहनत और लगन हो तो सफलता ज़रूर मिलती है। और सिर्फ फिल्में ही नहीं दोस्तों, बायोपिक तो हमें अक्सर किताबों और नॉवल के रूप में भी देखने के लिए मिलती हैं, जहाँ किसी व्यक्ति की पूरी जीवन यात्रा को विस्तार से बताया जाता है, जिन्हें पढ़कर हम उनके अनुभवों को सीख सकते हैं और अपने जीवन में प्रेरणा ले सकते हैं। यानी कि बायोपिक सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि असली जीवन से जुड़ा हुआ एक ऐसा माध्यम है जो हमें सोचने, समझने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। चलिए, इसी प्रेरणा के साथ हम मिलते हैं हमारे आज के अगले कॉलर से।
1: आपका स्वागत है आकाशवाणी के आगरा केंद्र में, जहाँ से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी और जिसमें मैं हूँ आपके साथ रेडियो वाली दोस्त। तो आप बताएं, आप कौन बात कर रहे हैं?
2: मेरा नाम कौशल है, मैं पुणे से बात कर रहा हूँ।
1: तो फिलहाल हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं पुणे से। तो कौशल जी, क्या करते हैं आप?
2: फिलहाल तो बेरोजगार हूँ, काम की तलाश में।
1: यही चाहेंगे कि आपको जल्द से जल्द आपका पसंदीदा रोजगार मिल जाए। तो जैसे कि आप तो आकाशवाणी सुनते ही हैं।
2: जी बिल्कुल, मुझे बहुत पसंद है, काफी इन्फॉर्मेशन मिलती है।
1: आपको हमारे माध्यम से समय समय पर न्यू जॉब ओपनिंग्स भी पता चलती रहती होंगी, तो आप भी उनमें से कहीं पर अप्लाई कर सकते हैं।
2: हाँ जी बिल्कुल।
1: आपके भविष्य के लिए आपको ऑल द बेस्ट। और आप अब हमें बता सकते हैं आप

0: कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैं सुनना चाहूंगा तेरे नैना फ्रॉम चांदनी चौक टू चाइना।
0: तेरे नैना, बहुत ही खूबसूरत गीत आ रहा है आपके लिए।
1: शुक्रिया।

साथ और चाचा के विषय के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खिलखिलाते रहें। मुझे यानी कि अपनी रेडियो वाली दोस्त कनिका सिंह को दे इजाज़त। नमस्कार।

राम राम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सभी का आज आपके अपने दैनिक कार्यक्रम ग्रामीलोक में। कैसे हैं आप सब? आशा ही नहीं, पूरा पूरा विश्वास है कि आप सबके घर आंगन में खुशहाली होगी और हमारे गौवंश की कृपा से दूध दही की नदियां भी बह रही होंगी। भैया बहनों, आज मैं आपकी बहन सोमा जैन आपके बीच एक ऐसी खुशखबरी लेकर आई हूँ जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से आप जैसे हमारे जो मेहनती पशुपालक और किसान साथी हैं उनके लिए तैयार की है। जी साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मिशन की जो हमारे घरों में समृद्धि की कामधेनु लेकर आएगा। इस योजना का नाम है नंद बाबा दुग्ध मिशन। पहले एक बात बताओ, सोचो जब हम सुबह से शाम तक गाय भैंसों की सेवा में जी जान लगा देते हैं, चाहे बात चारा काटने की हो, सानी की हो, पानी करना हो, दूध दुहना हो, हमारी मेहनत में कभी भी कोई कमी नहीं होती। बताओ, कोई कमी रखते हैं आप? नहीं ना। लेकिन फिर भी जब दूध बेचने की बारी आती है तो क्या हमें सही दाम मिल पाता है? क्या हमारी जेब में उतना मुनाफा आता है जितनी हमारी मेहनत होती है? नहीं ना। कई बार बिचौलिया हमारा हक मार जाते हैं। इसी दर्द को समझा है हमारी सरकार ने और उन्होंने शुरू किया है नंद बाबा दुग्ध मिशन, जिसका मकसद है दूध का सही दाम सीधे आपके हाथ। साथियों, इस योजना से पैसा कैसे हमारी जेब में आएगा उसके लिए आगे बात करते हैं और जानते हैं इससे होने वाले फायदे। भाई, सबसे बड़ा फायदा है स्वदेशी गाय जो होती है उन पर बम्पर सब्सिडी। अगर आप हमारे देश की शान जैसे हमारी जो गिर या थार पारकर नस्ल की गाय है उसे खरीदने की सोच रहे हैं तो सरकार आपको 50% तक का अनुदान यानी सब्सिडी दे रही है, यानी आधी कीमत आपकी और आधी कीमत सरकार की। है ना कमाल की बात? दूसरा बड़ा फायदा और वो ये है कि बड़ी डेयरी खोलने का मौका। अगर कोई भाई या कोई महिला समूह मिलकर 10 गाय या 25 गाय की एक बड़ी डेयरी इकाई खोलना चाहता है तो सरकार उसके लिए भी लाखों रुपए का अनुदान दे रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो पैसा है ना वो सीधा आपके बैंक खाते में आएगा, यानी जो अनुदान मिलना है वो कहीं भी इधर उधर नहीं जा रहा, सीधा आपके बैंक खाते में आएगा, किसी भी बात का कोई भी डर नहीं है। और सुनिए भैया बहनों, सरकार सिर्फ मदद नहीं कर रही बल्कि आपकी मेहनत का सम्मान भी कर रही है। हमारे जो पशुपालक भाई या बहन अपनी गाय से सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करेंगे उन्हें सरकार की तरफ से ₹10,000 से लेकर ₹15,000 तक का नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। है ना भाई, बड़ी अच्छी बात। जब बात पुरस्कार की हो ना तो बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हम भी इस रेस में शामिल हो जाए और ये पुरस्कार हमें भी मिल जाए। तो सोचो ज़रा।

दूध बेचकर तो कमाई होगी वो अलग, और गांव में जो नंबर वन आने का सम्मान और इनाम मिलेगा ना वो अलग। और बहनों, आपके लिए तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि हमारे गांव की महिलाएं भी इस मिशन से जुड़कर आत्मनिर्भर बनेंगी और अपने पैरों पर खड़ी होंगी। तो फिर सोच क्या रही हो बहनों, करना है ना इस मिशन में काम। तो भाई, अब इस योजना का लाभ कैसे ले, ये जानना तो बहुत ज़रूरी है। हमें कहाँ जाना होगा, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो भाई, जान लीजिए आप लोग कि आजकल के ज़माने में सबसे अच्छा तरीका है ऑनलाइन। इससे अच्छा दूसरा कोई तरीका ही नहीं है भाई, ज़माना भी बदल रहा है। तो इसके लिए आपके पास एक स्मार्टफोन है तो सबसे अच्छी बात है, अगर नहीं है तो गांव में जो जन सेवा केंद्र है उस पर जाकर सीधे नंद बाबा दुग्ध मिशन .up.gov.in वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरें। अगर किसी भी कारण आप ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं तो घबराइए मत, ऐसा नहीं है सिर्फ ऑनलाइन ही कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो आप ऑफलाइन भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ब्लॉक में जाना होगा और वहाँ जिला दुग्ध विकास अधिकारी जो होते हैं या मुख्य पशु जो चिकित्सा अधिकारी होते हैं उनके दफ्तर में जाकर सीधे आप उनसे इसकी जानकारी ले सकते हैं, फॉर्म ले सकते हैं और वहाँ जमा भी कर सकते हैं। हाँ, याद रखें कि आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, निवास प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज सुंदर सी फोटो आपकी, ये सब आपके साथ ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं जो लगते हैं फॉर्म के साथ। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है और फिर देर नहीं करनी है भाई, आज ही इस योजना में आवेदन कीजिए और अपने पशुपालन के व्यवसाय को एक नया मुकाम दीजिए, है ना। तभी तो हम ये कहते हैं कि जय जवान, जय किसान, जय गौ माता। भाई, जब गौ माता की बात आती है ना तो हमारे देश में, हमारी संस्कृति में तो वैसे भी उनकी पूजा की जाती है, उन्हें माँ का सम्मान दी जाता है और हम उनके चरण ही तो पूछते हैं। और जब उनके चरण पूछते हैं तो हमारे कुछ भाई तो खो जाते हैं और गुनगुनाने लग जाते हैं गौ माता की सेवा में। क्या गुनगुनाते हैं, आइए सुन लेते हैं।

0: तो ये तो हमारी संस्कृति है भैया बहनों कि हम अपनी गौ माता के चरण पूजते हैं और उन्हें माँ जैसा सम्मान भी देते हैं। भाई नंद बाबा दुग्ध मिशन जहाँ हमें नई आयाम छूने का एक मौका देगा, हमारी इन्हीं गौ माता के माध्यम से दूध जो हमें मिलेगा उससे हम अपनी आय बढ़ा सकते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी, है ना। वैसे भी चाहे बात गौ माता की हो या हमारे किसी भी पशु की हो, हम अपने पशुओं से उतना ही प्यार करते हैं भैया बहनों जितना हम अपने बच्चों से करते हैं। और अगर हमारे पशु को ज़रा भी तकलीफ़ हो जाए तो हमें भी तो तकलीफ़ होती है ना, इसलिए हम कभी भी नहीं चाहते हमारे पशु को कोई भी दिक्कत हो भाई। लेकिन जो अभी मौसम चल रहा है ना उसमें पशुओं में गलघोंटा रोग ये बहुत होने की संभावना होती है, तो ऐसे में पशु बहुत परेशान भी हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है और अगर सही समय पर उपचार ना मिले तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसलिए पशुओं में गलघोंटू रोग उसके कारण क्या है और उसके उपचार क्या है, आइए अब उसे भी जान लेते हैं। हमारी आज की वार्ताकार हैं डॉक्टर हरीश चंद्रा।
1: प्रिय किसान भाइयों, आज हम बात कर रहे हैं पशुओं में बरसात के मौसम में होने वाली एक बहुत ही खतरनाक एवं जानलेवा बीमारी जिसे हम गलघोंटू, घुर्रका या HS के नाम से जानते हैं। इसके बचाव एवं इलाज के बारे में आवश्यक जानकारी दी जा रही है, यदि आप इसे अमल में लाएंगे तो अवश्य ही अपने पशुधन को इस बीमारी से बचा सकेंगे। प्रमुख रूप से यह गाय भैंस की बीमारी है लेकिन कभी कभी भेड़, बकरी एवं सुअरों में भी हो जाती है। वैसे तो यह बीमारी सभी आयु वर्ग के पशुओं में होती है लेकिन 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक के गाय भैंस इस बीमारी से अधिक प्रभावित होते हैं। अब हम बात करते हैं कि यह बीमारी हमारे पशुओं में आती कैसे है। यह एक जीवाणु जनित रोग है। इसका संक्रमण बीमार पशु के संपर्क से, दूषित भोजन पानी से, रोगी पशु के मल मूत्र के संपर्क में आने से होता है। हालांकि यह बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में अधिकांशतः सांस के द्वारा फैलती है। कभी कभी इस बीमारी को पैदा करने वाले जीवाणु हमारे पशुओं के शरीर में पहले से ही मौजूद होते हैं और जैसे ही पशु की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ती है यह बीमारी पशु को अपनी चपेट में ले लेती है। पशु की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे पशु बाड़े में गंदगी होना, बाड़े में पानी का भराव होना, पशु के आराम से बैठने की व्यवस्था न होना, बिछावन का गंदा होना, पशु का लंबे समय तक भूखा रहना, पशु से उसकी क्षमता से अधिक कार्य लेना या अधिक सफर की वजह से पशु को थकान होना, पशु बाड़े में क्षमता से अधिक पशु रखना, कृमि नाशक दवा का समय समय पर प्रयोग न करना तथा पशुओं का सही समय पर इस बीमारी का टीकाकरण न हो पाना। जहां तक बीमारी के लक्षणों की बात है तो इस बीमारी में सबसे पहले पशु को तेज बुखार आता है जो 104 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। बुखार की वजह से पशु कांपने लगता है, तीव्र गति से सांस लेने लगता है और पशु को निमोनिया हो जाता है। रोग की शुरुआत में मुंह, नाक और आंख से पानी बहने लगता है जो बाद में म्यूकस की तरह गाढ़ा हो जाता है। आंखें लाल हो जाती हैं, पेट दर्द के साथ कभी कभी सादा दस्त या खूनी पेचिस भी हो जाती है। पशु चारा दाना छोड़ देता है और पशु का दूध एकाएक कम हो जाता है। और अंत में बीमारी का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण पशु के गले और कभी कभी लोटे पर भी सूजन आ जाती है। यह सूजन छूने पर गर्म और अत्यंत पीड़ादायक होती है। सूजन और निमोनिया की वजह से सांस की नली बंद होने लगती है और पशु घर घर की आवाज के साथ सांस लेने लगता है और शीघ्र ही इलाज न मिलने पर पशु की मृत्यु हो जाती है। बात आती है बीमारी के उपचार की, तो स्पष्ट रूप से जान लें बीमारी जानलेवा है और इलाज के लिए समय बहुत ही कम मिलता है। कभी कभी 24 घंटे से पहले ही पशु की मृत्यु हो जाती है। अतः बिना समय गवाए तुरंत योग्य पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशु का इलाज कराएं। जहां तक बीमारी से बचाव की बात है, इस बारे में एक बात सभी जानते हैं, इलाज से बचाव हमेशा बेहतर और सस्ता होता है। इस बीमारी में मृत्यु दर 50 से 100% तक है। बीमारी गर्म एवं नम वातावरण में पशुओं को जल्दी चपेट में लेती है, अतः यह ध्यान रखना

0: जरूरी है कि पशु बाड़ा साफ सुथरा हो एवं हवादार हो, यानी बाड़े में हवा का आवागमन बहुत अच्छा हो। पशु को नियमित रूप से संतुलित आहार खिलाएं, समय समय पर कृमिनाशक दवा यानी हर 6 माह पर पेट के कीड़ों की दवा बदल बदल कर देते रहें। गर्भित पशुओं को गर्भावस्था में सुरक्षित पेट के कीड़ों की दवा जैसे फेनबेंडाजोल ही दें। यदि पशु को बीमारी हो गई है तो इसे तुरंत दूसरे पशुओं से अलग करें और उसका शीघ्र उपचार कराएं। यदि इस बीमारी से किसी पशु की मृत्यु हो जाए तो मृत पशु को गड्ढे में नमक व चूना डालकर दफनाएं और दफनाने की जगह पशु बाड़े से काफी दूर हो, क्योंकि बीमारी के जीवाणु 24 घंटे तक वातावरण में सक्रिय रहते हैं जो आसपास के पशुओं को बीमार कर सकते हैं। मृत पशु के बाड़े को पानी से धुलाई करने के बाद बाड़े में 70% इथेनॉल या 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव करें। इससे बीमारी के फैलाव को रोकने में मदद मिलती है। जैसा कि हमारे सभी पशुपालक भाई जानते हैं, किसी भी बीमारी से बचाव के लिए सबसे कारगर हथियार होता है उस बीमारी का टीका। इस बीमारी के टीकाकरण का सही समय होता है बरसात से पहले, अर्थात जून का महीना। यह टीका 4 माह से बड़े सभी पशुओं को अवश्य लगवाएं। 8 माह से अधिक गाभिन पशु को टीका उस पशु के ब्याने के बाद लगवाएं। यदि पशुपालक अभी तक अपने पशुओं को टीका नहीं लगवा सके हैं तो अवश्य लगवा लें। एक जरूरी बात और कि जब भी पशुओं का टीकाकरण कराएं तो टीके से लगभग 1 सप्ताह पहले कृमिनाशक दवा जरूर दें। इससे टीके का प्रभाव बेहतर होता है। यदि पशु को कहीं दूर से खरीद कर ला रहे हैं तो टीकाकरण अवश्य करवा कर लाएं। यह बीमारी कभी कभी सर्दियों में भी हो जाती है। ऐसी स्थिति में अधिक नमी वाले क्षेत्रों में जाड़े के मौसम में भी इस बीमारी का टीकाकरण करवाना जरूरी है। छोटे पशु अर्थात भेड़, बकरी, सुअर में इस बीमारी के बारे में बात करें तो इनमें यह बीमारी बहुत कम पाई जाती है। यदि बीमारी इन पशुओं में हो जाती है तो जानलेवा ही होती है। लक्षण, कारण एवं बचाव गाय भैंस की तरह ही है। सुअरों में बड़े पशुओं के समान अन्य लक्षणों के साथ साथ कभी कभी गर्दन पीछे की तरफ इठ जाती है और चारों पैर ढीले पड़ जाते हैं, अर्थात पशु लुंजपुंज हो जाता है।
1: तो भैया बहनों, अभी हमने सुना गलघोटू रोग के बारे में और ये भी जाना इसका उपचार कैसे कर सकते हैं। तो भाई, हम तो ये चाहेंगे आपके पशु हमेशा स्वस्थ रहे, वो कभी भी बीमार ना पड़े, लेकिन सावधानी ज़रूरी है। और अगर बीमार पड़ भी जाते हैं तो अगर आप उन्हें सही उपचार दे देते हैं तो हमारे पशु फिर स्वस्थ होकर मुस्कुराते हैं और हम भी मुस्कुराते हैं। आप यूं ही मुस्कुराते रहिए, हम जल्दी से आते एक छोटा सा विराम लेकर।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: भैया बहनों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्रामीलोक, आपकी बहन सोमा जैन के संग। आज कार्यक्रम में हमने बात करी अपनी गाय की, अपनी नंद बाबा के मिशन की। जब हम नंद बाबा का नाम लेते हैं ना, तो हमारे मन में सीधे ब्रज क्षेत्र का नाम आता है, कान्हा की नगरी, जहाँ की माटी का कण कण चंदन है। अभी महीना चल रहा है जुलाई का, यानी अषाढ़ का अंत और हमारे सावन की आहट, रिमझिम फुहारों का मौसम, जब चारों तरफ हरियाली की चादर बिछ जाती है। पर मेरे मन में एक सवाल है, क्या आज के सावन में हमें पुराना वाला गांव दिखता है क्या? सवाल है कि कहाँ खो गई हमारी पुरानी परंपराएं, जो कभी हमारे ब्रज की आन बान शान हुआ करती थी। आज से कुछ साल पहले तक इस समय गांव के बाहर बागों में पेड़ों पर मोटे मोटे रस्से डालकर झूले पड़ जाते थे। ससुराल से आई

हमारी बेटियों के लिए सिंधारा आता था और चार बहनें मिलकर झूला झूलती थी, तीज के गीत गाती, लोक गीतों की वो माला कोयल की कूक को भी फीका कर देती। लेकिन आज गांव के बाग सूने पड़े हैं, हमारे बच्चे मोबाइल स्क्रीन में खो गए हैं, उन्हें झूला झूलने की उमंग नहीं है, लोक गीतों का ज्ञान नहीं है। धीरे धीरे हम अपनी इस खूबसूरत लोक धरोहर को भूलते जा रहे हैं। सवाल ये है कि अब हमारे आंगन में पेड़ भी तो गायब हो रहे हैं, तो झूले पड़े किस पर? इसलिए भैया बहनों, आज इस चौपाल पर वादा करते हैं कि हम नंद बाबा दुग्ध मिशन से जुड़कर अपनी आय तो बढ़ाएंगे ही, साथ ही आर्थिक रूप से मजबूत बनकर अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर को भी मरने नहीं देंगे। इस बार अपने पुराने लोकगीतों को फिर से गुनगुनाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे और अपने आने वाली पीढ़ी को मोबाइल से निकालकर अपनी इस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ेंगे, है ना? और ये लोकगीतों की मिठास को आओ अब अनुभव करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

तो भाई बात सावन की है तो सावन के महीना आने वाला है और रिमझिम बहारें तो आ ही गई हैं, तो ऐसे में मौसम की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मौसम की जब जानकारी होती है तो आप पूरा अपना दिन उसके अनुसार चल सकते हैं। तो आइए अब आपको मौसम की जानकारी दे देते हैं। तो अभी मानसून सक्रिय रहने की संभावना है, दिन भर बादल छाए रह सकते हैं कल भी, और कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। अधिकतम तापमान

45 से 35 से न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बारिश के कारण उमस से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन फिसलन और जल भराव वाले स्थानों पर सावधानी बरतें। किसान भैया बहनों, मौसम को ध्यान में रखते हुए खेती बाड़ी के कार्यों की योजना बनाएं, और यदि तेज बारिश या बिजली चमकने लगे तो सुरक्षित स्थान पर चले जाए। भाई, आप सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें, और आपकी जो फसल है वो यूं ही लहराती रहे, आपके पशु स्वस्थ रहें, ऐसी ईश्वर से हमारी हमेशा से कामना रहती है। इन्हीं विचारों के साथ, इन्हीं बातों के साथ आज कार्यक्रम में आपसे विदा लेने का समय आ चला है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वीकार करें सोमा जैन की। राम राम।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण लोक, हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं एक और कार्यक्रम, इसका नाम है मजदूर मंडल।

कार्यक्रम मजदूर मंडल सुनने वाले सभी श्रमिक भाई बहनों को अंजू बाला का नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम मजदूर मंडल में। और बताएं साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा है अच्छे होंगे और कार्यक्रम सुनते रहेंगे, इससे जुड़े रहेंगे तो और भी बेहतर महसूस करेंगे। भाई, जब कार्यक्रम आप मजदूर भाई बहनों के लिए है तो क्यों ना पहले आपके जीवन संघर्ष और सच्चाई की बात की जाए। जब भी इस बारे में बात करनी होती है तो मुझे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो महान कवि थे, उनकी कविताओं में समाज का सजीव चित्रण देखने को मिलता है। उनकी कविता वह तोड़ती पत्थर याद आ जाती है, जिसमें उन्होंने एक महिला श्रमिक के संघर्ष को दर्शाया है। सच कहें तो अल्लड़ उम्र में हमें भी ऐसी कविताएं उबाऊ लगती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे हर चीज़ का महत्व समझ आ गया है। चाहे आप यूं कह लें कि आटे दाल का भाव पता चल गया है, जिसे अपने बड़ों से सुनकर ही हम बड़े हुए हैं। अब जब एक एक पैसा कमाने के पीछे की मेहनत समझ में आई है तो सभी संघर्ष करने वाले बहुत अपने लगने लगे हैं। हम उन सब के भाव समझने लगे हैं और ये अच्छा ही है, इसीलिए हम सबका सम्मान कर पाते हैं। किसी को छोटा बड़ा नहीं बल्कि एक समान समझते हैं, क्योंकि हर किसी का महत्व है, हर कोई समाज की एक कड़ी है। कहते भी है ना, जहाँ काम आए सुई, का करी सकत तलवार। बड़े बड़े मिल मालिकों, उद्योगपतियों को मजदूर की ज़रूरत है, क्योंकि जो श्रमिक कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। फिर भी समाज में आज भी भेड़ बकरियों की तरह श्रमिकों की मंडी लगती है, जहाँ से लोग अपने काम और पैसों के हिसाब से मजदूरों को चुनकर ले जाते हैं, और जिसे आधे दिन तक कोई काम नहीं मिलता वो खाली हाथ घर लौट जाता है। हमारे देश के निर्माणकर्ताओं का ये हाल देखकर दुख होता है। उनके संघर्ष और सच्चाई को बयान करने के लिए हमारे सभी शब्द नतमस्तक हो गए हैं। कैसे कहें उनकी व्यथा, जिनके छोटे छोटे बच्चे कंक्रीट पर सो जाते हैं, अपने सामने देखते हैं तो दिल दुखता है। माँ सिर पर ईंटें ढो रही है, माँ की साड़ी से लिपट कर बच्चा रो रहा है, पर माँ उसे कैसे गोद ले, वो ईंटें संभाले या बच्चे को चुप कराए। यानी इतनी बड़ी बड़ी इमारतों के निर्माण के समय श्रमिकों के परिवार या बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देता। महिला श्रमिकों की तो और

भी दयनीय स्थिति है। शौच के लिए कहाँ जाएं, स्नान के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं होती, छोटी सी झोंपड़ी में रहना पड़ता है, तेज हवा और बारिश के समय चूल्हा कहाँ जलाएं, साफ पानी भी नहीं मिलता तो बच्चों के पालन पोषण और शिक्षा की कौन सोचेगा। इस पर उनसे ओवर टाइम करवाया जाता है, फिर उसका पैसा मिले ना मिले पता नहीं। ये हम सभी जानते हैं कि हमारे देश से श्रमिकों को काम के लिए बाहर जाना पड़ता है। परिवार की दूरी तो वो सहन कर भी लें, लेकिन छोटे छोटे कमरों में जब पैर सीधे करके सोने की जगह भी नसीब नहीं होती तो श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए क्या ही कहें। उस पर भी पूरी मजदूरी नहीं मिलती, वो पढ़े लिखे ना होने के कारण इन्हें खूब बेवकूफ़ बनाया जाता है। बस साथियों, और नहीं बोल पाएंगे हम इनके संघर्ष और सच्चाई पर, हमारा गला भर आया है। लेकिन समाज को हम ये ज़रूर कहेंगे कि हमारी तमाम समस्याएं हल करने वाले हमारे श्रमिक भाई बहनों का ये हाल क्यों है, क्या हम सब मिलकर कुछ नहीं कर सकते इनके लिए। आखिर ये भी इंसान हैं, इनके भी कुछ अधिकार हैं, इन्हें भी खुद के जीवन को बेहतर बनाने का हक है। छोड़िए इन्हें दबाना धमकाना, इन श्रमिक साथियों का सम्मान कीजिए। अगर आपके घर में ये काम कर रहे हों तो दो बात कीजिए इनसे मुस्कुराकर, कुछ चाय पानी पिलाइए, खुद कहिए भैया थोड़ा सुस्ता लो, फिर कर लेना बाकी काम, फिर देखिए कैसी चमक आ जाती है इनकी आंखों में, और फिर ये प्रेम से दो काम खुद ही ज़्यादा करके जाएंगे। सच में साथियों, मीठे बोलों में बहुत शक्ति होती है, आप आजमा कर देख लीजिए।

0: साथियों, गीत से पहले हम श्रमिकों के संघर्ष पर चर्चा कर रहे थे, तो अपने श्रमिक भाई बहनों को हम यही कहना चाहते हैं कि आप जागरूक बनिए और आपके मन में कोई भी बात है तो पूछिए, उससे कुछ तो हल निकलेगा। तो चलिए अब एक सवाल हम भी पूछ लें जो नई खोजों से संबंधित है कि 3D बायो प्रिंटिंग क्या है। ये आपको कठिन लग सकता है, अगर उत्तर समझ आ जाए तो ठीक, वरना हम है ना बताने के लिए। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन से तो माहौल ही खराब होएगा ना, समझे ना भैया। जिंदगी एक बार मिली है, खुशियाँ बटोरो, दूसरों के दिल में जगह बनाओ, अपना व्यवहार अच्छा रखो, ऐसा तभी होगा ना। वरना लड़ाई झगड़े से तो हर किसी के मन पर गलत असर ही होगा, और अगर झगड़ा बढ़ जाए तो गुस्से में ना जाने क्या क्या कर बैठे कोई, फिर क्या घर क्या बाहर, और घर में हिंसा मतलब पूरे परिवार की बर्बादी। ऐसा माहौल मत बनने दीजिए साथियों। जरा सुनिए वार्ता में घरेलू हिंसा का परिवार पर प्रभाव विषय पर, और वार्ताकार हैं श्रीमती माला गुप्ता।
1: वर्तमान समय में एक ओर आधुनिकता एवं सामाजिक विकास व विकसित सभ्यता की बातें कही जा रही हैं, वहीं बाजारवाद, संकीर्ण मानसिकता, पुरुष प्रधानता, दहेज लोलुपता एवं वैचारिक निर्धनता के कारण घरेलू हिंसा की घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं। एक आंकड़े के अनुसार पूरी दुनिया में 20 से 25% महिलाएं

घरेलू हिंसा से प्रताड़ित हैं। घरेलू हिंसा का संबंध परिवार में महिलाओं, बुजुर्ग व नादान बच्चों पर किया जाने वाला शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न है। यह जघन्य अपराध घर की निजता में, घर की चारदीवारी के अंदर ही घर के सदस्यों, विशेष रूप से महिलाओं पर किए जाते हैं। दहेज हत्या, पत्नी को पीटना, विधवा व बुजुर्ग लोगों पर अत्याचार, यौन हिंसा, घर के अन्य पुरुषों व महिलाओं द्वारा बेटी या बेटे के साथ हिंसक दुर्व्यवहार सभी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं। पितृसत्तात्मक समाज में मातृशक्ति की बातें तो बहुत की जाती हैं, लेकिन वास्तव में महिलाओं को अपने विचार रखने या अपने हित में कुछ बोलने की पाबंदी है। ऐसी हालत में उनके साथ हिंसक व्यवहार भी हो तो उनकी जिंदगी भय व डर के वातावरण में ही गुजरेगी। भारत में नारी ही शक्ति है, नारी ही दुर्गा है, नारी ही देवी है, नारी ही पूज्या है, परंतु इस समाज के अपमान, तिरस्कार व उत्पीड़न की नारी ही भोग्या है। हास्यास्पद बात यह है कि हमारे समाज में नारी को देवी माना जाता है, परंतु उसे पत्थर की मूर्ति के समान भावनाओं और इच्छाओं से विहीन समझा गया है। यदि कोई स्त्री इस दृष्टिकोण के विपरीत अपना आत्मनिर्भर व्यक्तित्व विकसित करना चाहे तो न केवल समाज में वरन परिवार में भी कहीं पुरुष तो कहीं अन्य महिला द्वारा उसका उत्पीड़न करना सामान्य बात हो गई है। ऐसी स्त्रियों को निर्लज, बेहया आदि अलंकरणों से लाद कर परिवार में ही उनका शारीरिक व मानसिक शोषण किया जाता है। पुत्रियों को हीन भावना से ग्रसित करके अंकुश लगाए जाते हैं। यहाँ तक कि सुशिक्षित व स्वावलंबी कामकाजी महिलाओं को भी परिवार में लांछन सुनने पड़ते हैं। परिणाम स्वरूप विभिन्न भारतीय समुदाय की महिलाएं स्वयं को समाज का प्राकृतिक शिकार मानती हैं व हीन भावना के कारण वे हिंसा को अपना भाग्य समझकर उसके आगे समर्पण कर देती हैं। दुख की बात है कि पिता के परिवार या पति के परिवार में ऐसी मारपीट का जिक्र करने में इन महिलाओं को लज्जा अनुभव होती है। अगर शिकायत करें भी तो उन्हें ही दोषी मानकर चुप रहने की सलाह दी जाती है। हमारे समाज में कहीं पिता व भाई और कहीं पति व सास दोनों ही परिवारों में महिला की पिटाई को निरपेक्ष अधिकार माना जाता है। ऐसी सामाजिक स्थिति में महिला बहुत असहाय अनुभव करती है, क्योंकि वह जहां कहीं भी शिकायत करे, चाहे सगे संबंधी हो, चाहे पड़ोसी, पुलिस या वकील, सभी उसको परिस्थिति से समझौता करने की सलाह देते हैं व परिवार की इज्जत की बात करते हैं। और अगर छोटे बच्चे घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं तो अपने से बड़ों की मारपीट या यौन हिंसा से इतने भयभीत हो जाते हैं कि बोल भी नहीं सकते, अन्यथा उन्हें परिवार के लोगों का और अधिक अत्याचार सहना पड़ सकता है। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है, जिस पर संस्कृति का संपूर्ण ढांचा स्थिर है। परिवार नारी व पुरुष के योग से बनता है, जिसमें नारी का स्थान प्रमुख है, क्योंकि संतान धारण करने से लेकर उसे जन्म देने व पालन करने का सारा दायित्व नारी ही उठाती है। यही नहीं, घर बसाना, उसे चलाना, उसकी भावात्मक व्यवस्था रखना नारी द्वारा ही संभव है। यदि वह अपने इस दायित्व से हाथ खींच ले तो यह व्यवस्थित दिखाई देने वाला संपूर्ण समाज अस्त व्यस्त हो जाएगा। ऐसे में परिवार जैसी महत्वपूर्ण संस्था की निर्मात्री व संचालिका नारी का तिरस्कार, अपमान, उपेक्षा या उसकी प्रताड़ना, वो भी अपने परिवार में कहाँ तक उचित है। अरस्तु ने सामाजिक व्यवस्था पर विचार करते हुए कहा है कि किसी भी राष्ट्र या समाज की समृद्धि वहां की नारी के प्रति दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। जिन समाजों में नारी का सम्मान है वह समाज समुन्नत होकर आगे बढ़े हैं, परंतु जहां इसके विपरीत हो, अर्थात परिवार में ही माँ अथवा पत्नी, बहन या बेटी का स्वयं विकास न हुआ हो, जो स्वयं घर की चारदीवारी में घुटकर मर रही हो, जिसे रात दिन भय, कुंठा, प्रताड़ना के दौर से गुजरना पड़ रहा हो, वह विकासशील सुसंस्कृत संतान कैसे दे सकती है। जिसकी अपनी योग्यताएं दबा दी गई हो, व्यक्तित्व खो गया हो, वह एक अच्छे परिवार का निर्माण कैसे कर सकती है। आज हमारे समाज में कभी सम्मान तो कभी मर्यादा के नाम पर लड़कियों व स्त्रियों को परिवार या समाज में अपमानित और प्रताड़ित किया जाता है। घर के पुरुष अहंकार के दंभ में पारिवारिक मान मर्यादा या ऑनर किलिंग के नाम पर घर की बेटियों या छोटे बच्चों से गलत व्यवहार व उत्पीड़न करते हैं। पुरुष सदस्य मद्यपान करके नशे में अपनी पत्नी व बच्चों से मारपीट व हिंसक व्यवहार करते हैं। जब परिवार में बच्चे व महिला परिवार के अन्य सदस्यों के क्रूर व अमानवीय व्यवहार से डरे व सहमे हुए होंगे तो उनका

0: विकास कैसे होगा? देश में प्रत्येक घंटे में पतियों या सगे संबंधियों द्वारा महिलाओं को मारने पीटने की 7 घटनाएं दर्ज होती हैं, और कई ऐसी घटनाएं तो दर्ज ही नहीं होती। और इसका मूल कारण है पुरुष व परिवार के अन्य लोगों की वर्चस्व की भावना, जो हर कीमत पर अपना आधिपत्य रखना चाहते हैं। ऐसी दशा में घरेलू हिंसा से पीड़ित परिवार के लोगों से यह आशा करें कि वे स्वस्थ मानसिकता में परिवार का वातावरण परिष्कृत करेंगे तथा महिला अपने बच्चों को योग्य व संस्कारित बनाएगी, तो ऐसे सपने देखना व्यर्थ है, क्योंकि जो स्वयं डरा हुआ, सहमा हुआ व प्रताड़ित हो, वह दूसरे को कैसे सुसंस्कृत बना पाएगा? यह सत्य है कि घरेलू हिंसा के कारण परिवारों में बिखराव आ रहा है। महिलाओं के अधिकारों के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में लागू हुआ व महिला घरेलू हिंसा निवारण कानून अक्टूबर 2006 से अस्तित्व में आ गया, लेकिन केवल कानून बनाकर घरेलू हिंसा को रोका नहीं जा सकता। इसके लिए हमें अपनी सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक नीति में गुणात्मक परिवर्तन करना होगा। यह सार्वभौमिक तथ्य है कि कोई भी कानून सहृदयता, सौम्यता व दयालुता के भाव को उत्पन्न नहीं कर सकता। ये गुण तो अच्छी परवरिश, मूल्य आधारित शिक्षा और हर एक के लिए संभाव वाली दृष्टि से ही उत्पन्न होते हैं। परिवार के प्रत्येक सदस्य, चाहे वे बुजुर्ग हों या बच्चे, माँ हों या पत्नी, बहन हों या बेटी, हमें सबके प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। अतः राष्ट्र की प्रगति व समाज के विकास के लिए परिवार का उत्थान आवश्यक है, और घरेलू हिंसा के भयानक रौद्र रूप को समाप्त करके ही परिवार को समृद्ध, उन्नत और विकासशील बनाया जा सकता है।
1: तो साथियों, जाना आपने श्रीमती माला गुप्ता से कि घरेलू हिंसा का परिवार पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, तरह तरह की चालों से, षड्यंत्रों से आपका जीवन भी बर्बाद होगा। ये चालें शतरंज में ही अच्छी लगती हैं, वहाँ आप कम से कम जीत तो जाओगे ना, खुशी मिलेगी सो अलग, क्योंकि खेल हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं जो हमारे साथ बचपन से ही जुड़े रहते हैं। सभी को खेल पसंद होते हैं। एक छोटा बच्चा खेल खेल में ही बहुत कुछ सीखता है, और बड़े होते तक उसके खेल और भी जटिल और चुनौती से भरे हो जाते हैं। श्रमिक साथियों, खेलों में बच्चों की रुचि और बढ़े और विश्व स्तर पर एकजुट होकर खेलों को बढ़ावा मिले, इसीलिए अलग अलग खेलों को बढ़ावा दिया जाता है। ऐसा ही एक रुचिपूर्ण खेल है शतरंज का खेल, जिसे पुराने समय में राजा महाराजा ही खेला करते थे, और समझा जाता था कि ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण खेल है और हर कोई इसे नहीं खेल सकता। लेकिन अब ये खेल नई ऊंचाइयों को छू रहा है। साथियों, 1996 में यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासभा की स्थापना की गई। 1999 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा भी इस खेल को मान्यता दी गई। साथियों, अब ये खेल दुनिया के हर कोने में खेला जाता है, इसीलिए स्कूलों में शतरंज प्रतियोगिताएं रखी जाती हैं। वैसे शतरंज प्रेमियों ने शतरंज क्लब भी बना रखे हैं, जहां सभी शतरंज प्रेमी मिलते हैं और बड़े ही उत्साह के साथ इस खेल को आगे बढ़ाते हैं। तो साथियों, हम सभी को भी इस खेल के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा ही मज़ेदार खेल है जिसमें दिमागी कसरत भी खूब होती है। आप घर में अपने परिवार के साथ इसे खेलिए, फिर देखिए, समय का पता ही नहीं चलेगा। तो साथियों, ज्ञान सागर का ज्ञान आपको कैसा लगा पत्र के माध्यम से बताइएगा, लेकिन पहले हमें आपको कुछ खास जानकारी भी देनी है, जिसका आपको रविवार के दिन इंतज़ार रहता है। तो नई खोजें सेगमेंट में आज हम आपको चिकित्सा से संबंधित एक खोज के बारे में बताएंगे, और वो है 3D बायो प्रिंटिंग। नहीं समझे, हम बताते हैं। इस तकनीक की सहायता से जीवित कोशिकाओं जैसी कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है, जो भविष्य में रोगों के बचाव में सहायक होंगी। इससे मानव अंग तैयार करने की तैयारी चल रही है। साथियों, ये तकनीक चिकित्सा विज्ञान में एक क्रांतिकारी बदलाव मानी जा रही है, क्योंकि इससे दवाओं के परीक्षण, रोगों के अध्ययन और भविष्य में अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में नई संभावनाएं खुल रही हैं। वैज्ञानिक सफलतापूर्वक त्वचा, हड्डी,

0: ऊतक, कॉर्निया, रक्त वाहिकाएं, उपास्थि, हृदय, यकृत और गुर्दे के छोटे ऊतकों का निर्माण कर चुके हैं। इस तकनीक के बहुत लाभ होने वाले हैं, क्योंकि अब तक दवा या टीकों का परीक्षण जानवरों पर किया जाता था, लेकिन अब इन ऊतकों पर परीक्षण करने के कारण सटीक परिणाम मिलेंगे। तो साथियों, आपको प्रश्न का उत्तर भी मिल गया, वो भी इतनी जानकारी के साथ। और अब एक छोटे से अंतराल के बाद मिलते हैं।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत।

0: बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: तो साथियों, सेहत टिप्स के बिना हमारा कार्यक्रम कैसे पूरा हो सकता है? तो चलिए, बारिश का मौसम आने वाला है। इस मौसम में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो चलिए उसको बढ़ाने के लिए हम आपको बताते हैं कुछ छोटे छोटे टिप्स। तो आप रात में कच्ची हल्दी वाला दूध ले सकते हैं। इसको रोज़ाना पीने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। और इसके साथ साथ आप अदरक, तुलसी और नींबू का सेवन कीजिए। और साथियों, जब कभी आप अपने काम के लिए जाते हैं तो अपने साथ मूंगफली और चने भी रख सकते हैं। जब भी आपको भूख लगे तो बाजार की कुछ चटर पटर खाने के बजाय आप मूंगफली और चनों का सेवन कीजिए। ये स्वास्थ्यवर्धक भी हैं। और अब सुनिए एक मधुर गीत।

0: और इसी गीत के साथ कार्यक्रम मजदूर मंडल को यहीं संपन्न करने की अंजुबाला को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस LNG की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू करने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इसी बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसे विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के उदयगिरी शक्ति और कवरत्ती युद्धपोत ने सिंगापुर के चांगी नौसैनिक अड्डे का दौरा पूरा कर लिया है। यह दौरा भारतीय नौसेना की परिचालन तैनाती का हिस्सा था। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह दौरा भारत और सिंगापुर के बीच बढ़ती समुद्री साझेदारी में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं के प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यापार, प्रवासन और अन्य नीतिगत मामलों पर मंत्रालय को सलाह देने संबंधी दावों का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये सोशल मीडिया हैंडल मंत्रालय के साथ काम करने के तरीकों पर सशुल्क सलाह के साथ साथ सत्र भी आयोजित कर रहे हैं। इकाई ने स्पष्ट किया कि इन व्यक्तियों का विदेश मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। अधिकारियों ने लोगों को मॉनसून के दौरान नदियों, जलप्रपातों और अन्य जल निकायों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज ब्राजील का सामना नॉर्वे से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात डेढ़ बजे से न्यूजर्सी में खेला जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा।

0: 10 मिनट हुए हैं। ये वक्त है कार्यक्रम व्यवधा का, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर प्रभात कुमार की वार्ता ई प्रदूषण। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: पृथ्वी व उस पर स्थित समस्त जीवधारियों को जो प्राकृतिक आवरण प्राप्त है उसे पर्यावरण कहते हैं। समय समय पर इस पर्यावरण के दूषित होने की चर्चा होती रहती है। इस प्रदूषण का ज्ञान हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों से होता है, गंध, स्वाद, रंग, ध्वनि से अथवा आंखों, त्वचा व सांस लेने में होने वाली परेशानियों से इस प्रदूषण का ज्ञान होता है। सामाजिक प्रगति के साथ कुछ ऐसे प्रदूषण भी उत्पन्न हो गए हैं जिन्हें उक्त ज्ञानेंद्रियों से परखा नहीं जा सकता। बिजली हमारे जीवन का अब आवश्यक अंग बन गई है। हमारे घरों के बाहर ट्रांसफार्मर्स लगे हैं तथा उच्च विभव की विद्युत तारों की लाइनें हमारे घरों को घेरे हुए है। इसके प्रभाव स्वरूप पर्यावरण में प्रत्यावर्ती विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिनसे ऊर्जा विकृत होती है। दूर संचार के माइक्रोवेव टावर तथा विभिन्न मोबाइल कंपनियों के टावर लगभग सभी मोहल्लों में लगे हैं। इनसे माइक्रोवेव सहित अन्य आवृत्तियों के विद्युत चुंबकीय विकिरण EMR पुंज के रूप में पर्यावरण को मिलते हैं। यहाँ तक कि हमारे घरों के कमरों की दीवारों के अंदर, छतों में तथा फर्श के नीचे भी तारों का जाल बिछा है जिनसे उत्पन्न होने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरणों से हम अनजाने में ही घिरे हैं। हम गर्व के साथ कहते हैं कि जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग मोबाइल फोन का प्रयोग करने लगा है। आखिर जेब में पड़ी ये छोटी सी चीज कैसे सजीव हो उठती है जिससे हम विश्व के एक छोर से दूसरे तक वार्ता कर सकते हैं? उत्तर है पर्यावरण में व्याप्त विद्युत चुंबकीय विकिरण EMR। डिश एंटीना से भी ऐसा कार्य होता है जिससे हमारा टीवी सजीव हो उठता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रत्येक उपकरण का संचालन कमरे के एक कोने में बैठकर ही रिमोट द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, वो भी EMR के द्वारा। स्त्रियां, युवा, बच्चे व बुजुर्ग सभी टीवी के सामने बैठकर जो घंटों कार्यक्रमों का आनंद उठाते हैं वे अनजाने में ही उससे निकलने वाली एक्स विकिरणों से लगातार प्रभावित होते रहते हैं। कंप्यूटर पर काम करने वाले भी इन विकिरणों से बचे नहीं रह सकते। साथ में अचरज में डालने वाली ब्लूटूथ तकनीक ने इन विकिरणों को कई गुना बढ़ा दिया है। जीव विज्ञान के इस सिद्धांत का प्रतिपादन होता है कि हमारे मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, हृदय एवं कोशिकाओं के कार्य लघु आवृत्ति वाले विद्युत चुंबकीय स्पंदनों के द्वारा संपादित होते हैं। शरीर के अंदर बिछे तंत्रिका तंत्र में ये स्पंदन लगातार संकेतों का परिवहन करते हैं। हृदय व मस्तिष्क के क्रमशः ECG व EEG से सभी परिचित हैं। तांत्रिकीय वैज्ञानिकों के अनुसार मस्तिष्क, हृदय व कोशिकाओं की कार्य पद्धति में विद्युत चुंबकीय संवेदनों, आवेशित आयनों, विभव नियंत्रित आयनों की धारा, आयनों द्वारा नियंत्रित शनियों का बहुत योगदान होता है। ये सब शरीर के अंदर होने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रक्रियाएं हैं। बाहरी परिवर्ती विद्युत क्षेत्र से इनकी क्रियाविद उसी प्रकार प्रभावित होती है जैसे किसी रेडियो अथवा टीवी के निकट हेयर ड्रायर, मिक्सी अथवा मोटर चलाने पर उसके द्वारा हो रहे प्रसारित कार्यक्रम में विक्षोभ, नॉइस उत्पन्न हो जाता है। एंटीना से रेडियो, टीवी या रिमोट से विभिन्न यंत्रों को हम इसलिए संचालित कर पाते हैं क्योंकि अनुनाद के सिद्धांत के अनुसार एक स्थान की ऊर्जा को दूसरे स्थान पर बिना संपर्क के भी स्थानांतरित किया जा सकता है। माइक्रोवेव की भट्टी में रखा आलू माइक्रो तरंगों की ऊर्जा का अवशोषण करके अपने अंदर के अणुओं में ऊष्मीय गति अथवा ऊष्मा संचित कर लेता है तथा शीघ्र ही आलू भुन जाता है। फिर घंटों मोबाइल फोन को कान से लगाए रखने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क व हृदय पर प्रभाव क्यों कर नहीं पड़ेगा? चाहे कितनी ही कम तीव्रता की माइक्रो तरंगे हों, लंबे समय में उनका संचित प्रभाव अवश्य ही होगा। आजकल इस प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण एवं इलेक्ट्रॉनिकी प्रदूषण जो पर्यावरण व हमारे स्वास्थ्य को दूषित करते हैं को ई प्रदूषण कहा जाता है। इटली के मीडिया ने इसे इलेक्ट्रो स्मॉग का नाम दिया है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्मॉग व फॉग से मिलकर बना है। इनके प्रमुख स्रोत हैं टीवी, DVDs, VCRs, स्टीरियो, कंप्यूटर, फैक्स मशीन, अवरक्त रिमोट नियंत्रक, वेल्डिंग, सुखाने तथा छेद करने के वैद्युत उपकरण, मोटर, उच्च विभव के धारा संवाही तार, बेतार के टेलीफोन, मोबाइल फोन, घरेलू एवं औद्योगिक विद्युत संयंत्र, सैनिक संयंत्र, विशेषकर राडार प्रतिष्ठान, मोबाइल फोन के बेस स्टेशन, ट्यूबलाइट व अन्य घरेलू वैद्युत उपकरण। आजकल मच्छर, मक्खी अथवा चूहों को घर से दूर रखने में भी विद्युत उपकरण सुलभ हैं। कीट पतंगों एवं छोटे जानवरों तो ठीक है पर मनुष्य में कितने संवेदनशील हैं ये शोध का विषय है। जीव विज्ञान की भाषा में ई प्रदूषण से फैलने वाली विषाक्तता को जीनोटॉक्सिसिटी कहा जाता है क्योंकि वाह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के दोलन न केवल कोशिकाओं को क्षति पहुंचाते हैं अपितु DNA अथवा क्रोमोसोम अणुओं में परिवर्तन करके जीन के कार्यकलापों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। फलतः जीन के गुणधर्म में परिवर्तन जिसे टेराजोनिक एवं कार्सिनोजेनिक परिवर्तन संभव है ये कैंसर को जन्म देता है। मनुष्यों में ई प्रदूषण अधिक समय संपर्क में रहने पर उत्पन्न हुए प्रभाव हैं पहले से मौजूद रोगों का बढ़ जाना,

0: अथवा ठीक न होना, थकान का बने रहना, ठीक से नींद न आना, वो जगने पर थकान बरकरार रहना, सिर में दर्द, चिड़चिड़ापन होना। कुछ लोग ई प्रदूषण के लिए अत्यंत संवेदनशील होते हैं। इनमें स्मरण शक्ति का ह्रास, प्रतिरक्षित क्षमता का ह्रास, अवसाद, दौरे एवं कैंसर के लक्षण उत्पन्न होते देखे गए हैं। अवसाद व गहरी नींद का न आना स्वयं में ही स्वास्थ्य बिगड़ने का कारण है। जिन लोगों के शयन कक्षों में पावर लाइन है, बिजली से गर्म करने वाले कंबलों अथवा गर्म पानी के गद्दों का प्रयोग किया जाता है अथवा बहुत से वैद्युत उपकरण है, यहाँ तक कि एक्सटेंशन तार, चाहे वे किसी उपकरण से जुड़े हों या न हों, पलंग के नीचे से जा रहे हों, उन व्यक्तियों में ई प्रदूषण से होने वाले दुष्परिणामों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ई प्रदूषण से कैसे बचा जाए? जहाँ तक हो सके दीवारों, छतों एवं फर्श के अंदर जाने वाले वैद्युत तारों के स्थान पर भू संपर्कित केबल का प्रयोग किया जाए। सोने के पूर्व प्रत्येक वैद्युत उपकरण को प्लग के सॉकेट से निकाल लिया जाए। पलंग को उस दीवार से दूर रखा जाए जिसके भीतर पावर लाइन है। मरीजों के लोहे के पलंग को भू संपर्कित किया जाए तथा पलंग के नीचे भू संपर्कित तालों का जाल बिछाया जाए। टीवी व मोबाइल फोन का उपयोग कम से कम किया जाए। इसके अतिरिक्त पुराने व बेकार हो चुके इलेक्ट्रॉनिक संयंत्रों का निस्तारण भी ई प्रदूषण का कारक है। इलेक्ट्रॉनिक की पुर्जे मिट्टी में मिलकर नष्ट नहीं होते, वे विषाक्तता फैलाते हैं। इंटरनेट में विभिन्न वायरस व अवांछनीय सामग्री भी ई प्रदूषण के कारक हैं। सामाजिक व वैज्ञानिक प्रगति के साथ मानव स्वास्थ्य का सामंजस्य बनाए रखने की महती आवश्यकता है।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर भरत कुमार से, डॉक्टर प्रभात कुमार से उनकी वार्ता ई प्रदूषण। इसी के साथ कार्यक्रम विविधा अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में हमारा कार्यक्रम लखनऊ के केंद्र से अनुप्रसारित होगा। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
3: बेटा
4: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे।
3: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
5: तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
2: कहाँ
5: एडमिशन कराने, खाता हुआ एक्टिव।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
8: प्लेटो का कथन है बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
9: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में हुए शामिल, कहा डबल इंजन की सरकार ने बिना भेदभाव हर वर्ग को दिया योजनाओं का लाभ। लखनऊ दौरे के दूसरे दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एनडीए के सहयोगी दलों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ की बैठक, आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर की चर्चा। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ की सहायता राशि की जारी। अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में जिला कारागार में 5 आरोपियों से फिर हुई पूछताछ, कल मंदिर ट्रस्ट की बैठक में महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर होगा फैसला। और प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत, मौसम विभाग ने 8 से 10 जुलाई के बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में वर्षा का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। जनसभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर वर्ग को बिना भेदभाव के पहुंचाया गया है और डबल इंजन सरकार विकासोन्मुखी और जन कल्याणकारी कार्य निरंतर कर रही है।
1: आज जो विकास दिखाई दे रहा है, आज जो सुरक्षा का मॉडल है, आज जो सुशासन का मॉडल है, और जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार समाज के प्रत्येक तबके के लिए, क्या वो युवा हो, क्या वह आधी आबादी बहन और बेटियों के स्वावलंबन और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, क्या वह अन्नदाता किसान हो या गरीबों तक शासन की योजना का लाभ बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाने का कार्य बिना रुके हुए, बिना डिगे हुए, बिना झुके हुए, बिना थके हुए निरंतर पहुंचाने का कार्य कर रही है।
0: इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ये खूबी है कि यहाँ जो कार्यकर्ता बूथ पर काम करता है, जो शक्ति केंद्र में काम करता है, वो पार्टी के शीर्ष स्थान पर पहुंच सकता है। श्री नवीन ने कहा कि विगत समय में जिन विषयों को लेकर पूरी दुनिया में अस्थिरता रही, फिर भी हमारा नेतृत्व सजग रूप से जनता की चिंता करता रहा।
2: पिछले समय में जिन विषयों को लेकर पूरे विश्व में अस्थिरता रही, फिर भी हमारा नेतृत्व सजग रूप से हमारे लोगों की चिंता करता रहा। वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भी हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता को कोई तकलीफ नहीं होने दिया। हमने ये चिंता की कि विश्व में कोई भी देश किसी भी प्रकार से काम करे, भारत की राजनीतिक और डिप्लोमेटिक राजनीति हमेशा सबको लेकर साथ चलने की रही।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लखनऊ में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पूर्व अध्यक्षों और एनडीए के सहयोगी दलों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। उन्होंने दावा किया कि 2027 में प्रचंड बहुमत से लगातार तीसरी बार सरकार बनेगी। मीडिया से बात करते हुए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने सेवा और विकास के एजेंडे पर जोर दिया। सहयोगी दलों की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए अपना दल एसके उपाध्यक्ष और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने बताया कि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ गठबंधन सहयोगियों के बीच समन्वय को लेकर खास तौर पर बात की गई।
3: विशेष रूप से जो समन्वय का कार्य कैसे, उस पर चर्चा हुई है। और मैं इतना जरूर कहूंगा आपको कि एनडीए के इस जीत में अपना दल ने हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और आगे भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी।
0: केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण BBGRAMJI अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता जताई है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने कहा कि जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो, ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के सभी गांवों को समृद्ध और विकसित बनाना है।
4: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में

0: तीन साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, एक साल दो साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि, 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर चढ़ावा मामले में जांच तेज हो गई है। मामले के विवेचक ने आज जिला कारागार में 8 आरोपियों में से 5 से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। पेश है एक रिपोर्ट।
2: राम मंदिर दान घोटाला मामले में जांच लगातार आगे बढ़ रही है। मामले में सीओ अयोध्या और विवेचक आशुतोष तिवारी जिला कारागार पहुंचे, जहां उन्होंने 5 आरोपियों लोकेश मिश्रा, रामशंकर यादव टिन्नू, मनीष यादव, करुणेश पांडे और अनुकल्प मिश्रा से विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ की। वहीं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कल होने वाली अहम बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बैठक में दान घोटाला प्रकरण के साथ चंपत राय और अनिल मिश्रा के त्याग पत्र पर विचार किया जाएगा। ट्रस्ट के सदस्य राम मंदिर व्यवस्था सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन कर आगे की रणनीति तय करेंगे। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
1: गन्ना किसानों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से कल से 11 जुलाई तक प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियों द्वारा विशेष सुरक्षा जागरूकता और नामांकन महाअभियान संचालित किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियां इस अभियान की मुख्य नायक के रूप में कार्य करेंगी। समितियां अब सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रचार प्रसार, जागरूकता, नामांकन तथा लाभार्थियों तक योजनाओं की पहुंच में अग्रणी भूमिका निभाएंगी। समितियां केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने वाली प्रभावी संस्थागत व्यवस्था के रूप में स्थापित होंगी। अभियान के माध्यम से किसानों और उनके परिवारों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना सहित केंद्र सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ते हुए आर्थिक सुरक्षा, वित्तीय समावेशन और भविष्य की सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित की जाएगी। अभियान के दौरान सभी समिति परिसरों में बैंकों, इफको, चीनी मिलों और अन्य सहयोगी संस्थाओं के संयुक्त सहयोग से विशेष सहायता और नामांकन काउंटर स्थापित किए जाएंगे। ये अभियान विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को गति देने के साथ साथ किसानों के समग्र कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। समाचार कक्ष से फजल इनाम।
1: उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में समापन हो गया। इस अवसर पर प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और यूपी के आमों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि प्रदेश का आम वर्तमान में 30 से अधिक देशों में निर्यात किया जा रहा है और जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के शुरू होने से निर्यात को और बढ़ावा मिलेगा। श्री सिंह ने समापन समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया और महोत्सव में 1,501 प्रतिभागियों ने 3,032 आम के नमूने प्रदर्शित किए। विभिन्न श्रेणियों में 147 पुरस्कार प्रदान किए गए। केंद्र सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। प्रदेश में मॉनसून आने के बाद से बारिश का सिलसिला जारी है। आज राजधानी लखनऊ समेत गाजियाबाद, हापुड़, जालौन, प्रयागराज, बलिया और जौनपुर सहित 10 शहरों में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के अधिकांश हिस्सों में आगामी 8 से 10 जुलाई के बीच गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में हुए शामिल। कहा, डबल इंजन की सरकार ने बिना भेदभाव हर वर्ग को दिया योजनाओं का लाभ। लखनऊ दौरे के दूसरे दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एनडीए के सहयोगी दलों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ की बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर की चर्चा। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ की सहायता।

0: राशि की जारी। अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में जिला कारागार में 5 आरोपियों से फिर हुई पूछताछ। कल मंदिर ट्रस्ट की बैठक में महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर होगा फैसला। और प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने 8 से 10 जुलाई के बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में वर्षा का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
2: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
1: सुगंध, क्या हो रहा है?
2: बिल हो रहा है।
1: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
3: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। थोड़ी देर में आप सुनेंगे ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जाने वाले फाइनल T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
5: क्रिकेटर वैशाली, यू ऑल्सो हैव अ लॉट टू टॉक, राइट?
6: Yeah,
5: जी, बहुत सारी बातें आपसे स्टूडियो में करने वाले हैं। स्वागत है आपका। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट बाय एनी मीन्स मोना पार्था सारथी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वेलकम अगेन। वी हैव अ लॉट मोर टू टॉक अबाउट गेम एंड व्हाट एग्जैक्टली आर द निटिग्रिटीज एंड यू आर द बेस्ट पर्सन टू टॉक अबाउट इट।
6: थैंक यू।
7: बहुत बहुत स्वागत है चेतन भाई, आप ही से शुरू करते हैं। वर्ल्ड कप का एक और फाइनल लॉर्ड्स की बात करते हैं। 1983 वर्ल्ड कप भूलता नहीं, इसलिए जिक्र कर रहा हूं, लेकिन आज का मैच कैसे देखते हैं आप?
8: देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जब हम बात करते हैं तो आप रिवलरी की आप मतलब जितनी बड़ी बात कर लें उससे कम होगा। इंडिया पाकिस्तान की आप बात करते हैं, उधर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बात करते हैं, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि इंग्लैंड अपने घर में कोई वर्ल्ड कप का मैच अभी तक हारा नहीं है। और ये एक ऐसा ग्राउंड है कि जहां पर मैच अगर 3 मैचेस खेले गए हैं लॉर्ड्स में, 2 टीमों ने चेस करते हुए मैच जीता और 1 टीम ने डिफेंड किया है, और वो टीम कौन सी है? इंग्लैंड। तो बहुत चीजें हैं जो इंग्लैंड के पक्ष में जाती हैं, आप उसको राइट ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन दोनों अनबीटन साइड्स हैं यहाँ हमारे सामने। जो अच्छी क्रिकेट आज खेलेगा ये ट्रॉफी उठाकर लेकर जाएगा।
5: वैशाली, बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना जो जब भी हम क्रिकेट की बात करते हैं तो उनके बारे में बात करना वाकई जरूरी हो जाता है। सबसे पहली बात है, जैसे चेतन ने कहा, बहुत ही स्ट्रांग टीम है, एक भी मैच अभी तक नहीं हारी है। हमेशा हम बात करते हैं कि कौन सी टीम भारी रहने वाली है दूसरी टीम के ऊपर। ऑब्वियसली मुनीश उसके बारे में और भी बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको लगता है हमारी दोनों टीम्स जो हैं उनके कैप्टन पहुंच चुके हैं ग्राउंड में, देखते हैं टॉस में क्या हो रहा है।
9: Defoes, I have match referee G.S. Lakshmi alongside our captains in Nat Sivabrunt and Sophie Molyneux from England and Australia respectively. Nat, you have the coin.
10: Heads.
11: It's heads.
10: We'll have a bowl.
9: Heads it is. Australia has won the coin toss. So what are Australia going to do?
10: We're going to have a bowl. Beautiful day out here, and yeah, we want to get out here, have a run around and hopefully put some pressure on them early.
9: It's a very Australian way sometimes to set and put runs on the board. Did you have a big conversation about what to do first?
10: Yeah, there's been a lot of discussion around it, but at the end of the day, you sort of have to go with your gut. I don't think the pitch will change too much.
9: At the start of the tournament, it was a Phoebe Litchfield watch. It turned into an Elise Perry watch with the quad awareness. Is Perry playing any other changes to the side?
10: We've got no changes. So, yeah, Pez pulled up really well from her training yesterday, and, very excited to come out here.
9: I read the other day that your childhood dream was to come to this ground with your dad and watch a test match. You're now here. I know he's in the stand as well. And you're captaining Australia. That's good to beat that, doesn't it?
10: Oh, it sounds pretty wild, to be fair. But, special day.
9: And 5-day gap. Did you sort of just allow the players a little bit of time off just to freshen up the mind a bit?
10: Yeah, the girls got a couple of days off. Went across town from south of London to north and, started training over the last couple of days. So we're in a really good place.
9: We'll enjoy everything that is a final.
10: Thanks, go Josie.
9: Matt, if it had fallen your way, would have things been different?
12: I was going to bowl as well, actually.
13: मीडियम वेव 196 मीटर 31,530 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाश

आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मेरी माटी मेरा देश, ये कार्यक्रम लेकर आ गई है आपकी रेडियो हम सफर मुकुल तिवारी। तो कैसे हैं आप सभी श्रोताओं? गर्मी की छुट्टियां तो अब खत्म हो गई हैं, लेकिन मन अभी तक उदास है ना? अरे पर क्यों? जो किया, जो भी एंजॉय किया, उसे याद कीजिए, उसके लिए खुश होइए। एक एक दिन खुल के जिया ना आपने, यादें बनाई है ना, कुछ सीखा है ना, तो बस उन्हें याद कीजिए और खुश होइए। श्रोता, ऐसा नहीं है कि छुट्टियां दोबारा नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी, पर ये अनुभव जो आपने इस बार लिया ना, वो दोबारा मिलेगा कि नहीं, इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि समय तो बदलता रहता है। श्रोताओं, कभी आपने गौर किया है कि जिंदगी में कुछ खुशबुएं ऐसी होती हैं जो सालों बाद भी हमें एक पल में अतीत में पहुंचा देती हैं? माँ के हाथ के खाने की खुशबू जाने कितनी कितनी दूर से हमें खींच लाती है। खाना तो हर कोई बना लेता है, पर एक खास स्वाद, एक खास खुशबू जो किसी खास से ही जुड़ी होती है, वो उसका तो क्या ही कहना है ना। वो दादी की अलमारी की या बक्से में रखी हुई चीजों की खुशबू, वो दादाजी की किताबें और चिट्ठियां, वो अपने ही बचपन के किताबों की खुशबू, या ये वो खुशबुएं हैं जो सांसों में इस कदर बसी हुई हैं श्रोताओं, जो एक पल में दोबारा उन गलियों में हमें ले जाती हैं जिनमें बचपन में हम गुजरे थे, हम खेले थे, हम गुनगुनाए थे, हम मुस्कुराए थे। दोस्तों, इंसान चाहे कितना भी आगे निकल जाए, कितनी भी बुलंदियों को हासिल कर ले, लेकिन उसकी कुछ जड़ें हमेशा वहीं रह जाती हैं जहाँ से उसकी कहानी शुरू हुई थी। और यही वजह है कि जब कोई व्यक्ति वर्षों बाद अपने गांव को लौटता है, तो सबसे पहले वो अपने घर नहीं, अपनी ज़मीन को ढूंढता है। आखिर ऐसा क्या है उस मिट्टी में? बताएंगे, लेकिन इस गीत के बाद जो कुछ खास संदेश दे रहा है।

हाँ जी श्रोता, हम बात कर रहे थे उस मिट्टी की जिससे हमें प्यार है, तो क्या वो सिर्फ धूल का एक छोटा सा कण है? नहीं, उसमें छिपी होती है हमारी यादें, हमारे संस्कार, हमारी पहचान और हमारा पूरा अस्तित्व। श्रोता, भारत जैसे देश में मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये इतिहास है, ये विरासत है, ये संस्कृति है, ये उन करोड़ों लोगों की कहानी है जिन्होंने इस धरती को अपने कर्म से, अपने प्रेम से और अपने बलिदान से सींचा है। जब हम भारत की मिट्टी की बात करते हैं श्रोताओं, तो उसके साथ अपने आप जुड़ जाती है हमारी संस्कृति, हमारे लोकगीत, हमारे मेले और त्योहार, हमारी परंपराएं और हमारी वो अनमोल विरासत जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती चली जा रही है। श्रोताओं, भारत की संस्कृति तो वर्षों पुरानी है, लेकिन इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि समय बदलता गया, दुनिया बदलती गई, लेकिन हमारी मिट्टी की खुशबू ज्यों की त्यों बनी रही। हमारे गांव में आज भी सुबह मंदिर की घंटियों से होती है, कहीं गुरुद्वारे से गुणवाणी सुनाई देती है, तो कहीं मस्जिद से अजान की आवाज आती है, तो कहीं चर्च की घंटियां गूंजती है ना हमारा देश और हमारे देश की मिट्टी अतरंगी।

श्रोताओ, यही तो हमारा भारत है, अनेकता में एकता का सुंदर सा उदाहरण। दोस्तों, आपने सोचा है कि भारत के लोकगीत इतने लोकप्रिय क्यों हैं? क्योंकि उनमें मिट्टी की सच्ची खुशबू बसती है। राजस्थान का लोकगीत हो या पंजाब का भांगड़ा, गुजरात का गरबा हो या उत्तर प्रदेश की कजरी, बिहार का सोहर हो या बंगाल के लोकगीत, हर गीत अपनी मिट्टी की कहानी होती है। लोकगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, वो इतिहास भी होता है। वो बताते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, कैसे सोचते थे, कैसे खुशियां मनाते थे। भारत की संस्कृति समझना हो तो किताबों से पहले चौपालों में जाके बैठिए, वहां आपको असली भारत दिखाई देगा।

0: बातें आगे करें या गीत सुन लेते हैं?
1: नहीं, गीत सुनते हैं जहाँ पे हमारे भारत की पहचान हो रही है, हमारे भारत के बारे में बताया जा रहा है और वो संगीतमय हो तो क्या ही कहना।

ऐसा देश है मेरा। श्रोताओं, एक समय था जब गांव की चौपाल केवल बैठने की जगह नहीं हुआ करती थी, वहीं गांव का समाचार केंद्र हुआ करता था, वहीं मनोरंजन का मंच होता था, वहीं रिश्ते जुड़ते थे और वहीं बड़े बड़े फैसले भी लिया करते थे। लोग घंटों बैठकर बातें किया करते थे, हंसते थे, सीखते थे और सिखाते थे। बेशक घर छोटे हुआ करते थे पर दिल बड़ा हुआ करता था। मोबाइल नहीं होता था पर कम्युनिकेशन हमेशा रहता था। स्टाइलिश घड़ियां नहीं होती थी पर वक्त सबके पास एक दूसरे के लिए होता था। आज हमारे सर के ऊपर बुजुर्गों के आशीर्वाद वाले हाथ नहीं है, क्योंकि हमारा हाथ उनके पैर छूने तक नहीं बढ़ रहा, क्योंकि उन हाथ का इस्तेमाल हम महंगे मोबाइल

घर छोटे हुआ करते थे पर दिल बड़ा हुआ करता था। मोबाइल नहीं होता था पर कम्युनिकेशन हमेशा रहता था। स्टाइलिश घड़ियां नहीं होती थी पर वक्त सबके पास एक दूसरे के लिए होता था। आज हमारे सर के ऊपर बुजुर्गों के आशीर्वाद वाले हाथ नहीं है, क्योंकि हमारा हाथ उनके पैर छूने तक नहीं बढ़ रहा, क्योंकि उन हाथ का इस्तेमाल हम महंगे मोबाइल पकड़ने के लिए कर रहे हैं। श्रोताओं, हमें ये पता होना चाहिए कि जीवन जीने का अनुभव टेक्निक से नहीं, मिट्टी से जुड़े रहने से आता है, जहाँ त्याग, समर्पण, साहस और समझ थे। ये सुनने में शायद अटपटा लगे, पर सोचिएगा जरूर कि आगे बढ़ने के लिए पीछे लौटना भी जरूरी है। पीछे हमें सीख मिलेगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर परंपराएं, रीति रिवाज, मिट्टी की खुशबू, उनकी पहचान हमने खो दिया तो हम अपनी पीढ़ी को क्या देंगे? हमारे पास इस सिवाय पछताने के कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। जब कुछ बचेगा ही नहीं तो हम आगे ट्रांसफर क्या करेंगे? तो अभी भी वक्त है। आधुनिकता की तरफ जाते जाते मिट्टी की पहचान को ना भूलिए। आपके अंदर अगर मिट्टी की खुशबू बाकी है तो आप जिंदा हैं।

सी है, गर्व से कहिए कि हाँ हम हिंदुस्तानी हैं। तो श्रोताओं, इसी संदेश के साथ आपकी रेडियो हमसफर मुकुल तिवारी लेती है आपसे विदा। फिर मिलेंगे, तब तक रखिए अपना और अपनों का खास ख्याल। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम नए पुराने तराने।

और इस कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म रिफ्यूजी से। आवाज सोनू निगम और अलका याग्निक की है। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत है अनु मलिक का।

बॉर्डर, इस फिल्म में आप सुन रहे थे सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में जावेद अख्तर का लिखा गीत, संगीत था अनु मलिक का। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में सुनिए समीर का लिखा गीत, संगीत है नरेंद्र श्रवण का और फिल्म का नाम है साजन।

साधना सरगम और संदेश सांडियाल की आवाज में आप सुन रहे थे इरशाद कामिल का लिखा गीत। संगीत भी संदेश सांडियाल का ही था और फिल्म का नाम था सोचाना था। इसी के साथ कार्यक्रम गीत नए पुराने अब यहीं समाप्त होता है, लेकिन फिल्मी गीतों का सिलसिला अगले कार्यक्रम में भी जारी रहेगा जिसका नाम है चित्रपट संगीत। तो इसमें सुनते हैं सबसे पहले लकी अली और सुनिधि चौहान की आवाज में निदा फाजली का लिखा गीत। संगीत है MM करीम का और फिल्म का नाम है सुर।

लता मंगेशकर और मनहर उदास की आवाज़ में आप सुन रहे थे आनंद बख्शी का लिखा गीत, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। श्रोताओं, इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कर कुछ पल प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन

0: शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्तानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से और टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी। और हो गया है, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग एक घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। शहर में पेड़ गिरने की दो अलग अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गडचिरी, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जलस्तर बढ़ जाने से 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ. जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्तानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉ. जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा

0: तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन की साझा करने की सराहना की। डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोह में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: विद प्राइम मिनिस्टर्स अराइवल इन इंडोनेशिया,
2: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे वर्ष विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
0: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि यह हमला होदेइदा के पास हुआ, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलुओं का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया।
3: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और

प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक

0: सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले तीन दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थयात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम एक घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
1: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पॉल्यूशन का सॉल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। उधर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Southwest monsoon intensifies across India, red alert issued for Mumbai, warning of heavy rain in several states. Union Minister Jyotiraditya Scindia and MP Chief Minister Dr. Mohan Yadav lay foundation stone of 2,500 crore rupee defence manufacturing plant in Shivpuri. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar begins his 6-day visit to West Asia, meets Qatari Prime Minister Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani in Doha. OPEC Plus agrees to increase oil production by 188,000 barrels per day from next month to support market stability. In T20 Cricket World Cup Summit clash underway between hosts England and Australia at the Lords, and in FIFA World Cup Brazil to take on Norway in round of 16 at New Jersey tonight. Southwest monsoon has intensified in large parts of the country, bringing widespread rain, thunderstorms, lightning and

तर हिस्सों में जनूब मगरबी मानसून में तेजी आ गई है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर बारिश, गरज चमक के साथ छींटे, बिजली चमकने और तेज हवाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। भारत के महकमे मौसमियात ने कहा है कि अगले 4 दिन में मानसून के गुजरात के कुछ मजीद इलाकों, हरियाणा, पंजाब के बकिया इलाकों और राजस्थान के कुछ मजीद इलाकों में आगे बढ़ने के इम्कान हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड में दिन के दौरान शदीद से ज्यादा शदीद बारिश की पेशगोई है, जबकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में अगले 2 से 3 दिन के दौरान अलग अलग जगहों पर बारिश का इम्कान है। महाराष्ट्र में आज मानसून की शदीद बारिश से बहुत से इलाके मुतासिर हुए हैं। बारिश की वजह से कुछ हादसात पेश आए, जहां बचाव कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रायगढ़ जिले में पुलिस ने 10 से 12 सयाहों को खपोली के नजदीक अदूषी आबशार से बचाया, क्योंकि यहां पानी की सतह में अचानक इजाफा हो गया था। हुक्काम ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो मानसून के दौरान दरियाओं, आबशारों और पानी के दीगर जखायर से दूर रहें। मुंबई में आज दोपहर मूसलाधार बारिश के दौरान कुर्ला में एक दुकान पर एक दरख्त गिर जाने से एक 63 साल शख्स हलाक हो गया। बीएमसी ने बताया कि शहर में दरख्त गिरने के 64 और दीवार और जुजवी तौर पर मकान गिरने के 8 हादसात की खबर मिली है। मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं की वजह से परवाजों के आने जाने में भी काफी रुकावट आई है। भारत के महकमे मौसमियात ने मुंबई, थाने, पालघर, रायगढ़ और रत्नगिरी समेत कोंकण जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में डांग, नवसारी, वलसाड़, भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ और दमन व दीव और दादर व नगर हवेली में कल इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई है। आईएमडी अहमदाबाद में साइंसदान प्रदीप शर्मा ने हमारे नामानिगार को बताया कि इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और माही गिरों को मशवरा दिया गया है कि वो अगले 5 दिन समंदर में न जाएं। इसी दौरान दिल्ली एनसीआर के बहुत से इलाकों में आज दोपहर औसत दर्जे की बारिश हुई, जिसकी वजह से मौसम में यकसर तब्दीली आई और लोगों को नमी वाले मौसम से कुछ राहत मिली। पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस माह की 20 तारीख से शुरू होगा, जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने बताया कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास को 20 जुलाई से शुरू करने के लिए हुकूमत की तजवीज को मंजूरी दे दी है। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने आज शिवपुरी में दिफाई साजो सामान की मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट का संग बुनियाद रखा। इस प्लांट की तामीर तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ अडानी ग्रुप करेगा। इस मौके पर खिताब करते हुए मरकजी वजीर सिंधिया ने कहा कि शिवपुरी की तारीख में आज एक नया बाब रकम किया जा रहा है। उन्होंने इसे एक तारीखी कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से ये जिला सनती तरक्की, दिफाई साजो सामान की तैयारी और एक खुद कफील भारत के तस्वुर से वाबस्ता हो जाएगा। जनाब सिंधिया ने यह भी कहा कि शिवपुरी के मेहनती नौजवानों के जरिए बनाए गए हथियार और मिसाइल भारतीय फौज को मुस्तहकम करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मगरबी एशिया का अपना दौरा शुरू कर दिया है। वो इस दौरे में कतर, बहरेन, कुवैत और ओमान जाएंगे। अपने दौरे के पहले मरहले में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के वजीर आजम और वजीर खारजा मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जस्सीम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी तआवुन के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया, जिसमें बिलखसूस तवानाई, तिजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी और अवाम का अवाम से राबता शामिल है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में वजीर खारजा ने बताया कि दोनों रहनुमाओं ने कलीदी शराकत दारी को मजीद बढ़ाने की गरज से नए मौकों की जस्तजू की। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय बिरादरी के तहफ्फुज़ और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया और मगरबी एशिया तनाज़े और उसके असरात के ताल्लुक से अपने जायजों से वाकिफ कराने के लिए उनकी तारीफ की। डॉक्टर जयशंकर इस माह की 13 तारीख को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क का दौरा करेंगे, जहां वो अक्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की 2028-29 की मुद्दत के लिए भारत की सरकारी मुहिम का आगाज करेंगे। डॉक्टर जयशंकर इसके बाद तीसरी भारत यूरोपीय यूनियन तिजारत और टेक्नोलॉजी काउंसिल की मीटिंग में हिस्सा लेंगे और इस माह की 14 और 15 तारीख को ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन और बेल्जियम के अपने हमसबों से बातचीत करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही है।
पेट्रोलियम बरामद करने वाले मुल्कों की तंजीम ओपेक प्लस ने तेल की पैदावार में इस साल अगस्त से 188,000 बैरल रोजाना का इजाफा करने से इत्तेफाक किया है। ये फैसला तेल मार्केट की आलमी सूरतहाल का जायजा लेने के लिए वर्चुअल वसीले से मुनाकदा एक

0: मीटिंग के बाद किया गया। आज इस मीटिंग के बाद जारी किए गए बयान में 7 ओपेक प्लस रुकन मुल्कों ने, जिसमें सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान शामिल हैं, कहा है कि इस फैसले का मकसद मार्केट के इस्तेहकाम में मदद करना है। उन्होंने एक मोहतात और लचकदार तरीक़ेकार के तहत अपने अज़्म को दोहराया, जिसमें मार्केट के हालात पर इनेसार करते हुए तेल की पैदावार में इजाफे, इसे रोक देने या इसे कम कर देने के मुतबादिल भी शामिल हैं। तेल की पैदावार वाले इस ग्रुप ने कहा कि वो आलमी तेल मार्केट पर करीबी नज़र रखता रहेगा। ग्रुप ने पैदावार के उन निशानों को भी पूरा करने की यकीन दहानी कराई जिन पर रजामंदी की गई है। ज़िराअत और देही तरक्यात के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी ग्रामीण के तहत रियासतों को 25,000 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। जनाब चौहान ने तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ इस स्कीम पर अमलावरी का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि रियासतों के पास खातिरखा फंड्स मौजूद हों, ताकि उजरतें 15 दिन के अंदर अंदर अदा की जा सके। जनाब चौहान ने यह भी कहा कि इस एक्ट के तहत 2,86,000 पंचायतों में 7.5 लाख करोड़ रुपए के अगले 5 बरस में सरमाकारी की जाएगी, ताकि विकसित भारत के तस्वर को तेजी के साथ बढ़ाया जा सके। वजीर मौसूफ ने कहा कि वीबीजी रामजी एक्ट ने कामयाबी के साथ महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी स्कीम की कायापलट कर दी है।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: हुकूमत ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर अदायगी के बाद पेश किए जाने वाले इश्तिहारों में बच्चों के जिंसी एतबार से इस्तेहसाल और नाजेबा सलूक से मुतालिक मटीरियल CSEAM पेश किए जाने के मामले में मेटा को सख्त नोटिस जारी किया है। हुकूमत ने इंस्टाग्राम को हुक्म दिया है कि वो इस तरह के मटीरियल तक रसाई की सहूलत बहम पहुंचाने वाले और इस मवाद को फरोग देने वाले तमाम इश्तिहारात को रोक दे। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाआती टेक्नोलॉजी की वजारत ने इस सिलसिले में मेटा से 7 दिन के अंदर तफसीली वजाहत तलब की है। हुकूमत इस बात का जायजा ले रही है कि प्लेटफॉर्म ने भारत की सालिसी के तहफुजाती रहनुमा खतूत पर अमल किया है या नहीं। उरिया फिल्में और बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल से मुतालिक वीडियोस की तशहीर डिजिटल कवानीन के तहत भारत में एक मुजरमाना खिलाफ वर्जी है। इससे पहले वजारत ने इन रिपोर्टों की बिना पर कि इंस्टाग्राम कुछ ऐसे काबिले एतराज़ वीडियो दिखाता है जिससे बच्चों के साथ जिंसी इस्तेहसाल की तशहीर होती है, अपने तौर पर कार्रवाई करते हुए अफसरान को हिदायत जारी की थी कि वो इस सिलसिले में मेटा से जवाब तलब करे। हुकूमत ने आबनाए हुरमुस के रास्ते LNG लाने ले जाने के अमल की बहाली के बाद कुदरती गैस सप्लाई पर आयद हंगामी बंदिशें खत्म कर दी हैं। ये बहाली मगरबी एशिया तनाज़े में जंगबंदी के बाद हुई है। इस सिलसिले में हंगामी अहकामात लाजमी अशिया के कानून के तहत इस साल मार्च में जारी किए गए थे, जब आबनाए हुरमुस के रास्ते LNG लाने ले जाने वाले जहाज़ों की आमदोरफ्त में रुकावट आ गई थी। भारतीय बहरिया का तरबियती जहाज INS सुदर्शनी न्यूयॉर्क की बंदरगाह पर लंगरअंदाज हो गया। वो अमरीका के बैन अलाक़वामी नेवल रिव्यू 2250 और सेल 14th 250 तकरीबात में भारत की नुमाइंदगी करेगा। हटसन दरिया में कल कश्तियों की परेड के दौरान मशहूर जमाना 3 मस्तूल वाली कश्ती ने बड़े फखरी अंदाज में भारतीय तिरंगा लहराया, जो भारत की फरामा समंदरी सरहद की सकाफत और सदियों पुराने समंदरों के सफर की रिवायत का जश्न था। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने आज 2026 की कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जत्था यात्रा के अगले मरहले के लिए चंपावत जिले के टनकपुर इलाके से रवाना होगा। पहला जत्था 49 यात्रियों पर मुश्तमिल है, जिनमें 1 डॉक्टर, 34 मर्द और 15 खवातीन शामिल हैं। दुनिया भर में मारूफ पांडों की दास्तान बयान करने वाली पद्म विभूषण एजाज याफ्ता डॉक्टर तीजन बाई की आज शाम दुर्ग जिले के उनके आबाई गांव गनियारी में सरकारी तौर पर आखिरी रसूम अदा कर दी गई। उन्होंने छत्तीसगढ़ की लोक सकाफत को आलमगीर मकबूलियत अदा की। इस मौके पर अवामी नुमाइंदों, इंतजामिया के अहलकारों, फनकारों, अदीबों और हजारों सोगवारों ने आर्ट की इस

त्योहार हिंदुस्तान। आज आकाशवाणी के इस राष्ट्रीय क्षितिज पर हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे अनूठे सफर पर जहां पिघलते फौलाद की धमनियों में धड़कता है मिनी इंडिया। एक ऐसा शहर जिसका इतिहास राष्ट्र के स्वाभिमान का पहला तकनीकी और औद्योगिक घोषणा पत्र है। हर शहर की अपनी एक कहानी।

0: होती है। कुछ शहर इतिहास में दर्ज होते हैं, कुछ भूगोल में और कुछ लोगों के दिलों में। ये कहानी है एक ऐसे शहर की जो कभी जंगल था, जो कभी काली माटी नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां स्वर्ण रेखा और खरकई नदियां मिलकर धरती को हरियाली का आशीर्वाद देती थी। फिर एक सपना आया, एक दूरदर्शी आंखों में पलता हुआ सपना, और उस सपने ने जंगलों के बीच बसाया एक ऐसा नगर जो आज उद्योग का प्रतीक है, खेलों की राजधानी है, संस्कृतियों का संगम है और आधुनिक भारत के आत्मविश्वास की पहचान है। ये है जमशेदपुर टाटा नगर, इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर। वर्ष 1907, भारत अभी स्वतंत्र नहीं हुआ था, लेकिन एक भारतीय उद्योगपति ने स्वतंत्र भारत का सपना देख लिया था। वो सपना था भारत को आत्मनिर्भर बनाने का। उस सपने का नाम था जमशेद जी नसरवान जी टाटा। उन्होंने कहा था, यदि भारत को मजबूत बनाना है तो उद्योग, शिक्षा और विज्ञान को साथ लेकर चलना होगा। और फिर काली माटी की धरती पर जन्म हुआ एक ऐसे नगर का जो केवल कारखानों का समूह नहीं था, बल्कि एक विचार था, एक दृष्टि थी, एक भविष्य था। आज वही नगर विश्व में जमशेदपुर और टाटा नगर दोनों नामों से जाना जाता है। शहर केवल बसा नहीं है, इसे सपनों ने गढ़ा है, दूर दृष्टि ने सवारा है और लाखों हाथों ने अपनी श्रम की ऊष्मा से जीवन दिया है। किसी शहर की पहचान सिर्फ उसकी ऊंचे इमारतें नहीं बनाती, बल्कि वो रिश्ता बनाता है जो शहर और उसके लोगों के बीच होता है। यही रिश्ता जमशेदपुर को दुनिया के दूसरे औद्योगिक नगरों से अलग बनाता है। टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज डीबी सुंदर रामम बताते हैं कि जमशेदपुर केवल कंपनी टाउन नहीं है, ये सामाजिक उत्तरदायित्व, सुनियोजित नगरीय विकास और नागरिक साझेदारी का एक वैश्विक मॉडल है।
1: फाउंडर का जो सपना है उसको साकार करने में जितने भी जनरेशन है, जितने भी चेयरमैन आए, जितने भी एमडीज आए हैं और जितने भी लोग हैं साथ में, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज, यूनियंस, एवरीवन, सबका अलाइनमेंट एक ही है कि जमशेदपुर का नाम रोशन होना चाहिए। रिसेंटली वी वर डिक्लेयर्ड थर्ड बेस्ट क्लीनेस्ट सिटी, तो कुछ लोग खुश है, कुछ लोग पूछते हैं कि एक नंबर में क्यों नहीं आ सकता। वो दैट कॉम्पिटेटिव स्पिरिट भी है, यही हम लोगों को आगे लेके चलता है एंड टू ब्रिंग इन मोर एंड मोर फैसिलिटीज टू दिस सिटी।
0: अमूमन बड़े औद्योगिक शहरों को प्रदूषण और कंक्रीट के जंगलों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन जमशेदपुर में स्टील प्लांट के ठीक बगल में जुबली पार्क और सघन ग्रीन कवर यानी हरियाली है। उद्योग और पर्यावरण के इस बेहतरीन संतुलन और सस्टेनेबिलिटी को लेकर टाटा स्टील का विजन साफ है, विशेषकर जब हम नेट जीरो कार्बन के राष्ट्रीय लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं। डीबी सुंदर रामम रेखांकित करते हैं।
1: आज के दिन जमशेदपुर डेफिनेटली वन ऑफ द बेंचमार्क प्लांट्स विद 2.2 टन ऑफ कार्बन इमिशन पर टन ऑफ क्रूड स्टील, बट इसको और हम कम कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है सिटीजन है, किसी का भी घर में, जिसका बंगलो है, घर है, कुछ भी है, अब देखेगा पेड़ पौधा जरूर रहता है, एवरी ईयर गार्डन कॉम्पिटिशन होता है एंड ऑल्सो लोगों में हम लोग लाते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन को यू हैव टू लव नेचर। आज के दिन आप हमसे पूछेगा तो अराउंड 28% जो है ग्रीन कवर किए हैं। हमारा टारगेट है कि कैसे हम 33-35% करें। लास्ट 3-4 साल में बहुत सारा ओपन जिम आए हैं, पार्क्स आए हैं, जहां ये सबको हम लोग बढ़ावा देते हैं तो टीएमएच में लोड कम होता है। बाकी जितना हमारा एनवायरमेंट पैरामीटर्स है उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। वी आर स्पेंडिंग 1,000-1,200 crores every year to bring it to level where people even at 500 meters. अपना भी ख्याल रखना है और शहर का भी ख्याल रखना है, तो इसलिए हम लोग हर कदम उठाएंगे जिससे लोगों का ये नहीं असुविधा हो कि प्रदूषण यहाँ बढ़ा।
0: जमशेदपुर के बारे में एक बेहद मशहूर पंक्ति कही जाती है, यहाँ टाटा स्टील शहर की देखभाल नहीं करती, बल्कि शहर टाटा स्टील की देखभाल करता है। कंपनी और यहाँ के आम नागरिकों के बीच इस बेहद भावुक, आत्मीय और 100 साल से भी ज्यादा पुराने अनूठे रिश्ते की जादुई बुनियाद क्या है, सुंदर रामम कहते हैं।
1: आज के जनरेशन के एम्प्लॉयज से पूछेगा वो जरूर बोलेंगे हम थर्ड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन है। कुछ एम्प्लॉयज मिलेंगे जो बोलेगा फिफ्थ जनरेशन है। नॉट ओनली एम्प्लॉयज, जितना शॉप्स है यहाँ पे, जितना एस्टेब्लिशमेंट्स है, सिंगबूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जितना भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स है, तो वो उनके अंदर में भी लॉयल्टी है और हमारे अंदर में भी लॉयल्टी है कि जब हमको जरूरत है उस समय लोग बाहर से आए हैं यहाँ पे। उस समय उनको भी, जैसे कंपनी को तकलीफ हुआ उनको भी तकलीफ हुआ, बट फिर भी वो साथ दिए कंपनी का, इसलिए अभी ये पूरा टाटा फैमिली है। और ये भी बात हो रहा है कि हम लोग कूड़ा से कैसे बिजली को उत्पन्न कर सकेंगे या चारकोल का कैसे उत्पन्न कर सकेंगे। बहुत अच्छा अच्छा आइडिया सर है, जितना भी आइडिया है वो शहर को और कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं उसके लिए।
0: ईंट, पत्थर और लोहे से केवल इमारतें बनती हैं, लेकिन विश्वास, संवेदना और साझेदारी से एक शहर जन्म लेता है।

0: के किनारे फैले वृक्ष, साफ सुथरे उद्यान, झीलें, खुले मैदान और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर बढ़ता विकास। यहाँ उद्योग और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि सहभागी हैं। जैसे इस्पात और हरियाली ने यहाँ एक दूसरे का हाथ थाम लिया हो। यहाँ हर सड़क एक मंजिल की ओर जाती है और हर मंजिल किसी नए सपने का आरंभ बन जाती है। अगर उद्योग किसी राष्ट्र की शक्ति है तो विज्ञान उसकी बुद्धि है। जमशेदपुर की धरती पर विज्ञान ने भी अनेक स्वर्णिम अध्याय लिखे हैं। यहाँ सन 1950 में स्थापित राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला यानी CSIR NML ने देश की धातु कर्म में आत्मनिर्भरता को नई दिशा दी। आज जब दुनिया सतत विकास और ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, तब यहाँ के वैज्ञानिक भविष्य के भारत का निर्माण कर रहे हैं। विज्ञान में युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला NML के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन क्रिटिकल मिनरल्स एंड मेटल्स के प्रमुख सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अभिलाष उजागर करते हैं।
1: काफी सारे इंडस्ट्रीज ने फायदा उठाया, अभी भी उठा रही है इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल में काम करती है, अपने फेरोलॉयज लेके जाती है, स्पेशलिटी फेरोलॉयज जो यूज होता है डिफेंस में, न्यूक्लियर सेक्टर में, ऑल दैट। ऑब्जेक्टिव ये रहा कि जो कंपनी कोल की माइनिंग, आयरन ओर की माइनिंग या डिफरेंट ओर्स की माइनिंग करती है, उनका ग्रेड अगर लो रहता है तो उसको एक ऐसे इंडस्ट्रियल ग्रेड पे लेकर किया जाए जहां से लेकर एक कंपनी अपना मेटल एक्सट्रैक्शन खुद से कर लेती है। कोई भी रेल एक्सीडेंट हुआ है, अगले ही महीने वहां का वो रेल पटरी चक्का सब कुछ NML आ जाता है, उस पर इन्वेस्टिगेशन होता है कि वो स्टील क्रैक क्यों हुआ, टूट क्यों गया। ऐसे ही थर्मल पावर प्लांट है या ऑयल रिफाइनरी है, इनमें जो क्रैक्स आती है कभी कुछ, उनका इन्वेस्टिगेशन यहां से होता है ताकि आगे जाकर के ये जो समस्याएं होने वाली है इनको रोका जा सके।
0: भारतीय रेलवे ट्रैकों की मजबूती से लेकर डिफेंस और एरोस्पेस के क्षेत्र के लिए विशेष अलॉय विकसित करने तक देश के औद्योगिक विज्ञान को आत्मनिर्भर बनाने में जमशेदपुर की इस प्रयोगशाला ने महत्वपूर्ण तकनीकी क्रांतियां की हैं।
1: जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी बन के आए हैं फॉर स्टार्टअप्स, फॉर यंग पीपल हु आर वांट टू एंटर इनटू केमिस्ट्री फील्ड, मैकेनिकल मेटलर्जी, ऑल दिस काइंड ऑफ फील्ड्स।
0: एक भटनागर पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक के रूप में डॉक्टर अभिलाष का दृष्टिकोण हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड रहा है। आज के दौर में NML इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और औद्योगिक कचरे से लिथियम, कोबाल्ट और सोने जैसे कीमती धातुओं को निकालने की स्वदेशी तकनीक पर बहुत बड़ा काम कर रहा है। पर्यावरण संरक्षण यानी सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलर इकोनॉमी वैश्विक परिदृश्य में इस शोध का काफी महत्व है। डॉक्टर अभिलाष प्रकाश डालते हैं।
1: हमारा उद्देश्य ये है, कचरे में जो बैटरी है उससे लेके जो मेटल आप हाई प्योर बनाते हैं उससे नई बैटरी अगर बन जाएगी, बैटरी की कॉस्ट 1/8 कम हो जाएगी। कल आपको जो ईवी का कॉस्ट 15 लाख 16 लाख की कार है, शायद कुछ पैसे कम हो जाए उसमें, एंड इंडिया बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। सो दैट इज वॉट वी फील दैट द ग्रीन केमिस्ट्री वॉट वर्क इन मेटलर्जी इज वेरी वेल सूटिंग फॉर ई वेस्ट रिसाइकलिंग।
0: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ग्रीन स्टील और नैनो मटेरियल्स जैसे भविष्य की तकनीक में जमशेदपुर की ये प्रयोगशाला भारत को वैश्विक स्तर पर एक लीडर के रूप में स्थापित कर रही है। विज्ञान की प्रयोगशालाओं में जन्म लेने वाले विचार जब उद्योगों में उतरते हैं तो राष्ट्र की प्रगति का नया अध्याय लिखते हैं, और यही अध्याय जमशेदपुर दशकों से लिख रहा है। लेकिन विकास केवल कारखानों और प्रयोगशालाओं से नहीं होता, विकास के लिए चाहिए शिक्षित मस्तिष्क, जिज्ञासु युवा और नवाचार का साहस। जमशेदपुर का शैक्षणिक इतिहास भी उतना ही गौरवशाली है। कभी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आज राष्ट्रीय महत्व का संस्थान NIT जमशेदपुर। इसके निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधर बताते हैं, RIT से NIT तक का ये सफर केवल नाम परिवर्तन नहीं है बल्कि शोध, नवाचार और राष्ट्र निर्माण की सतत यात्रा है।
2: NIT जमशेदपुर 31 NIT से देश का एक NIT है। क्रिटिकल मिनरल्स में बहुत ही उपयोगिता है सोलर सेल में, तो अभी ये सोलर सेल रिसाइकलिंग इज ए प्रोजेक्ट। रिसेंटली वी गॉट ए वेरी बिग प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 1.5 करोड़। जो जो हम लोग का उधर में सिल्वर रहता है, सिलिकॉन रहता है, कॉपर रहता है, उसको कैसे मैं डिसइंटीग्रेट करना चाहता है और फिर हम लोग को नया नया में फोटोवोल्टिक सेल में हम लोग फिर उपलब्ध कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं।
0: 1960 में RIT के रूप में शुरू हुई इस संस्था का इतिहास जमशेदपुर के औद्योगिक विकास के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया जैसी देश के सबसे बड़ी औद्योगिक इकाइयों के ठीक बीच में स्थित होना, यहाँ के छात्रों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और देश के

0: औद्योगिक विज्ञान को मजबूती देने में वरदान साबित हुआ है, प्रोफेसर सूत्रधर कहते हैं।
1: इवन लास्ट ईयर में मैं 4 बंदा को अमेरिका भेजे थे फॉर कंपटीशन में, गया इधर से, एक लड़की था, 3 लड़का था, वो लोग को हम लोग भेजे थे। तो इधर में देश में बहुत जगह में ये लोग ईवी, रोबोटिक्स, अभी AI का जो आ गया, IIoT, इसमें बहुत काम चल रहा है और आगे बढ़ रहा है। हम लोग इसमें इनोवेशन के रूप में हम लोग इसको सपोर्ट भी करता है।
0: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए NIT जमशेदपुर भविष्य के उन तकनीकी लीडर्स को तैयार कर रहा है जो न केवल वैश्विक स्तर पर भारत का परचम लहराएंगे बल्कि देश की जमीनी समस्याओं का भी तकनीकी समाधान निकालेंगे। प्रोफेसर सूत्रधर रूबरू कराते हैं।
1: प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है, सपना है, इस टाइप ऑफ स्टूडेंट को पहले से ही तैयार करना बहुत जरूरी है। वो लोग को बोलना है कि भाई ये इट्स नॉट ए वन डे कंपटीशन, यू हैव टू टेक इट्स अ लॉन्ग टर्म, यू डोंट रन बिहाइंड द पैकेज। आप ज्ञान अर्जन करो और होलिस्टिक पर्सन बनने के लिए कोशिश करो, वही हम लोग का सबसे महत्व उद्देश्य है।
0: विज्ञान के इस तकनीकी विकास को जब तक मानवीय संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारी का साथ न मिले वो अधूरा है। जमशेदपुर का प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान XLRI दशकों से देश को ह्यूमन फेस वाला नेतृत्व दे रहा है। इसके निदेशक फादर सेबेस्टियन जॉर्ज SJ कहते हैं, भविष्य उन्हीं का होगा जो ज्ञान के साथ संवेदना भी रखते हों।
2: मैनेजमेंट विद ह्यूमन फेस केवल एक विचार या नारा नहीं है बल्कि XLRI की एजुकेशन फिलॉसफी का मूल आधार है। हमारा मानना है कि मैनेजमेंट एजुकेशन का उद्देश्य केवल कुशल मैनेजर तैयार करना नहीं बल्कि ऐसा उत्तरदायी और वैल्यू बेस्ड लीडर्स विकसित करना है सो समाज के लिए प्रति रिस्पॉन्सिबल हो। हमारे करिकुलम में एथिक्स, सस्टेनेबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक पॉलिसी और इंक्लूसिव डेवलपमेंट जैसे विषयों को विशेष महत्व दिया जाता है। क्लासरूम के बाहर भी स्टूडेंट्स को रूरल कम्युनिटीज, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और डेवलपमेंट ओरिएंटेड इनिशिएटिव से जुड़ने का अवसर मिलते हैं। ये अनुभव उनमें एम्पैथी, सोशल अवेयरनेस को समझने की क्षमता विकसित करती है।
0: विकसित भारत 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए XLRI भविष्य के कॉरपोरेट लीडर्स को तैयार कर रहा है जो न केवल आर्थिक प्रगति के संवाहक बने बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास के प्रति भी जवाबदेह हों। कुछ शहर वर्तमान में जीते हैं, कुछ अतीत में, लेकिन जमशेदपुर उन विरले नगरों में है जो इतिहास को साथ लेकर भविष्य की ओर चलता है। आदिवासी लोक धुनों से लेकर वैश्विक उद्योगों तक यहाँ विविधता किसी उत्सव की तरह प्रतिदिन सांस लेती है। जमशेदपुर की आत्मा केवल उद्योग नहीं, यहाँ की मिट्टी में बसती है आदिवासी संस्कृति। यहाँ के पर्व, यहाँ के गीत, यहाँ की लोक कलाएं और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान इस भूमि की पहचान है। पद्मश्री चामी मुर्मू ने हजारों महिलाओं को जोड़कर पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण की ऐसी मिसाल प्रस्तुत की है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। झारखंड की धरती को हरा भरा बनाने वाली लेडी टार्जन के रूप में मशहूर पद्मश्री चामी मुर्मू ने लाखों पेड़ लगाकर बंजर धरती को हरी भरी चादर ओढ़ा दी है। आदिवासी समाज में तो जल, जंगल और जमीन को भगवान की तरह पूजा जाता है। आज के इस आधुनिक दौर में जब जंगल सिमट रहे हैं, हमारे आदिवासी विरासत और पर्यावरण के इस गहरे रिश्ते को चामी मुर्मू इस तरह देखती हैं।
3: किसान भी समझने लगा कि हाँ, हम अगर पौधा लगाएंगे तो मेरा भी फायदा होगा। उसके बाद यहाँ जितना भी बंजर भूमि था सब ये लगाए, हम लोग 17 लाख तक पौधा लगाए। हम लोग काम लिए और अपना क्षेत्र में काम किया, उस मित्र पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो उसमें और जिम्मेवारी लगा और जोश लगा तो और लगाने का मन किया। और उसके बाद हम लोग महिला लोग भी जागरूक हो गए तो उसके बाद हम लोग SHG ग्रुप का काम किया।
0: चामी मुर्मू ने हजारों महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर न केवल उन्हें आत्मनिर्भर बनाया बल्कि लकड़ी माफियाओं और अवैध शिकार के खिलाफ खड़े होने का हौसला भी दिया। इस जमीनी बदलाव और महिलाओं के इस संघर्ष की यात्रा को वो बयां करती हैं।
3: बहुत कोशिश किए, बहुत संघर्ष किए, ये करके बाद में हम लोग बंजर भूमि में लगाना शुरू किए। फल दे नहीं दे लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए अपना परिवार जैसे ही मानते हैं और उसी को ये करके हम अभी तक जिए हैं पौधा के साथ और आगे भी करते रहेंगे, लगाते रहेंगे और समाज में सेवा करते रहेंगे।

0: सुदूर गांव से राष्ट्रपति भवन तक पद्मश्री सम्मान पाने का चामी मुर्मू का ये सफर देश की करोड़ों ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। अपने आत्मीय आवाज में वो कहती हैं,
1: आज ये पद्मश्री में पहुंच गए हैं, इसके लिए बहुत बहुत सबको धन्यवाद दूंगी और आगे जो है वो तो हम पहले से भी बोल रहे करते ही रहूंगी।
0: प्रकृति के इसी जुड़ाव से जब दीवारों पर रंग बोलते हैं तो वहाँ जन्म लेती है सोहराय कला। सोहराय के रंगों में धरती की मुस्कान है और उन रंगों में छिपी है पीढ़ियों की स्मृति। इस कला को विश्व पटल तक पहुँचाने का प्रयास कर रही है स्थानीय जनजातीय कलाकार हीरा मांझी। वो कहती हैं, संस्कृति को बचाना केवल अतीत को बचाना नहीं बल्कि भविष्य को पहचान देना है।
2: सोहराय पेंटिंग प्रकृति से लिया जाता है, उसमें हम लोग जुड़े हुए हैं। हम इंसानों का अस्तित्व पशु पक्षी प्रकृति के बिना अधूरे हैं। आज के जो पीढ़ी है कंप्यूटर मोबाइल की दुनिया में खोए हुए हैं, उनको हम बता रहे हैं जो असली दौलत जल जंगल और जमीन है। युवाओं को यही सिखाते हैं, कैनवस और दीवार में बना के समझाते हैं। अपनी भाषा को बचाए रखना है, उनको कहानी लिखना नाटक लिखना सिखा रहे हैं संथाली में और युवाओं को समर्थन मिल रहा है। ये जो लड़ाई है बहुत कठिन है लेकिन समाज का अगर साथ मिलता है तो आसान हो जाता है।
0: हीरा मांझी की बातें हमारे सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाती हैं। उनकी आंखों में सपना है। वो कहती हैं, सोहराय पेंटिंग हमारी परंपरा है, प्रकृति के प्रति हमारा धन्यवाद है।
2: एक और दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, दूसरी तरफ शाम को नगाड़ो मादर की थाप घुसती है। यही सही मानव में मिनी इंडिया है जहां हर राज्य के लोग रहते हैं। बहुरंगी पहचान को जिंदा रखने में हमारे जनजातीय कलाकारों विचारकों और साहित्यकारों की बहुत बड़ी भूमिका है। हम अपनी कला साहित्य के जरिए इस आधुनिक शहर को उसकी आत्मा से जुड़े रखते हैं। हम याद दिलाते हैं तरक्की की ऊंचाई को छूते हुए जमीन को नहीं भूलना।
0: पर्वतों की चोटियां हो या जीवन की चुनौतियां, विजय उन्हीं को मिलती है जो कदम बढ़ाने का साहस रखते हैं। अगर जमशेदपुर उद्योग का शहर है तो ये खेलों का तीर्थ है। तरक्की और संस्कृति के साथ साथ जमशेदपुर देश की खेल राजधानी भी है। ये वो भूमि है जो युवाओं में साहस का संचार करती है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट पर विजय पताका फहराने वाली और टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के माध्यम से देश को साहसी बनाने वाली पद्म भूषण बचेंद्री पाल की बातें रोमांच से भर देती हैं।
3: आज कोई मुझे पूछे कि पहाड़ क्यों चढ़ना चाहिए, जो मुझे लगातार पूछते रहते थे गांव में हर जगह पढ़े लिखे लोग भी, लेकिन आज हमारे पास जवाब है कि पहाड़ क्यों चढ़ना चाहिए। पहाड़ कौन चढ़ते हैं? जो बहुत साहसिक होते हैं, जो बहुत ब्रेव होते हैं, जिनका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है, जो अपने लिए बहुत बड़े जोखिम भरा लक्ष्य निर्धारित करते हैं, क्योंकि जिंदगी में हर जगह ही चुनौती है।
0: रोमांच और खेल इंसान को मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं जिससे वे जीवन के हर ऊंचे शिखर को फतह कर सके।
3: मुझे बहुत खुशी होता जब हमारे प्रोग्राम में लड़के लोग आते हैं, यूथ लोग आते हैं, जीटी लोग आते हैं, एमटी आते हैं, रूरल यूथ आते हैं और डरे हुए रहते हैं। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है, उनमें ब्रेवरी नहीं होता है, लेकिन जब वापस जाते हैं पूरा बदल के जाते हैं। तो मैं सोचूं लाइफ जिंदगी सार्थक है और बार बार यही सोचती हूं कि एक लाइफ एक जिंदगी बहुत छोटा है, बहुत कुछ और भी करने के लिए।
0: साहस की इसी धरती ने विश्व विजेता धनुर्धर पैदा किए हैं जिन्होंने ओलंपिक तक का सफर तय किया। इस यात्रा में टाटा आर्चरी अकादमी का योगदान अविस्मरणीय है। इसके मुख्य कोच और मेंटर के रूप में अपने अनुभव साझा करते हुए पद्मश्री और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित पूर्णिमा महतो कहती हैं कि सफल खिलाड़ी केवल प्रतिभा से नहीं अनुशासन और निरंतर अभ्यास से बनता है।
4: दीपिका जैसे कैडेट एंड जूनियर वर्ल्ड चैंपियन है, उसके बाद हमारी एकेडमी से कोमोलिका बनी, हमारी एकेडमी से कैडेट वर्ल्ड चैंपियन भी बनी और जूनियर भी बनी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर निकले हैं। दीपिका एक बहुत बड़ा नाम है हमारे एकेडमी का। दीपिका जब कैडेट वर्ल्ड चैंपियन बनी और पीछे खड़े थे तो बहुत अपने आप को प्राउड फील हुआ। मतलब हम तो एक ये मानते हैं कि अब इंडियन आर्चरी को एक जगह लेके गया है टाटा आर्चरी एकेडमी।
0: धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ा एक तीर केवल लक्ष्य नहीं भेदता, वो सपनों को भी नई उड़ान देता है। फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, पर्वतारोहण, हर खेल में जमशेदपुर ने अपनी पहचान बनाई है। तीरंदाजी के साथ साथ फुटबॉल के क्षेत्र में भी जमशेदपुर को भारतीय फुटबॉल की नर्सरी कहा जाता है। टाटा स्टील के खेल

0: प्रमुख और जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के सीईओ मुकुल चौधरी कहते हैं,
1: इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन शायद ही किसी एकेडमी या किसी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन ने किया होगा। करीब करीब 300 बच्चे टीएफए से ग्रेजुएट हुए, उससे 150 बच्चे नेशनल खेल चुके हैं इंडिया को रिप्रेजेंट किया, उसमें से कुछ 19 अलग अलग एज ग्रुप में कैप्टन हो चुके हैं। बट ये एक एकेडमी करती थी और इनका बेसिकली अगर देखा जाए तो 20 बच्चों को हमेशा लेते थे और क्वालिटी पे हमेशा ध्यान दिया जाता, क्वांटिटी पे नहीं था। कल्याण चौबे है, रणिडी सिंह है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर है आज की तारीख में भी जो हर टीम में तीन चार कहीं कहीं मिल जाते हैं। आई थिंक इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन शायद ही किसी इंस्टीट्यूशन का होगा एंड इंडियन फुटबॉल में इसको काफी अच्छी तरह सम्मानित भी किया गया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने एक स्पेशल रिकॉग्निशन दिया हमको, टाटा फुटबॉल एकेडमी को, फॉर इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन। और ये सब कब हुआ? 1987 में, जब 83 में क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला था। तो हम इसका बड़ा सा श्रेय हमारे लीडरशिप को देते हैं जिन्होंने इसका बारे में तब सोचा जब क्रिकेट अपने पीक पे था, वर्ल्ड कप जीत चुकी थी और सारा कॉन्सेंट्रेशन क्रिकेट की तरफ था। तभी एक रेसिडेंशियल स्कूल पहली बार और वो भी जमशेदपुर में शुरू की गई और पूरे हिंदुस्तान से सबसे बेहतरीन फुटबॉलर्स को यहाँ लाके उनको ट्रेन किया गया। तो आई थिंक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है टीएफए का।
0: आज वैश्विक स्तर पर फुटबॉल की तकनीक और गति बहुत बदल चुकी है। 2026 के इस आधुनिक दौर में टीएफए अपने युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए किस तरह आधुनिक तकनीकों, विदेशी एक्सपोजर और वैज्ञानिक ट्रेनिंग से लैस कर रहा है, मुकुल चौधरी बताते हैं।
1: शुरुआत से ही सबसे बेस्ट ट्रेनिंग देने के लिए जाना जाता है। काफी साल पहले टीएफए शायद पहला इंस्टीट्यूशन जहां वीडियो एनालिसिस शुरू हो गया एकेडमी लेवल पे। उसके बाद हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर है। ये सारी चीजें नई हैं जो हम कोशिश कर रहे हैं जिससे बेसिकली बच्चों को इंजरी ना हो। नॉर्मल बच्चों से ज्यादा अपने आप को स्ट्रेच करके मेहनत करनी पड़ती है ग्राउंड पे और ये फिजिकली डिमांडिंग स्पोर्ट है तो इंजरी काफी कॉमन है। हमारी कोशिश यही रहती है कि इंजरी ना हो और अगर हो तो उनको जल्दी से जल्दी फिट करके ग्राउंड पे कैसे लेके आए। तो ये इसके लिए हमारा एक स्पोर्ट्स साइंस टीम है जो कि खासकर जमशेदपुर में काफी कम है हिंदुस्तान में, उसमें से एक जमशेदपुर में सेंटर है। उसके अलावा फॉरेन एक्सपोजर, हर बैच जो हमारे आता है 4 साल के लिए हमारे साथ रहता है तो एक साल उनको बेसिकली एक महीने के लिए हम यूजुअली फॉरेन एक्सपोजर देते हैं ताकि उनको बाहर किस लेवल का फुटबॉलर, ज्यादातर ये यूरोप में होता है क्योंकि यूरोपियन फुटबॉल अपने आप में बहुत ही इवॉल्व्ड है और हम चाहते हैं कि उसी को देखे और वो अपने एक सेल्फ बिलीफ भी बनाए कि आपको भी स्तर पे जाके खेलना है। आईएसएल में भी काफी प्लेयर है, इनफैक्ट टीम में ओवरऑल 8 प्लेयर है जो हमारे यूथ सिस्टम से निकले हैं। तो कोशिश यही है कि हम यूथ को प्रमोट करें, यूथ को एनकरेज करें और उनको बेहतरीन से बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट दें।
0: हॉकी भारत के दिल में बसती है और जमशेदपुर में नवल टाटा हॉकी अकादमी ने जमीनी स्तर पर काम करके इस खेल को नई ऊर्जा दी है। विशेषकर झारखंड के सुदूर और ग्रामीण इलाकों से आदिवासी प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर चमकाने में अकादमी की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी के बारे में बता रहे हैं नवल टाटा हॉकी अकादमी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर गुरमीत सिंह राव।
2: हमारे दो बच्चे एट प्रेजेंट नेशनल इंटरनेशनल लेवल पोडियम फिनिश कर चुके हैं, वो भी गोल्ड एशिया कप, और उसी के साथ में एक बच्चा हमारा हाईएस्ट स्कोरर का परफॉर्मेंस उठाता है तो ये एक हमारा एक एग्जांपल सेट होता है। आशीष तानीपुरति जिसने हैट्रिक भी मारी है सेमीफाइनल्स और फाइनल्स दोनों मैचेस में और इसी के साथ में उसने हाईएस्ट स्कोरर का भी खिताब उठाया है तो ये एक एग्जांपल सेट करता है हमारी एकेडमी किस लेवल पे काम कर रही है।
0: योजनाएं भारतीय हॉकी के सुनहरे दौर को वापस लाने की है।
2: हमारे पास एट प्रेजेंट कुछ 54 ग्रासरूट सेंटर्स हैं टोटल सिनी और टाटा स्टील फाउंडेशन के मिला के, जिसमें अराउंड 4000 बच्चे ट्रेन होते हैं। ये एज ग्रुप है 8 साल से 12 साल के बीच में। इसी से बच्चे कुछ सिलेक्ट होके आते हैं रीजनल डेवलपमेंट सेंटर्स जहाँ पे उनको थोड़ा अच्छा ट्रेनिंग मिलता है, अच्छी किट मिलती है, अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है और टर्फ का एक्सपीरियंस मिलता है। इस आरडीसी लेवल से हम शॉर्टलिस्ट करके नवल टाटा हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे लेकर आते हैं। ये एक्चुअली पूरा रोड मैप है हमारा।
0: मैदान में दौड़ते खिलाड़ी सिर्फ पदक नहीं जीतते, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के दीप जलाते हैं। एक शहर को समझने के लिए उसके लोगों की स्मृतियों में उतरना पड़ता है। प्रगति, विज्ञान, खेल, संस्कृति और कला के इन तमाम रंगों को अपने भीतर समेटे ये शहर पिछले 40-50 वर्षों में कैसे बदला, इसकी सबसे खूबसूरत और प्रामाणिक झलक हमें मिलती है टाटा मोटर्स से सेवानिवृत्त और विश्व के 40 देशों में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके वयोवृद्ध प्रबुद्ध नागरिक प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रेश्वर खां की बातों से, जो इस शहर को मिनी भारत का सबसे सुंदर विजन मानते हैं।
3: जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो आँखों के सामने एक बिल्कुल अलग जमशेदपुर तैर जाता है। वह सादगी का दौर था जब सायरन से पूरा शहर अपनी घड़ियां मिलाता था, सड़कों पर साइकिलों का तांता होता था, शाम को साक्षी या विष्णुपुर के बाजारों में थके हारे कर्मचारी एक कप चाय पर दुनिया जहान की बातें करते थे।

जीवन की रफ्तार थोड़ी धीमी थी, लेकिन दिलों में आत्मीयता बहुत गहरी थी। शहर का रूप रंग बदला है, लेकिन इसकी आत्मीयता का जो कोर है, जो अंतःस्थल है, वो आज भी वैसा ही महक रहा है, चमक रहा है और आगे बढ़ रहा है। जमशेदपुर में सुबह टाई लगाकर दफ्तर जाने वाला एक एग्जीक्यूटिव शाम को सरहुल या टूसू के अखाड़े में मानदर की थाप पर थिरकता हुआ मिल जाएगा। यहाँ का कॉरपोरेट कल्चर लोक संस्कृति को दबाता नहीं, बल्कि उसे स्पॉन्सर करता है, उसे आगे बढ़ाता है। अब टाटा मोटर या टाटा स्टील अपने परिसरों में जनजातीय कला भाषाओं के लिए बड़े बड़े उत्सव करते हैं, जो एक आम नागरिक को लगता है कि उसकी पहचान सुरक्षित है। दुर्गा पूजा के पंडालों की भव्यता और सोहराय की

0: अखाड़े में मानदर की थाप पर थिरकता हुआ मिल जाएगा। यहाँ का कॉरपोरेट कल्चर लोक संस्कृति को दबाता नहीं बल्कि उसे स्पॉन्सर करता है, उसे आगे बढ़ाता है। अब टाटा मोटर या टाटा स्टील अपने परिसरों में जनजातीय कला भाषाओं के लिए बड़े बड़े उत्सव करते हैं, जो एक आम नागरिक को लगता है कि उसकी पहचान सुरक्षित है। दुर्गा पूजा के पंडालों की भव्यता और सोहराय की पेंटिंग का सौंदर्य यहाँ एक ही कैनवास पर बिना किसी टकराव के सह अस्तित्व में रहते हैं। हमारी जड़ें मजबूत है, इसलिए चकाचौंध की इस दुनिया में इस आंधी ने कभी भी हमें हिलाया नहीं है। जमशेदपुर कारीगरी का, दिमागी काम का और हृदय के आंतरिक भावनाओं का अनोखा त्रिवेणी और संगम है।
1: काली माटी से जमशेदपुर और टाटा नगर तक, जंगलों से विज्ञान तक, इस बात से इंसानियत तक, ये केवल एक शहर की कहानी नहीं, ये आधुनिक भारत की कहानी है। पिघलते लोहे से लिखी जिसने आत्मनिर्भरता की नई इबारत, जहाँ की माटी में बसता है एक मुस्कुराता हुआ लघु भारत, प्रगति की रफ्तार में भी जिसने अपनी जड़ों को संभाला है, वो जमशेदपुर आज पूरे राष्ट्र की आंखों का उजाला है। जमशेदपुर जहां कारखानों की चिमनियों के साथ सपने भी उड़ते हैं, जहां प्रयोगशालाओं में भविष्य आकार लेता है, जहां खेल मैदान में आत्मविश्वास जन्म लेता है, जहां संस्कृति अपने जड़ों से जुड़ी रहती है और जहां विकास का अर्थ केवल प्रगति नहीं बल्कि मानवता भी है। जमशेदपुर एक शहर नहीं, एक विचार है, एक सपना है और उस सपने का नाम है मिनी भारत। उद्योग, विज्ञान, खेल, संस्कृति, शिक्षा और पर्यावरण का ये अनूठा सह अस्तित्व पूरे देश के लिए एक महान प्रेरणा है। तरक्की की ऊंचाइयों को छूते हुए भी अपनी माटी को चूमे रखना ही जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान है। इसी जोहार और शुभकामना के साथ कि इस शहर की ऊर्जा पूरे हिंदुस्तान को यूं ही रोशन करती रहे, जोहार जमशेदपुर, जोहार हिंदुस्तान।
2: के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रूपक, इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। आलेख शाहिद अनवर, वाचन स्वर तासीर शाहिद, प्रस्तुतकर्ता राजीव रंजन तिवारी और संयोजन था राजेश कुमार राय का। जमशेदपुर केंद्र के द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी है। आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में प्रस्तुत है पंडित कैलाश चंद शर्मा का बांसुरी वादन। कैलाश शर्मा का संगीत जगत से परिचय बचपन में ही हो गया था। बांस से बने इस वाद्य यंत्र से निकलने वाली मधुर ध्वनियों से प्रेरित होकर उन्होंने नई दिल्ली स्थित गंधर्व महाविद्यालय में श्री प्रकाश एन सक्सेना से बांसुरी सीखना प्रारंभ किया। बाद में उन्होंने पंडित विनय चंद्र मौदगल्य से भारतीय शास्त्रीय संगीत की बारीकियों का भी अध्ययन किया। बांसुरी कैलाश शर्मा के जीवन का अभिन्न अंग बन गई और उन्होंने निरंतर अभ्यास जारी रखा। उन्होंने अंतर महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर की संगीत प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अनेक पुरस्कार प्राप्त किए। तब से लेकर आज तक कैलाश शर्मा ने अपने व्यावसायिक जीवन में एक लंबा सफर तय किया है। उन्होंने भारत तथा विदेशों के अनेक देशों में व्यापक रूप से प्रस्तुतियां दी हैं और उनके संगीत को अत्यधिक सराहना प्राप्त हुई है। उन्होंने महान संगीत सम्राट पंडित रविशंकर के साथ अनेक अवसरों पर कार्य किया तथा विश्वविख्यात रंगकर्मी श्री पीटर ब्रुक द्वारा पेरिस में आयोजित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए उनका चयन किया गया। उन्हें भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR द्वारा मध्य पूर्व के 10 देशों की यात्रा पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एकल वादक के रूप में प्रस्तुति देने के लिए भेजा गया। कैलाश शर्मा ने राजधानी में आयोजित अनेक प्रमुख संगीत समारोहों में एकल वादक के रूप में

0: ये था पंडित कैलाश चंद्र शर्मा द्वारा बजाया गया राग मालगुंजी। पंडित कैलाश चंद्र शर्मा अपने कार्यक्रम का समापन राग मिश्र खमाज से कर रहे हैं। मध्य लय रचना दादरा ताल में निबद्ध है।
1: जस्ट हर्ड राग मालगुंजी। पंडित कैलाश चंद्र शर्मा कंक्लूड्स हिज फ्लूट रिसाइटल विद राग मिश्र खमाज। मध्य लय कॉम्पोजिशन इज सेट टू दादरा ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे पंडित कैलाश चंद शर्मा का बांसुरी पर बजाया राग मिश्र खमाज। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित विनोद लेले। इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा अब यहीं संपन्न होती है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: पंडित कैलाश चंद शर्मा वॉज अकम्पनीड ऑन तबला बाय पंडित विनोद लेले। विद दैट वी कंक्लूड टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। दिस प्रोग्राम वॉज अर्लियर रिकॉर्डेड इन द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी दिल्ली। दिस प्रोग्राम केम टू यू फ्रॉम दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं, आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली और गीर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। बारात में तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगरपालिका के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गईं। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी

0: मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गांव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किया। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यूजर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 151 रन का लक्ष्य दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने ताजा समाचार मिलने तक 15वें ओवर में 2 विकेट पर 138 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Abhineet Shukla. Southwest monsoon has intensified in large parts of the country, bringing widespread rain, thunderstorms, lightning and gusty winds. The India Meteorological Department has said conditions are favorable for its further advance into some parts of Gujarat, remaining parts of Haryana, Punjab and some parts of Rajasthan during the next 4 days. Heavy to very heavy rainfall is predicted over Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Uttarakhand during the day. While scattered rainfall is expected in Delhi, Uttar Pradesh, Punjab and Chandigarh during the next 2 to 3 days. In Maharashtra, heavy monsoon rains continued to affect several parts of the state today, triggering rescue operations and rain-related incidents. The weather office has forecast heavy to very heavy rainfall at many places, with extremely heavy rainfall likely at isolated locations over the next 24 hours. Authorities have advised people to remain alert and avoid venturing into vulnerable areas, as the heavy rain is expected to continue. In Gujarat, IMD has forecast heavy rainfall over the next 7 days. A red alert for extremely heavy rainfall tomorrow has been issued for Dang, Navsari, Valsad, Bhavnagar, Amreli, Gir Somnath and Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli tomorrow. Fishermen have been advised not to venture into the sea for the next 5 days. Meanwhile, Delhi NCR witnessed a sudden change in weather this afternoon, with moderate rainfall lashing several parts of the region, bringing much needed relief from the humid weather. Union Minister Jyotiraditya Sindhya and Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav today laid the foundation stone of a defense manufacturing plant in Shivpuri. The plant will be built by the Adani Group with an investment of around 2,500 crore rupees. Speaking on the occasion, Union Minister Sindhya said, a new chapter is being written in Shivpuri's history today. Not only missile propellant, but also explosives, missile assembly, and some of the world's most advanced weapons will be manufactured in Shivpuri. This is the largest investment by a private sector company in South Asia. Mr. Sindhya said, the project will connect the district to industrial development, defense production, and the vision of